0: ज्ञान उतारै तुहे महला पहला।
1: मन का सुतक लोभ है जेवा सुतकु, अखी सुतक वेखना परत्रे परतन रू, कन्नी सुतकन पहला इतबारी खाहे, नानक हंसै आदमी जमपुर जाहे महला पहला।
0: सबो सुत पर मैं दूजे लगे जाए, जमन मरना हुक्म है भाने आवे जाए, खाना पीना पवित्र है दितो निर्जिक संभाहे, नानक जिन्हें गुरमुख बुझया।
1: ਇਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾਹ ਕੋਈ ਸਤਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਸਲਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਰੀਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਿਖਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਹਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਐਸ ਤੇ ਨੌਂਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਂਦ ਪਾਈਆਂ।

पंडे बाज न कोय, नानक पंडे बहराय को सच्चा सोए, जित मुक्स दा सलाहिए भागरती चार, नानक ते मुख उजले, नानक ते मुख उजले, तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को अपना जिस लाही सोचन कंडिया पिता को अपना आपके ही लेखा संधिये जाना है जग ताकत दाल भंडिये मंदक सब

थोड़ी जित से वह सुख पाई सु साहब सदा संभालिए, जित की ता पाई अपना सा काल बुरी को खालिए, मंदा मूह लकी च दिलमी नदर निहालिए, जो साहब ना ना हारिए तो वह पासा टालिए, पिछला है ऊपर खालिए, पिछला है ऊपर खालिए, जिनी गुरु

ਅਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ

خدا کہایا حسن حسین کے بابا پایا اس بند کے مرشد نے

यह आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज से तैखा सवाय तो आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश से बुझ सकना है। प्रोग्राम फ्री चुको है तफसील कुछ मित्र है थोड़ी देर में वहां भगत करम साहब जी के मिठे आवाज में कलाम बुधना तैखा पोए भारतीय चौदस पहला एक नंडी तकरीर पेश कहेंगी हाने का पोए वहां बुधना कुछ देशभक्ति गीत या तो असो प्रोग्राम की तफसील है तवा आकाशवाणी की सिंधी सर्विस बुध रहा है तो भगत करम साहब जन के सदाबार आवाज में कलाम बुधूँ।

0: और भगत पवन साहब जंगे मिठड़े आवाज में कलाम भी रहा यह आकाशवाणी की संगीत सरिस्ता है। यह पेश है कनाडी तक उन्वान है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डे।
1: भारतीय नशरत ढी 3 जुलाई ते भारत नशरत ढी मल्हाईंदो आहे जेको 1927 में मुंबई मां रेडियो नशरत जे शुरुआत जो यादगार ॾींहुं आहे। इन ॾींहुं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पंहिंजो पहिरियों नशरियो शुरू कयो जेको पोइ ऑल इंडिया रेडियो जे क़याम जो सबबु बणियो ऐं हिकु अहिड़ो इदारो जेको अॼु ॾींहं ताईं मालूमात तहज़ीब ऐं क़ौमी एकता जो आवाज़ बरक़रार आहे। जेकर हिन जे तारीख़ी पस मंज़र जी ॻाल्हि कयूं त साल 1920 जे ॾहाके में रेडियो जा इब्तिदाई तजुर्बा थिया जिन मां कुझु शौक़ीन माण्हुनि पारां बाक़ायदा नशरत जूं स्टेशनूं शुरू कयूं वयूं। पर 23 जुलाई 1927 ते इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी तरफ़ां बाक़ायदा नशरत शुरू करण सां इहो सिलसिलो हिकु नए दौर में दाख़िल थियो। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जे माली मुश्किलातुनि सबबि कंपनी साल 1930 में बंदि थी वई। पोइ हिन जी जाइ ते इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस क़ाइमु थी जेका साल 1936 में ऑल इंडिया रेडियो में

तब्दील थी वई। इन इदारों पोए कौमी इतिहाद सकाफती तबादली ए तलीमी प्रोग्रामिंग जो एक मरकज बणजी वो। कौमी तामीर में ऑल इंडिया रेडियो जैसे किरदार डिठो वे तो 1947 में भारत के आजादी का ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ नशरत जो जरियो को रो बल्कि एक अड़ो प्लेटफॉर्म बनो जो हर तबके के मान के मालूम तलीम ए तफरी फराम कराया। इनका कुछ कारण अहम है। इलाकई बोलियों में प्रोग्राम नशर करण से लसानी तनाव के फरोग दियण लोक ए क्लासिकल फन के वाधारे लाए शायरी राग ए सकाफती मजलिसू कौमी अगवान जो तकरीरू नशर करण महात्मा गांधी ए जवाहरलाल नेहरू हारन ए गोठान लाए जरई सेहत ए तलीम से बुनियाद रखंदड़ प्रोग्राम 5 अगस्त 1947 ते जवाहरलाल नेहरू की तकरीर किस्मत सा कोशिश नशर थी जै सजे मुल्क के आजादी के जज्बे में भरे रखो। साल 1959 में दूरदर्शन पारा टेलीविजन की शुरुआत से नशियत जो दायरो अन्या वधिक वसीह थी वो। रामायण महाभारत भारत एक खोज जड़ा प्रोग्राम मन के सकाफती शौर के उजागर कर लगा। 1990 के दहाके में निजी एफएम चैनल्स सैटेलाइट टीवी ए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बाद पॉडकास्ट ए कम्युनिटी रेडियो वधी गया। नवन जरियन जरिए मान ताई जान की रसाली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जरिए तमाम घनी वसी थी वही ए हर फर्द पैंजो आवाज दुनिया ताई पहुंचाण लगो। पर कोई भी रेडियो अज नीह ताई गोठाणन इलाकन ए सरहदी इलाकन में तमाम घनी अहमियत रखे तो जो न फकत मालूमात मैसर कराए तो पर कुदरती मुसीबतन ए इमरजेंसी हालतन दौरान एक लाइफलाइन जो पण रोल अदा करे तो। भारत के नशरती तारीख खास तौर ते उनन मणन लाए अहम आए जेके तहजीब ए बोली जे वाधारे लाए कम करे रहे। मिसाल तौर लोक कहानियों रवायतों रूहानी मत नशर करे महफूज कया पे वन। सिंधी बोली में तर्जुमा नशर करण से न फकत वरसे के बचाया वे तो पर नौजवान नस्ल में फखर पण पैदा थे तो। खतबदात पोस्टन ए स्क्रिप्टन के शिकल में तखलीकी तर्जुमा नशरायती अदीबात के नई कालिब डी रहा है। ये तो गाली थी सकाफती वरसे ए तर्जुमन जो जैसे हाँ गाल कई वे नौजवान टेक्नोलॉजी ए नशरत के मुस्कबिल की तो अज जो नौजवान फकत को बुधंदड़ को बल्कि तखलीकार ए समाजी अगवान पिण है। नशरती डी असा यो सोचण से मजबूर तो करे तो कि नौजवान मौसमी तब्दीली समाजी मुसावात ए सकाफती शौर के फरोग दई सकन था पॉडकास्ट जरिए पैंजे ख्यालन जो इजहार कर सकन था कम्युनिटी रेडियो ए मकामी बोलिन जरिए पैंजे इलाके में असर पैदा कर सकन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंट्स ए डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग जरिए सकाफती डस के नई नसल ताई रसाली दई सकन था। जैसे आखिर में चाहिए तो भारत जो नशरती डी सिर्फ टेक्निकल इर्तका जो डी को यो आवाज की ताकत जो जश्न आए डी याद तो डारे तो नशरत रुगो मालूम न पर तालुक जो एक जरियो आए तेरे तुम जडे भी रेडियो या पॉडकास्ट बुधो तो उन लम्हे के याद कर जिते एक आवाज सनी कौम के बुधन लाय मजबूर कर छो हो। तमाम भारतीय चौदस कला डी तकरीब बुध रहा यह आकाशवाणी की सिंधी सर्विस है।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

आकाशवाणी की सिंधी सर्विस गुजरा ये असाजे प्रोग्राम जो वक्त पूरा थी रहा है वरी अवसा मुलाकात थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 10:30 बजे तेसी ताईं इजाजत सदाई दर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,408 करोड़ रूपये से अधिक की राशि भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कल तक बारिश का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मायामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Magu. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. The NTA stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or AI

संगीति का कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीरा चक्रवर्ती के गाए कुछ भजन। आइए अब सुनते हैं सूरदास की रचना, बोल है अखियां हरि दर्शन को प्यासी।

अगर बिना जियूरी में आइए अब सुनते हैं मीराबाई की रचना। संकेती का कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मीरा चक्रवर्ती के गाए कुछ भजन, ये रचना उनके स्वर में।

आप सुन रहे थे मीरा चक्रवर्ती के गाए भजन। इसके साथ ही संगीतिका का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:30 हुए हैं। ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का। आज के इस शो में आपके साथ मैं हूं नवीन सक्सेना, बहुत ही खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता लेके। और उम्मीद है ये गीत सुनकर आज दिन भर आप मुस्कुराएंगे, सोचेंगे और सबसे यही कहेंगे।

दोस्तों क्या जानते हैं आपकी प्यार की सबसे खूबसूरत भाषा शब्द नहीं आंखें होती हैं। कभी किसी की आंखों में अपने लिए अपनापन देखा है? कभी बिना कुछ कहे दिल की बात समझी है? अगर आपका जवाब हां है तो अगला गीत आप सबके लिए है। लता मंगेशकर की आवाज साथ में किशोरता और गीत बहुत सिंपल बहुत सीधा सा आपके लिए है।

जिंदगी अगर हमेशा हमारी प्लानिंग के मुताबिक चलती ना तो कितना ही अच्छा होता, लेकिन कभी ऐसा होता ही नहीं है। कई बार भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है और कई बार खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। अगर आपने भी ऐसे पल जिए हैं ना तो मुकेश की आवाज में खूबसूरत गीत तो आपने जरूर सुने होंगे। बहुत सुंदर गीत है उनकी आवाज में, लेकिन ये गीत आज आपके दिल को छू जाएगा। चाय की चुस्की के साथ एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत गीत को।

आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग की तो भरी, और आपके साथ हूं मैं नवीन सक्सेना। आपने कभी नोट किया है कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो भले ही बहुत छोटे हों, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ रहती हैं। कभी किसी की एक मुस्कान, कभी किसी से एक मुलाकात, या मीठे दो बोल पूरे दिन को खूबसूरत बना देते हैं। द नेक्स्ट सॉन्ग विच इज आई एम गोइंग टू प्ले वो है एक प्यार का एहसास, एहसास की बात करता है। कभी सोचा है कि आपने अगर कोई सिर्फ एक पल के लिए भी अपनापन जता दे तो वो पल कितना अनमोल हो जाता है। यही मासूम, यही रोमांस, यही चुलबुला गए इस नए गीत की जान जो मैं अभी आपको प्ले करके आपको सुनाने जा रहा हूं। जानते हैं फिल्म कौन सी है? फिल्म है जॉनी मेरा नाम, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और किशोर कुमार की आवाज। तो इन सब का एक घोल दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, लिसन इट।

कुछ गीत समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं। उन्हें सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे सदियों पुरानी कोई दास्तां आज भी हमारे दिल से बातें कर रखी है। द नेक्स्ट सॉन्ग विच इज आई एम गोइंग टू प्ले, जिसके बोल हैं ज़िहाले मिस्की। क्या आपने कभी इस गीत के शुरुआती शब्दों पर ध्यान दिया है? ज़िहाले मिस्किन मकुन तगाफुल। पहली बार सुनने में ये शब्द थोड़े कठिन लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे गीत आगे बढ़ता है, कहानी आगे बढ़ती है, ये कठिन शब्द भी आसान होते हुए दिल को छू जाते हैं। इसकी भावनाएं सीधे दिल तक पहुंचती हैं। और इस गीत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें फारसी और हिंदी का अद्भुत मिलन है। हिंदी फिल्म संगीत में ऐसे गीत बहुत कम है जिन्हें दो भाषाओं का मेल इतनी खूबसूरती से किया गया है। गुलजार साहब की कलम से लिखा ये गीत एक अलग ही अंदाज में हमको छूता है और हमको बताता है कि जिंदगी कितनी हसीन है, भले ही उसमें कुछ मुश्किलें हों। फिलहाल लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की जादुई आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और ये गीत ज़िहाले मस्की मुकम्बे रंजिश बहार।

आज के इस प्रोग्राम के लिए शायद इससे खूबसूरत गीत और कोई नहीं मैं आपके लिए ला सकता था। लेकिन दोस्तों कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं कि समय रुक जाए और दिल बस यही कहे थोड़ी देर और। क्या आपने कभी अपने किसी से इस तरह से बात की है? क्या आपने कभी किसी अपने को इस तरह से रोकना चाहा है? अगर हाँ तो नेक्स्ट सॉन्ग अब जो गीत मैं आपके लिए प्ले करने जा रहा हूं वो आपके ही भावनाओं का आईना है। बहुत ही खूबसूरत गीत है और बोल है अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं।

वाकई जाने का मन नहीं करता, अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। लेकिन वक्त का तकाजा है, जब मन सवालों से भर जाता है तो इंसान उसका जवाब ढूंढने लगता है, कभी जिंदगी से तो कभी खुद से। ऐसे बहुत से सवाल है जिनके जवाब अभी भी आपके मन में है। तो आपके सामने जब कोई बैठा हो ना, तो यही गीत गुनगुना दीजिए।

0: मेरा वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, 8 बजने को है। अब समाचार सुनिएगा और उसके बाद फिर हमसे जुड़ जाइएगा।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों

0: को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार दसवीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकॉनमी,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
1: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिनवई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिनवई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय

0: बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्मोहन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उस दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: ये बातचीत आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था। व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमरीका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमरीका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड की इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency reveals that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया ममूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने तलबा और वालिदैन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट्स जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सीबीएसई ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तहान के नतीजे का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णो देवी यात्राएं आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे मकाम के सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर कांसे का तमगा जीता, जबकि फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमरीका के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले आज सभी सियासी जमातों की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाने को यकीनी बनाने के लिए सियासी पार्टियों का तआवुन चाहेगी। मॉनसून इजलास कल से शुरू होगा, जो अगले माह की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान कई अहम बिलों पर बहस की जाएगी और उन्हें मंजूर किया जाएगा। दस्तावेजात में रद्दोबदल से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात के पेश नजर इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने सख्त तंबीह जारी करते हुए तलबा और वालिदैन को जांच पड़ताल के लिए ओएमआर शीट्स जमा कराने के बारे में एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि हाल ही में नजरसानी के लिए जमा कराई ओएमआर शीट्स जाली या मस्नूई जहानत से तैयार करदा पाई गई हैं, जिसके बायस तमाम शिकायत की मजीद सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं क्लास के

0: दूसरे बोर्ड इम्तिहान 2026 के नतीजे का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नतीजे डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल पर URL results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी की सिफारिशात से हम आहंगी करते हुए CBSE ने इस साल से 10वीं क्लास के 2 बोर्ड इम्तिहान शुरू किए थे। मेन बोर्ड इम्तिहान 17 फरवरी से 11 मार्च और दूसरा बोर्ड इम्तिहान 15 मई से 21 जुलाई तक मुनक्किद किया गया था। CBSE के मुताबिक मेन और दूसरे बोर्ड इम्तिहान के मजमुई पास फीसद को जोड़कर इस साल नतीज 96.78% रहे। CBSE के मुताबिक बैरून मुल्क तलबा भी अपने नतीज डिजी लॉकर पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से आज खराब मौसम की पेशगोई के पेश नजर एहतियात के तौर पर बंद रहेगी। ये फैसला भारतीय महकमे मौसमियात की जानिब से अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की पेशगोई की वजह से मुसाफिरों की सलामती और तहफ्फुज को तवज्जो में रखते हुए किया गया है। हुकाम ने कहा कि अगले हुक्म तक बालतल और नुनवान चंदनवाड़ी बेस कैंप से यात्रियों की किसी भी तरह की आमदोरफ्त पर पाबंदी रहेगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भारत के महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की गई खराब मौसम से मुतालिक एडवाइजरी के पेश नजर वैष्णो देवी यात्रा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। श्राइन बोर्ड की तरफ से सरकारी तौर पर जारी की गई एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला यात्रियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। अकीदतमंदों को मशवरा दिया गया है कि वो तहम्मुल से काम लें और श्राइन बोर्ड के सरकारी मवासलाती चैनलों के जरिए जारी की गई मालूमात को अपनाएं। हुक्काम लगातार मौसम की सूरतेहाल पर नजर रखे हुए हैं और यात्रा उसी वक्त फिर से शुरू होगी जब ये समझा जाएगा कि यात्रियों के लिए यात्रा पूरी तरह महफूज है। महकमा मौसमियात ने हसास इलाकों में अचानक सैलाब, मिट्टी के तोदे खिसकने और पानी जमा होने के इम्कान के साथ जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्सों में फिर से शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया है। इंतजामिया ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करें और आबी इदारों से दूर रहें। वैष्णो देवी यात्रा ने इस साल एक अहम संग मील हासिल कर लिया है क्योंकि मुकदस गुफा के दर्शन करने के लिए यात्रियों की तादाद 50 लाख से ज्यादा पार कर गई है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तराखंड में आज तेज से बहुत तेज बारिश के सबब रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत के बहुत से हिस्सों में मुसलसल बारिश दर्ज की जा रही है जिसकी वजह से बड़ी नदियों की आबी सतह बढ़ती जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: IMD ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में आज बहुत तेज बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुतादिद जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की वार्निंग के पेश नजर रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वह हसास मकामात की सख्ती से निगरानी करें और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को दिन रात फाल रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि राहत और बचाव टीमें बर वक्त तैयार रहें। हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो तोदे खिसकने के ज्यादा खदशात वाले रास्तों पर मशीनरी और दीगर जरूरी वसाइल को तैयार हालात में रखें। वहीं आफात से निमटने के रियासती सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने रिहायशियों, चारधाम यात्रियों और सयाहों से अपील की है कि वो मौसम से मुतालिक एडवाइजरी पर अमल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम।
0: हिमाचल प्रदेश में जुनूब मगरबी मॉनसून के सरगर्म रहने के साथ ही रियासत के बेशतर हिस्सों में कल रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। शिमला की मौसमियात के मरकज ने मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश के मद्देनजर 21 जुलाई तक ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में आज तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरला, माहे, उड़ीसा और शिमाल मशरकी भारत के हिस्सों में इस मुद्दत के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। दिल्ली में IMD ने बादल छाये रहने और हल्की फुल्की बारिश की पेशगोई की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जंजीबार के सदर और इनकलाबी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मिनही, जो भारत के चार रोजा सरकारी दौरे पर हैं, आज नई दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा भारत तंजानिया ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और मुस्तकबिल में तआवुन के नए मौके तलाश करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी आज दौरे पर आए मेहमान से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि आलमी जुनूब में भारत और तंजानिया के दरमियान बहुत से शोबों में करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अमरीकी फौज ने उर्दुन में एक हमले के लिए पासदारा ने इनकलाब के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर से फजाई हमले किए हैं। पासदारा ने इनकलाब के हमले में दो अमरीकी फौजी अहलकार हलाक, एक लापता और चार फौजी जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कम करने के लिए किए गए ताकि आबनाए हुरमुज के रास्ते तेल से लदे जहाजों की आमद रफ्त को रोका जा सके। अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर दुनिया भर में अमरीकी शहरियों के लिए सफर के सिलसिले में एहतियात बरतने की गरज से एडवाइजरी जारी की है। उसने खित्ते में अमरीका और ईरान की तरफ से जारी फौजी कार्रवाइयों के पेश नजर बढ़ती हुई कशीदगी के साथ सिक्योरिटी के पेचीदा सूरत हाल के लिए खबरदार किया है। हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म की अगली किस्त में मारूफ अदाकार और हिदायतकार आर माधवन से बातचीत करेंगे, जो बावकार पद्मश्री एजाज याफ्ता है।
2: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उस दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: आप इस गुफ्तगू को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। रिवेन्यू इंटेलिजेंस के डायरेक्टोरेट डीआरआई ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुल्क भर में कार्रवाइयां अंजाम दी हैं, जिसके नतीजे में बैरून मुल्क से स्मगल किया गया 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 22 करोड़ रुपए बताई जाती है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय करेंसी भी जब्त की गई है। वजारत खजाना ने बताया कि इन कार्रवाईयों के दौरान 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उसने मजीद बताया कि रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के अफसरों ने नई दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें स्मगल की गई कीमती धातें और नकद रकम जब्त की गई। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ मोहन यादव भोपाल जिले के जगदीशपुर में आज एक बड़ी तकरीब में मुनाकिद करेंगे। वो 1460 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल करेंगे। ये रकम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अदा की जाएगी। फीफा आलमी कप में कल रात मियामी स्टेडियम में तीसरी पोजीशन के लिए खेले गए एक सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 4-6 से हराने के बाद कांसे का तमगा जीत लिया है। दूसरी जानिब आज न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आलमी कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 12:30 शुरू होगा। भारत की फुटबॉल की राजधानी समझे जाने वाले कोलकाता में फुटबॉल शायकीन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आज देर रात होने वाले सनसनीखेज आलमी कप का फाइनल मैच देखने के लिए पूरे जोश और जज्बे और बेसब्री से इस मैच को देखने के लिए बेहद मुंतजर हैं। शहर की सड़कों पर फुटबॉल शायकीन अपनी अपनी पसंदीदा टीमों की जर्सियां पहने हुए हैं। मगरबी बंगाल की हुकूमत मुख्तलिफ अहम मकामात और रियासत के सभी जिलों में फुटबॉल मैच दिखाने के लिए बड़े स्क्रीन्स का एहतमाम कर रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: आज रात कोलकाता जागता रहेगा और पूरे बंगाल में ऐसा ही होगा। फीफा वर्ल्ड कप भले ही हजारों मील दूर न्यू जर्सी में हो रहा हो, लेकिन इसका जोश रियासत के हर घर तक पहुंच गया है। मोहल्ले नीले और सफेद रंग से सजे हुए हैं और मैसी की जर्सी हर जगह नजर आ रही है। मगरबी बंगाल के महकमा खेल ने कोलकाता के नंदन और एक तारा में ओपन एयर स्टेज का इंतजाम किया है ताकि फुटबॉल का फाइनल मैच लोग अवामी स्क्रीनिंग पर देख सकें। क्लब्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेसेस में बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग लगाई गई हैं। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: इस दौरान दिल्ली की वजीर आला मोहतरमा रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि शहर के रेस्तरां

0: कैफे और दीगर अहल मराकज कल सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने कहा कि इस फैसले से फुटबॉल के शायकीन को यकजा होने और खेल से लुत्फंदोज होने का मौका मिलेगा। नीज शहर की रंगारंग नाइट लाइफ और मकामी कारोबार को फरोग हासिल होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान एक रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। खवातीन कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी में बुडापेस्ट दर्जाबंदी टूर्नामेंट में खवातीन के 76 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना बेगम।
1: शुक्रिया आसिया। राजधानी से शाया होने वाले मुख्तलिफ उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। बेशतर उर्दू अखबारात ने खलाई शोबे में भारत की कामयाबी से मुतालिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, भारत ने खलाई शोबे में नई तारीख रकम की, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी से खला में रवाना, वजीर आजम मोदी ने मुबारकबाद दी। रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि भारत दहशतगर्दी को हर महाज पर जवाब देने की ताकत रखता है। रोजनामा प्रताप की अहम खबर है, हरियाणा हुकूमत महत्वाकांक्षी जंगल मित्र स्कीम के तहत 50,000 जंगल मित्र बनाएगी ताकि आम लोग माहौलियात की बेहतरी में अपना ताउन दे सकें और जरिया मुआश भी हासिल कर सकें। तकरीबन सभी अखबारात ने फीफा आलमी कप के फाइनल की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने तलबा और वालिदैन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सीबीएसई ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तिहान के नतीजे का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णव देवी यात्राएं आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमरीका के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, शब्द जब संवेदनाओं की भट्टी में दबकर निकलते हैं तो वे केवल साहित्य नहीं बनते बल्कि समाज को रास्ता दिखाने वाली मशाल बन जाते हैं। हिंदी साहित्य के आकाश में विष्णु प्रभाकर एक ऐसा ही दैदित्यमान नक्षत्र है जिनकी लेखनी ने लगभग 8 दशकों तक भारतीय समाज, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को बेहद करीब से छुआ और सवारा। वास्तव में विष्णु जी का साहित्य केवल शब्दों का ताना बाना नहीं बल्कि वह जीवन का एक मुकम्मल दर्शन है। उनकी हर रचना के केंद्र में मनुष्य और उसकी करुणा सबसे ऊपर रही। आइए सुनते हैं परिचर्चा, विष्णु प्रभाकर एक समग्र दृष्टि। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर वेद मित्र।
4: हिंदी साहित्य में विष्णु प्रभाकर जी का व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। वे कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, जीवनीकार, संस्मरणकार, बाल साहित्यकार और चिंतक सभी रूपों में समान रूप से प्रतिष्ठित हैं। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदना, सामाजिक सरोकार, राष्ट्रीय चेतना और जीवन मूल्यों के प्रति गहरा विश्वास दिखाई देता है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास अर्ध नारीश्वर, आवारा मसीहा जैसी कालजयी जीवनी, सत्ता के आर पार नाटक और सबसे चर्चित कहानी धरती अब भी घूम रही है उनकी रचनात्मक ऊंचाइयों के प्रमाण हैं। आज हमारे सामने 3 विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं। आदरणीय अतुल प्रभाकर जी, जो विष्णु प्रभाकर जी के पुत्र हैं, उनके अत्यंत निकट रहे हैं और उनके व्यक्तित्व के अनेक अनदेखे पक्षों से परिचित हैं। आप विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान के संस्थापक सचिव हैं, साथ ही कहानीकार हैं और साहित्य की अन्य विधाओं में सक्रिय हैं। दूसरे हमारे अतिथि हैं वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर क्षमा शर्मा जी, जो कि नंदन पत्रिका की संपादक रह चुकी हैं और अभी अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप स्तंभ लेखन कर रही हैं। साथ ही

0: कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ वरिष्ठ लेखक व संपादक कथाकार बलराम जी हैं, जो साहित्य अकादमी की महत्वपूर्ण पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक हैं और अनेक पुस्तकों के लेखक हैं। आप अनेक संस्थाओं से सम्मानित हो चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
1: नमस्कार।
2: नमस्ते।
0: आज इस चर्चा की शुरुआत मैं अतुल जी से करना चाहूंगा। अतुल जी, आपका स्वागत है। आपने विष्णु प्रभाकर जी को एक महान साहित्यकार के साथ साथ एक पिता, एक मार्गदर्शक और एक संवेदनशील मनुष्य के रूप में निकट से देखा है। उनकी लेखन प्रक्रिया कैसी थी? क्या वे निश्चित समय पर लिखते थे? और सबसे बड़ी बात जो हम आपसे जान सकते हैं, क्या परिवार भी उनके लेखन अनुशासन का हिस्सा बन जाता था?
1: जी, निश्चित तौर पे परिवार उनका एक अपना साहित्यिक परिवार भी था। उनका जो विकास हुआ उसके पीछे कुछ कहानियां हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको पुरानी बातें बताना चाहूंगा कि उनके पिता जो थे वो थे कर्मकांडी सनातनी और उनकी माता जी खुले विचारों की थी। और फिर जब वो हिसार गए तो वो आर्य समाज से जुड़ गए और साथ साथ उस समय गांधी का बहुत प्रचार था, तो सनातन, आर्य समाज, गांधी और उसके साथ साथ उनको पढ़ने का शौक था। जो पुराने लेखकों की कहानियां और सबकी रचनाएं पढ़ते थे तो उन सबका जो विचार उनके मन में पहुंचे उसने उनको स्थापित किया उनके मन के अंदर कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। उनकी जो विचारधारा थी उस चीज ने उसको विकसित किया और इससे उन्होंने एक अपने लिए एक अनुशासन अपने लिए स्वयं का गढ़ा और उसी अनुशासन से वो पूरे जीवन में जिए। आप सब लोग मिले हैं उनसे और जो उन्होंने देखा उनका जो आपका व्यक्तित्व है उनका था वो उसी अपने स्वयं के अनुशासन से बना हुआ था, किसी का आरोपित अनुशासन नहीं था और उसी को लेके वो सारे जीवन चले। उसी से उन्होंने अपने परिवार को भी साथ में जोड़ा और परिवार जुड़ा तो जो साहित्य जो रचते थे तो पूरे परिवार में एक साहित्यिक धारा थोड़ी थोड़ी चलती रही। और साथ में जो एक उनके अंदर बहुत बड़ा गुण और था दूसरा, वो भावुक बहुत थे। किसी को चोट लग गई तो वो स्वयं चक्कर खा जाते थे और छोटी सी बात पे किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम मन पे लग जाती थी वो भावुकता जो थी। और किसी ने कुछ अपनी व्यथा कही तो एकदम उसकी बात मान लेते थे, ये नहीं कि उसको सोचे कि क्या उसने कहा है, सही कह रहा है या गलत कह रहा है, बिना सोचे से भी उसकी बात मान लेते थे। तो वो जब वो सारी चीजें थी उसी से उनका सारा जो ये विकास सब चीजें जो उनके अंदर गढ़ी गई वो उसी से बनी है। जैसे वो कहते भी थे कि अविश्वास करके पछताने से ज्यादा अच्छा है विश्वास करके ठगे जाओ। आपने विश्वास किया उसने ठग लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने विश्वास करके बाद में पछताओ कि हम ये नहीं कर पाए, ये एक उनका एक मोटो बन गया था, उसी के तरह से वो चलते थे। अब लेखन प्रक्रिया में ये है कि वो जैसे हिसार में रहे तो हिसार में जो आर्य समाज के साथ जुड़े तो आर्य समाज की गोष्ठियों में जाते थे और वहां उनको उनके मामा ने प्रेरित किया कि आप यहाँ भाषण दो और उसमें वो हर रविवार को जो गोष्ठी होती थी उसमें हर रविवार को भाषण देते थे और लिख के ले जाते थे पूरा, और उसी आर्य समाज पद्धति से उसकी सारी धाराओं को समझ के उससे लिख के ले जाते थे। तो वो वहां से उनका उस तरह से जो लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी वो उससे बढ़ी। और जैसा उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा भी है कि कहानियां जब पढ़ते थे लोगों की औरों की रचनाएं पढ़ते थे तो वो कभी कभी कहते थे मैं सोचता था कि जैसे इन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया कहानी लिखी क्या मैं भी कभी लिख सकता हूँ। तो वो जो मन में विचार आता था उस सब से उनकी लेखन प्रक्रिया बनी और 1931 में उनकी पहली कहानी मिलाप में छपी, लेकिन उसके 3-4 साल 34 तक कोई कहानी नहीं लिखी गई, कुछ नहीं लिखा गया। 34 में फिर कहानी लिखनी शुरू की, 34 में 4 कहानियां लिखी, फिर तो धीरे धीरे सिलसिला चलने लगा। फिर जैसे और संपादक लोग मिलते गए, सब लोग जुड़ते गए, क्योंकि उनको फिर घूमने का भी बहुत शौक था, सबसे मिलने जाने का, जहां भी अवसर मिलता था पहुंच जाते थे घूमने और बातचीत करते रहते थे। ये शुरुआत की बात है, बाद में तो धीरे धीरे फिर अपना विकास और बहुत तरह से होता है, बहुत सारी चीजें प्रभावित करती है, तो ये एक प्रक्रिया रही मोटे तौर पर।
0: निश्चित रूप से मैं मेरा समय और रचना प्रक्रिया करके वो एक इस शीर्षक से उन्होंने जो संस्मरण लिखा है उस संस्मरण में वो चर्चा करते हैं किस प्रकार से यात्राएं उनके साहित्य को ऊर्जा प्रदान करती हैं। जो आपने आत्मीय पक्ष बताया कि वह भाषण आर्य समाज की सभाओं में देते थे, लिख कर ले जाते थे और फिर उनका साहित्य आगे बढ़ता गया और वो आगे लिखते गए। हम सब आवारा मसीहा के उस समसाध्य लेखन प्रक्रिया से परिचित हैं जो ध्यान में आया 14 वर्षों का श्रम

0: आद्य कार्य उनका, और उसके बाद आवारा मसीहा हम सबके सामने आई एक विशेष रूप में, एक जीवनी के रूप में। आज आवारा मसीहा को 50 वर्ष हो रहे हैं। विभिन्न साहित्यिक संस्थाएं आवारा मसीहा को लेकर के अनेक प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसी कालजयी जीवनी हम सबके साथ है। आदरणीय अतुल जी के माध्यम से हमें उनके आत्मीय पक्ष की जानकारी तो हुई, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ लेखिका क्षमा शर्मा जी हैं, जिन्होंने उनके साहित्य को पढ़ा और समझा ही नहीं बल्कि एक संपादक के तौर पर उनके साहित्य से गुजरी हैं। उन पर आपने काफी कुछ लिखा है। मैं आवारा मसीहा के संदर्भ में पूछना चाहूंगा कि आप कैसे उस जीवनी को समझते हैं, पढ़ते हैं, और आपकी क्या राय है उस पर?
1: शुक्रिया शुक्ल जी। और मैं अतुल जी को बहुत ध्यान से सुन रही थी और ये बात बहुत जैसे दिल को छू गई कि अविश्वास करने से बेहतर है कि विश्वास करके ठगा जाना। ये दरअसल जो प्रभाकर जी का गांधीवादी सोच है और गांधीवाद के साथ एक मानवतावादी सोच है, प्रगतिशील विचार भी है। उस समय जब वो थे, जब मैं उनसे मिली थी, तो वो समझ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो 1975 में यूएन ने शुरू किया, कहा कि ये है, तो उसके बाद में मिली हूँ उनसे। और एक तरीके से हमारे देश को ये मान लिया गया ना कि यहाँ महिलाओं के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो हिंदी के कथाकार हैं उनकी रचनाओं का अनुवाद नहीं होता, तो विदेश में पता ही नहीं चलता कि हिंदी में भी क्या क्या लिखा जाता है स्त्रियों के बारे में। महादेवी ने क्या लिखा है या प्रभाकर जी, कुल उनकी रचनाओं का जो सोच है उसमें स्त्री स्वर प्रमुख है। और वो ये जब मैं उनसे पहली बार मिलने गई थी, तो जो एक बचपना होता है ना मेरे अंदर बहुत था, मेरी उम्र बहुत कम थी, और मैं उनसे मोहन सिंह प्लेस में मिलने गई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आपके लेखन में या आपके जीवन में किन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। तो उन्होंने कहा मेरी माँ और मेरी पत्नी। आमतौर पे उस पीढ़ी के लोग पत्नी को कोई श्रेय नहीं देते थे, पत्नी को भी उन्होंने श्रेय दिया। और जो उनकी माँ, उनका कहना था कि वो भी पढ़ी लिखी थी, तो इसमें मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उस वक्त, क्योंकि माना जाता था कि स्त्रियां पढ़ती नहीं है, हमारे यहाँ तो स्त्रियों की शिक्षा का कोई महत्व नहीं। जब ये आया आवारा मसीहा, तो शरद चंद्र की मैं बहुत बचपन से बड़ी फैन जैसे कहते हैं, उनके लगभग सभी उपन्यास मैंने पढ़े हैं, तो मैं उनसे मिलने गई और आवारा मसीहा की प्रति भी ले गई साथ में। हमारे संपादक जी उनके पास भेज देते थे कि जाओ उनसे कहानी सुनकर आओ, फिर मैं लिख के ले जाती थी, फिर वो उसको करेक्ट करते थे या फिर खुद ही लिख देते थे, तो ऐसे करते थे। तो उन्होंने उस पर सिग्नेचर करके दिए मुझे, और मेरा दुर्भाग्य है कि वो जो प्रति थी वो किन्हीं ने पढ़ने के लिए मांगी और मुझे कभी नहीं लौटाई। तो हिंदी साहित्य में यह भी होता है कि वो वापस नहीं मिली। और शरद चंद्र के बारे में जिस तरह से उन्होंने लिखा, 14 वर्ष का समय, और कब शरद चंद्र हुए, कब उन्होंने लिखना शुरू किया प्रभाकर जी ने, और हर जगह घूमना, हर जगह उनके पात्रों की खोज कि वो कहाँ से आए, कैसे रहे। और जैसे कि शरद का है स्त्री स्वर प्रमुख है, उनकी रचनाओं में स्त्रियों के प्रति जो एक मानवीय संवेदना है वही प्रभाकर जी की रचनाओं में मिलती है। वो बार बार एक ही शब्द बोलते थे शरद जी के बारे में, अपराजय कथा शिल्पी
0: जी।
1: और उन्होंने एक तरीके से जिसको इंट्रोड्यूस करना कहते हैं ना, शरद को इंट्रोड्यूस किया हिंदी में। हम जैसे लोग जो पहले से पढ़ते आए थे, मुझे लगा कि आवारा मसीहा पढ़ के और बहुत से लोगों ने शरद को पढ़ा होगा, ऐसा महसूस होता है।
0: आज का युवा पाठक अगर विष्णु प्रभाकर जी को पढ़ना शुरू करे, तो कौन सी पुस्तक आप बताओगे कि पढ़ना चाहिए सबसे पहले?
1: मुझे तो लगता है कि निश्चित तौर पे आवारा मसीहा ही पढ़ना चाहिए। उसमें अनेक तरह के शेड्स हैं, अनेक तरह के रंग आपको मिलेंगे, और उनकी आत्मकथा जरूर पढ़नी चाहिए
0: जी।
1: आज जब स्त्री स्वर बहुत प्रमुखता से है और सारी सरकारें, सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उसी तरफ ध्यान दे रही हैं, अपने देश में भी तरह तरह से बातें हैं, तरह तरह का साहित्य है, बहुत बड़ी संख्या में रचना कर रही हैं। आज के बच्चों के तो वो दादा से भी बड़े उम्र के हैं, उन्होंने उस समय स्त्रियों के बारे में क्या लिखा, उन्हें कितनी संवेदनशीलता से देखा। उनका कहना ये था कि भाई हमारे समाज में लाभ के सारे स्रोत पुरुषों के लिए हैं और स्त्री की भूमिका पुरुष स्वामी और वो सेविका। तो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स तो बाद में कह रहा है, उन्होंने कब कहा ये
0: जी।
1: तो इसलिए रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो कब कह रहा है, उन्होंने कब कहा, तो उस नजरिए से भी प्रभाकर जी को देखा जाना चाहिए कि वो कितने प्रमुखता से, वो गांधीवादी हैं, वो प्रगतिशील हैं, वो राष्ट्रीय चेतना से भी भरपूर हैं, लेकिन स्त्रियां उनके लिए प्रमुख हैं।
0: आप

0: रही हैं जो उनके साहित्य में स्त्री की उपस्थिति है, जो उनका दृष्टिकोण है,
1: नहीं, उनकी अपनी भावनाएं भी,
0: अपनी भावनाएं हैं,
1: और मुझे लगता है कि जैसे वो शरद के साथ एकम एक हो गए,
2: एकाकार हो गए हैं।
1: एकम एक,
0: जी, आप उनको अपने समय से आगे के दृष्टिकोण।
1: बहुत बहुत
0: जी
1: आगे,
0: जी
1: बहुत आगे। और मैं तो जब जाती थी तो वो मुझे, क्योंकि मेरी उम्र भी बहुत कम थी जब मैं उनसे मिलने जाती थी, 20-21 साल की रही होंगी मैं, बहुत जल्दी मुझे जॉब मिल गया था, मैंने अपनी सारी पढ़ाई भी जॉब के दौरान की, तो वो बिल्कुल मुझे छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे। ये जान के कि मैं कहानियां भी लिखती हूँ तो बड़े खुश होते थे। आमतौर पर कहा जाता है कि लेखकों में बड़ा अहंकार होता है, लेखक नए लोगों को ज्यादा सहयोग नहीं देते, लेकिन वो इतने वरिष्ठ लेखक जिनके सामने हम कुछ नहीं थे, मामूली सी एक लड़की ना, लेकिन उनके सामने जाके मैं भी फिर वैसी ही हो जाती थी, उतनी शरारती। वो बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान आती हैं, और अफसोस है कि मोबाइल का दौर नहीं था, नहीं पता नहीं कितनी तस्वीरें खींची होती।
0: जी, निश्चित रूप से उनके साहित्य की वैचारिक शक्ति और मानवीय दृष्टि को अत्यंत सुंदर ढंग से आपने हमारे सामने रखा। हमारे साथ बलराम जी हैं, हिंदी कथा साहित्य के गंभीर अध्येता हैं आप। समालोचक और संपादक होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हिंदी कहानी के इतिहास में विष्णु प्रभाकर जी को आप किस तरीके से देखते हैं?
2: देखिए, हम लोगों ने पहली बार ये जाना कि हिंदी कहानी को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल सकता है। विष्णु प्रभाकर वो पहले कहानीकार हैं जिनको कहानी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, धरती अब भी घूम रही है। हमने बचपन में उनकी कहानी, छोटे थे पढ़ी कहानी, तो हमने कथाकार के रूप में उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कथाकार मान के पढ़ना शुरू किया। और एक बार कानपुर में थे, मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि हम चाहते हैं आप कानपुर आए, वो कानपुर गए। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, दो बड़े लेखक थे, कामतानाथ और गिरिराज किशोर। वहां मोती झील एक जगह, सबसे अच्छी जगह, कनॉट प्लेस की तरह सुंदर जगह है, हरी भरी, बुलाया वहां गोष्ठी की, तो दोनों ही बड़े कथाकार नहीं आए, न गिरिराज किशोर आए न कामतानाथ आए, राजेंद्र राव तो आए और हम सारे नए लोग आए। तो मैंने उनसे पूछा, आप इतने बड़े हैं, दिल्ली से आए हैं और कानपुर के लेवल के दो बड़े आदमी, आप तो राष्ट्रीय करेक्टर हैं, तो लोकल उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आपके सम्मान में हमने किया, आए क्यों नहीं? उनका, बलराम जी अभी आप बहुत छोटे हैं, बड़े होंगे तो समझ जाएंगे, ये साहित्यिक राजनीति है। आप किसी एक को बुलाते, कामतानाथ को बुलाते तो आ जाते, गिरिराज को बुलाते तो वो आ जाते, आपने दोनों को बुला के गलती कर ली। तो ये उन्होंने मुझे कहा कि इसको जीवन में और लेखन में ध्यान रखना, तुम संपादन में जाओगे, संपादक था मैं उस समय दैनिक आज में, तो ध्यान करना कि मध्य में खड़े होना, ये लोग आए ना आए, तुम दृढ़ता के साथ बीच में खड़े रहना। आपने हमें बुलाया, उन दोनों को बुलाया, वो नहीं आए, उनकी मर्जी।
0: निश्चित रूप से एक साहित्यकार के तौर पे सामाजिक, राजनैतिक और अन्य आयामों से एक साहित्यकार को परिचित होना चाहिए, और वो सजग थे इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन इन सबसे बढ़ करके जो उनमें बात थी, मैं उनकी एक कविता के माध्यम से यहाँ पर रेखांकित करना चाहूंगा। पाल ने भले ही दम्भ वह जीतने का पृथ्वी को, पाल ने भले ही दम्भ हुआ जीतने का पृथ्वी को, आकाश को, दिगंत को, पर वह मनुष्य है, मनुष्य ही रहेगा, यही उसकी जीत है, यही उसकी हार है, और इसी हार की जीत का नाम है मनुष्य। विष्णु प्रभाकर जी मानते थे कि साहित्यकार केवल अभिव्यक्ति के लिए ही साहित्य नहीं लिख पढ़ रहा है, बल्कि मनुष्यता को और आगे ले जाने के लिए एक साहित्य कि कसौटी पर एक साहित्यकार को खड़े उतरना है। हमारे साथ अतुल जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी की डायरी पर आपका विशेष अध्ययन रहा है, मैंने जो संस्मरण पढ़े उसमें आपने उनकी डायरी पर और उनकी डायरी में क्या लिखा गया है, इस प्रकार से बहुत सी बातें की है। एक स्वाभिमानी साहित्यकार थे वो, और किस प्रकार से महात्मा गांधी सहित अन्य महापुरुषों को वो अपने जीवन में उतार रहे थे, ये सब आपने चर्चा की है। आप उनके साहित्य में और उनके लेखकीय जीवन में कैसे इन दोनों बातों की समानता पाते थे?
3: देखिए, राजनीति और साहित्य में जो था कि उनके साहित्य में आपको राजनीति कहीं नहीं मिलेगी, कहानियों में, उपन्यास में कहीं राजनीति नहीं मिलेगी, उनके संस्मरण में, उनके बातचीत में, उनके इंटरव्यूज में आपको राजनीति खूब मिलेगी। वो राजनीति को और साहित्य को बिल्कुल अलग रखते थे, कभी उन्होंने मिलाने की कोशिश नहीं की। वो कहते थे कि साहित्य अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, हमें साहित्य करना है तो हम साहित्य करेंगे, राजनीति करनी है तो राजनीति करेंगे। उनका आप कभी भी पूरा साहित्य पढ़ के देख लीजिए,

0: आपको उसमें कहीं राजनीति नहीं मिलेगी। जो कहानियों में थोड़ी बहुत आती है राजनीति की बातें आएंगी वो जरूर होंगी, लेकिन देश की राजनीति कैसी चल रही है, क्या चल रही है, कौन प्रधानमंत्री किस तरह का है, क्या है, ये सब साहित्य में कहीं नहीं मिलेगा आपको। इंटरव्यू जैसे इंटरव्यू में जैसे बात करेंगे उसमें जरूर मिलेगा, उसमें खूब मिलेगा, भरपूर मिलेगा। तो ये उनका एक अपना सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अनुसार वो हमेशा रहे, उस पर अडिग रहे हमेशा, और उसको उन्होंने हमेशा निभाया। और साहित्य में वो यही लेके चलते थे कि मनुष्य को हम लेके चलेंगे। मुझे साहित्य में अपने सिर्फ मनुष्य को रखना है,
1: मनुष्यता। जी,
0: मनुष्य राजनीति से बहुत परे है, वो राजनीति में कभी खपी नहीं सकता। तो वो सिर्फ मनुष्य को लेके वो चलते थे साहित्य में, और जो भी पूरा साहित्य है उसमें आपको मनुष्य ही मिलेगा, आपका समाज मिलेगा, सामाजिक दृष्टिकोण मिलेगा, समाज की बातें मिलेंगी, और उसका मनुष्य का कैसा व्यवहार होता था, क्या उसका आचरण रहता था, वो उसको।
1: निश्चित रूप से साहित्य में कैसे हम मनुष्यता को आगे ले जा सकते हैं, यह हमारा लक्ष्य होता है। आप सभी से एक साझा प्रश्न रखना चाहूंगा। विष्णु प्रभाकर जी की साहित्यिक विरासत को अगर हम संक्षेप में व्यक्त करना चाहें तो कैसे उनकी साहित्यिक विरासत को समझा जा सकता है, और हम उस थाती को कैसे संजो और सहेज सकते हैं।
2: कथाकार बहुत बड़े थे, उपन्यासकार बहुत बड़े थे, साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको उपन्यास पर ही मिला, लेकिन हमने अक्सर बहुत बार लिखा कि उनकी डिजर्विंग कृति साहित्य अकेडमी के लिए आवारा मसीह आई थी, उस पर उन्हें मिलना चाहिए था। अज्ञे को जो उनकी कृति शेखर एक जीवनी पर मिलना चाहिए था। हरिवंश राय बच्चन के साथ भी न्याय नहीं किया, तो बहुत सारे लेखकों के साथ साहित्य अकेडमी ने उस काल में न्याय नहीं हुआ। विष्णु जी ने हिंदी में सबसे बड़ा काम जो किया वो शरद को उनकी जीवनी देके एक बड़ी कृति उन्होंने हिंदी को दी। दूसरा काम, हिंदी लघु कथा को उन्होंने साहित्य में स्थापित किया, उसको विधा का दर्जा नहीं मिला था, विष्णु प्रभाकर ने लघु कथा को हिंदी में स्थापित किया, और संभवतः उनके कई लघु कथा संग्रह आए, उनकी तरह से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये दो लोग थे, एक रावी थे आगरा में, तो ये दो तीन लोग थे जिन्होंने लघु कथाएं लिखी, इनके लघु कथा संग्रह सबसे पहले छपे। एक और मध्य प्रदेश के एक आनंद मोहन अवस्थी, उनका संग्रह 1948 में संभवतः परसाई जी ने उसकी भूमिका लिखी। तो ये लोग विष्णु प्रभाकर और इन लोगों ने हिंदी लघु कथा की आधारशिला रखी, इतिहास में उनका नाम आरंभिक लोगों में लिखा जाएगा।
1: सच है, उन्होंने न केवल एक कथाकार के तौर पे यात्रा वितान ही नहीं, बल्कि बाल साहित्य में आपने जैसे चर्चा की, लघु कथा में भी आपने ये भी चर्चा की कि अर्धनारीश्वर जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, या फिर आवारा मसीहा कौन। अब इसमें साहित्यिक विरासत की जब बात आती है तो निश्चित रूप से एक चिंतन करने योग्य विषय है। मैं बात करना चाहूंगा इसी विषय पर आदरणीय डॉक्टर क्षमा शर्मा जी से।
3: बलराम जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और कल जब मैं अपने पति डॉक्टर सुधीश पचौरे जी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया जो मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने कहा कि जो बलराम जी कह रहे हैं कि आवारा मसीहा पर नहीं पुरस्कार मिला, तो उन्होंने बताया कि इससे लेखकों में बहुत नाराजगी पैदा हुई कि उनको आवारा मसीहा पर मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला। तो लेखकों ने क्या किया कि फंड इकट्ठे किए, और साहित्य अकादमी जितने पैसे का पुरस्कार देती थी वो इकट्ठा किया, और वो बता रहे थे कि यहीं कहीं एनडीएमसी भवन के पास एक पूरा समारोह किया
2: जी जी।
3: और उसमें उनको सम्मानित
2: हाँ,
3: किया।
2: मैंने भी सुना है, सुना
3: तो ये बात मुझे तो पता ही नहीं थी, क्योंकि वो फंड रेजर करने वालों में खुद भी थे। और एक उन्होंने मुझे बताया जो मुझे पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इवनिंग कॉलेज में पढ़ाते थे, जाकिर हुसैन कॉलेज में, वो जा रहे होते थे कॉलेज, और प्रभाकर जी अपने घर से पैदल पैदल यहाँ टी हाउस या मॉनसिंह प्लेस में हमेशा आते थे, पैदल चलना। तो सबसे बड़ा गांधी बात तो यही है, गांधी जी पैदल चलते थे तो वो भी पैदल चलते थे, और ये कितनी बड़ी बात है कि पैदल चलना चाहता है आदमी, अपने शरीर के लिए भी और अपने को जमीन से जुड़ा होने के लिए भी। तो वास्तविक रूप में वो जमीन से जुड़े साहित्यकार थे, और आवारा मसीहा को नहीं मिला तो लेखकों की भावना देखिए ना, कि लेखकों ने कहा कि क्यों नहीं मिला, हम साहित्य अकादमी को जवाब देंगे।
2: लेखकों ने जवाब दिया,
0: पाब्लो नेरुदा सम्मान लेखकों ने मिलकर समारोह किया था, उसमें उनको दिया
1: जी। आवारा मसीहा का भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है
2: जी,
1: हो रहा है अभी भी, विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आवारा मसीहा जो भारतीय जीवनियां लिखी गई हैं भारत में उनमें सबसे अग्रणीय
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: पंक्ति में सबसे अच्छी मानी जाती है।

0: अग्नीय पंक्ति में शामिल है।
1: बांग्ला भाषा के लोगों ने कहा कि वो बांग्ला भाषी राइटर हैं, लेकिन ऐसी जीवनी किसी बांग्ला भाषी ने उन पर नहीं लिखी जो भीष्म प्रभाकर ने लिखी।
2: जानते नहीं है
1: हाँ, शरद जी बहुत सारे जानते नहीं कि क्या है जो उन्होंने हिंदी को ही नहीं बंगाल वाले लोगों को बताया कि ये अवरामसिया ये है तुम्हारा लेखक इतना बड़ा था, और पूरे देश को बताया। और आपने जैसा कहा कि पूरी दुनिया में अवरामसिया का अनुवाद हुआ, विदेशों में भी वो किताब गई, बहुत महत्वपूर्ण किताब है।
0: आज की चर्चा ने हमें यह अनुभव कराया कि विष्णु प्रभाकर केवल एक साहित्यकार नहीं थे, वे भारतीय जीवन मूल्यों के प्रतिनिधि थे। उनकी रचनाओं में मनुष्य है, मानवता है, संघर्ष है, आशा है, करुणा है, और सबसे बढ़कर मनुष्य के प्रति अटूट विश्वास है। उनकी साहित्य साधना हमें यह सिखाती है कि साहित्य केवल शब्दों का विन्यास नहीं बल्कि समाज की नैतिक चेतना का निर्माण भी है। आज के इस सार्थक संवाद के लिए हमारे सभी सम्मानित अतिथियों श्री अतुल प्रभाकर जी, डॉक्टर क्षमा शर्मा जी और श्री बलराम जी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।
3: विष्णु प्रभाकर एक समग्र दृष्टि। अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे विष्णु प्रभाकर के सुपुत्र श्री अतुल प्रभाकर, वरिष्ठ कथाकार श्री बलराम, वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर क्षमा शर्मा, युवा साहित्यकार डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉक्टर वेद मित्र। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश वत्स।
4: उमस भरी गर्मी बेशक लोगों को परेशान करती हो, लेकिन साहित्यिक गतिविधियाँ, कवि सम्मेलन और कवि गोष्ठी के आयोजन थमने का नाम नहीं लेते, क्योंकि साहित्यिक गतिविधियों की गर्माहट के समक्ष गर्मी की उमस बौनी नजर आती है। 11 जुलाई 2026 को ऐवान गालिब माता सुंदरी रोड आईटीओ के सभागार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अंतर्राष्ट्रीय शायरे आजम दादा गुरु डॉक्टर गुलजार दहलवी, डॉक्टर पंडित आनंद मोहन जोशी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष में डॉक्टर गुलजार दहलवी सत्साला जश्न कमेटी की ओर से आयोजन किया गया, जिसका संयोजन कमेटी के अध्यक्ष जनाब हसन जिया, समाज सेवी एवं महासचिव जनाब शेख अलीमुद्दीन ने संयुक्त रूप से किया। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सहबर रसूल साहब, पूर्व अध्यक्ष उर्दू एकेडमी दिल्ली, विशिष्ट अतिथि के रूप में देश के मशहूर शायर जनाब अफजल मंगरौली, एजाज मकबूल वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, अति गण्यमान्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय गीतकार, गजलकार एवं सिने कलाकार डॉक्टर अशोक मधुप, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अरुण सागर, एडिशनल कमिश्नर GST बांदा तथा हसीम दैलवी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शायर जावेद नियाजी की नात से हुआ। इस मौके पर डॉक्टर गुलजार दहलवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर जनाब शेख अलीमुद्दीन असदी द्वारा संपादित प्रकाशित पुस्तकों का मेहमानों द्वारा इजरा किया गया, जिसमें डॉक्टर गुलजार दहलवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर तमाम अदबी विद्वानों के लेख, संस्मरण, गुलजार की गजलें, नज़में, रुबाइयां आदि संकलित थी। रुड़की उत्तराखंड के मशहूर शायर अफजल मंगलौरी द्वारा डॉक्टर गुलजार दहलवी की खिराजे अकीदत पेश करते हुए उन पर लिखी गजल का खूबसूरत अंदाज में सहस्वर पाठ किया। कायाकल्प साहित्य कला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मधुप ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में डॉक्टर वसीम राशिद, डॉक्टर वकार मानवी, फरीद अहमद फरीद, इकबाल फिरदौसी, जावेद अब्बासी, पवन कुमार तोमर ने अपने अपने अंदाज में गुलजार साहब को खिराजे अकीदत पेश की। 12 जुलाई 2026 दिन रविवार को हिंदुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा वरिष्ठ कवित्री सुश्री सरोज शर्मा की पुस्तक मैं अभिव्यंजना काव्य संग्रह का लोकार्पण, परिचर्चा एवं सम्मान समारोह का आयोजन अकादमी रोहिणी स्थित सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले, कार्यक्रम अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, श्री सुधाकर पाठक तथा विशिष्ट अतिथियों के रूप में सुश्री ममता किरण, डॉक्टर आरती लोकेश एवं डॉक्टर सविता चड्ढा की गर्मयमयी उपस्थिति रही। दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के सम्मान के बाद कार्यक्रम को विधिवत रूप से समारंभ किया गया। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक ने कहा कि सरोज शर्मा जमीन से जुड़ी हुई एक संवेदनशील कवित्री हैं। उन्होंने लंबे समय तक दिल्ली नगर निगम में सरकारी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी और सेवानिवृत्ति के बाद वे पूर्ण रूप से साहित्यिक साधना में संलग्न हैं। साथ ही वे हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। वरिष्ठ साहित्यकार ममता किरण ने कहा कि भले ही यह सरोज जी की पहली पुस्तक है, किंतु वे लंबे समय से साहित्यिक कार्यक्रमों में सक्रिय रही हैं। आज जब डिजिटल युग में लोग रील बनाकर पोस्ट कर रहे हैं और कुछ

0: लाइक्स व्यूज पाकर वायरल हो रहे हैं, ऐसे समय में धीमी गति से अपने मनोभावों को लिखना और पुस्तक के रूप में लाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अबू धाबी से शिक्षाविद एवं कवित्री डॉक्टर आरती लोकेश ने सरोज जी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अबू धाबी में हिंदी भाषा की स्थिति पर अपना सारगर्भित विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सविता चड्ढा ने सरोज जी की पुस्तक पर अपना समीक्षात्मक मंतव्य रखा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुविख्यात कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले ने कहा कि पुस्तक प्रकाशित करना एक चुनौती भरा काम है। सृजन करने में हम सभी को आनंद आता है, किंतु संकलित करके पुस्तक के रूप में लाना एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए कई रचनाकारों की पुस्तकें प्रकाशित नहीं होती। सरोज जी ने अपने अनुभवों को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जो कि सराहनीय है, किंतु यह जानकर हैरानी होती है कि यह उनकी पहली पुस्तक है। लिखने के लिए तो वे काफी वर्षों से लिख रही हैं, किंतु जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने रचना कर्म को समय नहीं दे पाते। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने कहा कि सरोज जी की पहली पुस्तक है और पहली पुस्तक का स्वागत किया जाना चाहिए, उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए, हाँ उस पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कविता की जादू पर बात करते हुए कहा कि कविता सीधे सपाट शब्दों में नहीं बल्कि कविता इशारे इशारे पर अपनी बात कहती है, और यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन कविता लिख रहा है बल्कि कविता महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर भावना शुक्ल के संचालन में आयोजित इस समारोह के उपरांत काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका संचालन कवि श्री विनोद पाराशर ने किया। समारोह में अकादमी की पदाधिकारी सुश्री सुरेखा शर्मा, सुषमा भंडारी, प्रकाश कंवर, विजय शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, ध्रुव शिवहरे, द्वारका पांडे, किशोर कुणाल के अतिरिक्त कई वरिष्ठ साहित्यकार और कवि उपस्थित रहे। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी की तरफ से डॉक्टर संजीव कुमार जी की पुस्तक संयोगता परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार शशि सहगल, मनोज अबोध, डॉक्टर जगदीश व्योम, डॉक्टर संजीव कुमार संस्थापक अध्यक्ष वामा अकादमी, संतोष श्रीवास्तव वरिष्ठ साहित्यकार, शाकुंतला मित्तल वरिष्ठ साहित्यकार निदेशक वामा अकादमी सहित अन्य गणमान्य साहित्यकार उपस्थित रहे।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश वत्स। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।
3: नमस्कार, मैं काजल सभी श्रोताओं का हमारे अतिथि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने चिकित्सा सेवा को केवल पेशा ही नहीं बल्कि मानवता की साधना बना दिया। अपने समर्पण, सादगी और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय जी, जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में जाना माना नाम है। सर्जरी में हासिल की गई उपलब्धियों को देखते हुए उनका नाम लिम्का और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वहीं सामाजिक उपलब्धियों के लिए उन्हें इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल चुका है। पद्मश्री से सम्मानित है। वर्ष 2005 में हड्डी का सबसे बड़ा ट्यूमर निकालने का विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हुआ। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की उत्तराखंड शाखा के वो संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं। आजकल एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब की पहचान केवल एक कुशल सर्जन के रूप में नहीं बल्कि एक संवेदनशील और विनम्र इंसान के रूप में भी है। आज हम उनसे उनकी शख्सियत, जीवन मूल्यों और प्रेरणादायक अनुभवों पर विशेष बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है।
4: नमस्कार।
3: डॉक्टर साहब, आपकी सादगी की चर्चा अक्सर होती है, आप अपने व्यक्तित्व को किस तरह से परिभाषित करेंगे? आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जिसे आप अपनी सफलता का आधार मानते हैं, क्या कहेंगे?
4: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया काजल जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और आपने जो सवाल किया वो इतना है, वो हमारे लिए नहीं, आपने कहा कि हमारी सफलता का, एक मंत्र दे रहा हूँ, वो हमारी सफलता का नहीं, वो आपकी सफलता का और जो लोग सुन रहे हैं वो सबकी सफलता का है।
3: बहुत शुक्रिया।
4: सबसे अच्छे सफलता के लिए आपका व्यवहार बहुत अच्छा।
3: क्या बात।
4: उसके बाद हम जिस काम

0: में भी करें, जिस क्षेत्र में भी है, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और यदि आपके पास ज्ञान आ गया है तो व्यवहार के माध्यम से इसको आप अपना प्रयोग कीजिए, जिसको स्किल कहते हैं। तो हम सब लोगों को इन तीन चीजों को हमेशा रखना चाहिए, व्यवहार, ज्ञान एंड कौशल। उसको हम अंग्रेजी में कहें तो बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहब। आप एक संवेदनशील इंसान तो हैं ही, इतनी खूबसूरत बात कही। और जितना मैंने आपके बारे में जाना है, तो मैंने ये भी अभी आपसे बातचीत हो रही थी कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ, जाने माने सर्जन होने के साथ साथ, आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए और हमारे श्रोताओं को जरूर आपसे कुछ सुनाइए।
0: देखिए, कविताओं का तो मुझे ऐसे है कि मुझे लिखने पढ़ने का शौक है, वो बचपन से रहा है। किताबें खरीदने का और किताबें पढ़ने का। मैं तो आपके माध्यम से सब लोगों से कहूंगा कि जो पुस्तकें हैं वो सबसे अच्छी दोस्त हैं। मैं लिखता भी रहता हूं। मेरी एक पुस्तक आई है उपहार संदेश का, जिसको पहले ज्ञानपीठ में छापा हुआ था, प्रकाशित किया था, अब वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। उसमें हमने कई कविताएं लिखी, और कविताएं किसी एक डॉक्टर के नाते नहीं लिखी है, एक समाज के व्यक्ति के नाते मैंने हर समस्या के लिए कहे या हर घटना के ऊपर कोई ना कोई कविता लिखी है। जो दर्शक या जो श्रोता कभी इसको पढ़ेंगे, तो मैं ये बिल्कुल उनसे निश्चित तौर से कहता हूं कि उन कविताओं में कम से कम आपको एक कविता ऐसे लगेगी जैसे आपने खुद वो कविता अपने बारे में लिखी हो।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही। और इसीलिए तो कहा जाता है कि आप एक बहुत ही संवेदनशील इंसान है। और डॉक्टर साहब, कविता तो मैं आपसे जरूर सुनेंगे हमारे श्रोता। तो एक सवाल मेरे जहन में आया, कहते हैं कि जो आपकी बॉन्डिंग है, आत्मीयता है जो मरीजों के साथ, वो आपकी पहचान है, तो इसके पीछे आपका जीवन दर्शन क्या है?
0: देखिए, मेरा मानना ये है कि हम लोग समाज की उत्पत्ति है।
1: बिल्कुल।
0: और हमें समाज को कुछ देना चाहिए। ये हमारा अब कर्तव्य भी नहीं रहना चाहिए, जो हमारी उम्र के हैं उनका कर्तव्य भी नहीं होना चाहिए, उनका दायित्व भी होना चाहिए। जैसे बहुत लोग हैं हमारी उम्र के लोग, अपने बच्चों को, नाती पोते पोतियों को तो आप पढ़ाते ही हो, उनके बारे में तो सोचते ही हो, कभी आप दूसरों के नाती पोतों के बारे में सोचिए। और हम लोगों को इतना ज्ञान है, यदि हम अपनों को दे सकते हैं तो वो ज्ञान आप दूसरों को दे दिए, और हो सकता है वही दूसरे आपके अपने बन जाएंगे ना।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने कि अपना अपनी चीजें बांट के।
0: क्यों नहीं। और वैसे भी कहते हैं कोई भी चीज है ना, बांटने से दुगनी होती है।
1: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। और जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही थी कि एक सर्जन होने के साथ साथ एक संवेदनशील इंसान बने रहना, ये बैलेंस आप कैसे बनाए रखते हैं, क्योंकि लेखन के लिए संवेदनशीलता की जरूरत होती है।
0: मैं दो चीजें कहूं कि संवेदनशीलता हर व्यवसाय में आनी चाहिए, हर प्रोफेशन में आनी चाहिए, लेकिन दो प्रोफेशन एक ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत ही जरूरी है, यदि इसको कहें तो बहुत। एक है शिक्षक का और दूसरा है वो है चिकित्सक का।
1: कहते हैं ना कि ये जरूर सोचे कि हर आंख का आंसू हमारा है, इंसानियत के शहर की कोई सीमा नहीं होती, हर जख्म की पीड़ा हमारी है, तभी हम दूसरों के दर्द को
0: समझ सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो यहाँ मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि आप कवि भी हैं, लेखक भी हैं, तो एक कविता तो जरूर बनती है।
0: मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है सपने हमारे और आपके। ये हमारी कविता की एक पुस्तक है उपहार संदेश का, उसमें से एक कविता ली गई है। वही ये कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं, कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूँ, कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते।
1: क्या बात,
0: सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है, और रात के सपने कम ही पूरे होते हैं दिन के अधिकांशता। कभी कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूँ, अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुँच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया, वासुदेव
1: कुटुम्बकम वाह क्या बात,
0: मतलब है पूरी एक दुनिया परिवार है। धन्यवाद,
1: बहुत खूबसूरत,
0: धन्यवाद। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन में। सपने ही तो आधार है हमारे आपके जीवन के, सपनों की नींव पर तो आज इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत।

0: आपने कहा कि सहयोग की अभी आपने बात की थी, खूबसूरत कविता जो आपने हमें सुनाई, हमारे श्रोताओं ने सुनी, तो यहाँ मैं जरूर जानना चाहूंगी आपसे कि आप जब एक टीम को हेड करते हैं, जब आप टीम के साथ काम करते हैं, तो आपकी जो नेतृत्व शैली होती है वो कैसी रहती है?
1: मैं ये अपनी ही बात नहीं कहता हूँ, मैं बहुत, जैसा कि मैंने कहा, बहुत मंचों से विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, किसी तरह के कार्यक्रम में जाता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को एक टीम की जरूरत है, क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता, और यदि अकेले हो सकता तो उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना कि टीम के साथ होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्किंग टुगेदर मीन्स विनिंग टुगेदर। मैं कई लोग जो सुन रहे हैं और जो खास तौर से उन लोगों को जैसे लेते हैं या अपने सहयोगियों को रखते हैं, तो मैं उन सहयोगियों के लिए 5 चीजों को बताऊंगा, वो अंग्रेजी में है। अंग्रेजी का सबसे भय कि उस जिस व्यक्ति को आप टीम में रख रहे हैं उसमें कॉम्पिटेंस होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: पहला उसका गुण है कॉम्पिटेंस होना चाहिए। दूसरा उसका गुण है कमिटमेंट होना चाहिए
0: जी।
1: तीसरा उसका गुण जो है वो कर्टियस होना चाहिए
0: जी।
1: और चौथा उसमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए,
0: बहुत जरूरी।
1: और 5 में जो सबसे बड़ी चीज है उसमें कॉम्पेटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें, 5 चीजें होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छी टीम को बना सकते हैं। हम लोग किसी के लिए प्रतियोगिता के माध्यम से काम ना करें। जब हम किसी टीम में होते हैं, किसी दफ्तर में होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो हम लोगों को कॉम्पिटिशन नहीं, बल्कि हम लोगों को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करने चाहिए, कि जो आप में कमी है वो मैं पूरा करूंगा, जो मुझ में कमी है वो आपको पूरा करना चाहिए।
0: बहुत ही खूबसूरत। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब आपको इतना बड़ा सम्मान मिला पद्मश्री, तो उसके मिलने के बाद आपके भीतर क्या भावनात्मक परिवर्तन आया?
1: देखिए, मैं ये कहूं कि बिल्कुल आया है। हमें जो कहने के जो प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ गए हैं, पहले जैसे हम कहते तो उसको मानते नहीं थे, आज हम जो बातें, आज मैं आपके माध्यम से जो श्रोता सुन रहे होंगे वो लोग भी, उनमें से मुझे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि कुछ लोग हमारी कही हुई बातों को मानते
0: हैं।
1: तो जब किसी भी काम के लिए कहते हैं, कोई मार्क लग जाता है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है
0: और जिम्मेदारियां और बढ़ जाती
1: है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है
0: जी। सर, डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके जीवन का कोई ऐसा क्षण जिसने आपको भीतर तक बदल दिया।
1: देखिए, सबसे ज्यादा तो जो मुझ में बदलाव आया है कि मैं डॉक्टर बनने के नाते कई तरह के लोग आते हैं, कई तरह के लोग आते हैं, और मैंने एक ये भी कहा कि हर किसी में भी, मतलब हर व्यक्ति का विकास वातावरण से होता है, और मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, तो मैंने बहुत बदलाव आया, खासतौर से जैसे मरीज लोगों को देखते हैं। मैं एक सड़क सुरक्षा का या रोड सेफ्टी का मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। अभी हमने एक पुस्तक भी लिखी है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं
0: जी, आपने लिखी है?
1: मैंने लिखी
0: जी,
1: है। आज मैं अपने उपराष्ट्रपति महोदय को भेंट करके भी आया हूं
0: जी,
1: और वो सिर्फ इसीलिए लिखी है कि मैंने बहुत नजदीकी से इन लोगों की जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक इस तरह की इनकी परेशानियों को देखा है, तो उसी के लिए मैं कहता हूं कि लोगों को सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम करना चाहिए। बहुत ज्यादा वो नहीं है, आपको यातायात के नियमों को सीखना चाहिए,
0: मानना
1: चाहिए, और सरकारों को यातायात के नियमों को सिखाना चाहिए और मनवाना चाहिए।
0: अंत में आप श्रोताओं के लिए अपने जीवन मूल्यों से जुड़ा कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सब लोगों से ये कहूंगा आपके माध्यम से कि देखिए, जो मैंने पहले बताया है, आप हर किसी में अपने व्यवहार में सुधार लाइए।
0: बिल्कुल।
1: एक दूसरा में ये कि जब आप पढ़ लिख रहे हैं तो आप विद्यार्थियों से कहेंगे कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, जब आपको विद्यार्थी जीवन है तो विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी जीवन वाले काम करिए, आप वो काम ना करिए जो ग्रस्त वाले लोग काम करते हैं। इस बात को बच्चों को जरूर ध्यान देना चाहिए।
0: सर, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, और बहुत आपसे के साथ जो चर्चा रही बहुत ही सार्थक रही, लेकिन इतनी खूबसूरत कविता आपने हमको सुनाई, तो जी चाह रहा है कि हमारे श्रोताओं को हम एक आपकी एक कविता और सुनाए, तो आपसे गुजारिश की एक और कविता।
1: मैं जरूर सुनाऊंगा। देखिए, कविता का शीर्षक है मौन नहीं मुखर हो।
0: क्या बात।
1: कविता हमारी एक नई पुस्तक आने वाली, उसका एक हिस्सा है
0: जी, जी।
1: इसको ध्यान दीजिए, एक हमने समाज के एक वर्ग के लिए लिखा हुआ है कि कुछ लोग बड़ी बात को सुनते रहते हैं, हर बात को सुनते हैं, आपको हर बात को सुनने की जरूरत नहीं है, कहां आपको मुखर होने में। ये भी नहीं कहता हूं कि आप सर से सबसे लड़िए झगड़िए, ऐसा भी नहीं, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज होती तो

0: अपने मन की तो बात बताइए, खास तौर से जो आज समाज में दुर्घटनाएं घटनाएं हो रही हैं वो अच्छी बात नहीं है। कविता का शीर्षक है मौन नहीं मुखर हो, मौन भी एक भाषा है। यह एक कविता का शीर्षक है। हाँ, मौन भी एक भाषा है, जो कभी भाव की स्वीकृत है तो कभी भाव की अस्वीकृत की स्थिति में हमेशा मौन नहीं बेबाक होना जरूरी है, ऐसे में ढुलमुल नहीं मुखर होना जरूरी है।
1: क्या बात, वाह,
0: धन्यवाद। मुखरता की जरूरत है, मुखरता संचार का माध्यम है, संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुखरता केवल ज्ञान ही नहीं एक कौशल है, जिसको सीखा सिखाया और बेहतर बनाया जा सकता है।
1: वाह,
0: पर मुखरता है क्या? सम्मान के साथ प्रभावी ढंग से बिना आक्रामक हुए आत्मविश्वास के साथ दृढ़ता से स्पष्ट शब्दों में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना की क्षमता मुखरता की परिभाषा।
1: वाह,
0: हाँ, मौन भी एक भाषा है, पर जीवन के द्वंद में यदि अन्याय या अमंगल की आशंका है तो ऐसे में मौन नहीं मुखरता की आवश्यकता है। इसलिए डर नहीं निडर हो, मौन नहीं मुखर हो।
1: वाह, बहुत खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहब आपने, अपने अनुभवों और विचारों को आपने हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपने भी मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी सादगी, सेवा भाव और सकारात्मक दृष्टिकोण निश्चित ही हमारे श्रोताओं को प्रेरित करेंगे। आपने बिल्कुल ये सिद्ध कर दिया है कि सच्ची सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि मानवता के प्रति समर्पण में होती है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हम आज के इस विशेष कार्यक्रम को, हमारे अतिथि को यही विराम देते हैं। हमारे अतिथि कार्यक्रम में हमारे आज के अतिथि रहे जाने माने आर्थोपेडिक

सावेन आदावर्स, ये आकाशवाणी है। सुबह के 9:30 बजे उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामीन का खैर मकदम है। हमारी नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

9:35 पर सुबह का ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 9:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे। खबरें नशर होंगी सुबह 9:50 पर और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अखबार जर्रे पर मबनी शम्मे फरोजा। प्रोग्राम में आज के फनकार हैं चित्रा सिंह और चतुर सेन। आप पेश करेंगे मुजफ्फर वारसी, शाहिद कबीर, अब्दुल हमीद अदम और बशीर बद्र का कलाम। प्रोग्राम का वक्त रहेगा सुबह 10:05 और सुबह 10:30 रूबरू प्रोग्राम के तहत मारूफ शायर मौलिम मुतरजिम जनाब अनवर जलालपुरी के साथ एक बातचीत आप समाप्त करेंगे। आपसे गुफ्तगु की SM नुमान ने। सुबह 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम में चंद फिल्मी नाट में आपकी नजर के जाएंगे और 11:30 पर जनाब योगराज का तहरीर का ड्रामा बदला का पहला हिस्सा आप सुनेंगे।

0: सुबगाहे प्रोग्राम में शब्द पेश कर रहे थे भाई सुरेंद्र सिंह जी जोधपुरी। इसके साथ ही ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 19 जुलाई 2026। 1848 में अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के सेनेका फॉल्स में महिलाओं के अधिकारों पर पहला ऐतिहासिक सम्मेलन आज ही के दिन आयोजित हुआ था। 1905 में भारत के तत्कालीन वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को मंजूरी आज ही के दिन दी थी। और 1969 में आज ही के दिन देश के 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन के महान नेता और साहित्यकार खूबचंद बघेल का। वे विधायक और राज्यसभा के सांसद भी रहे। डॉक्टर खूबचंद बघेल का हमेशा से सामाजिक कुरीतियों को देखकर खून खौलता था। इन्होंने हमेशा उन बुराइयों को समाज से दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें अनेकों बार समाज के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। 1946 में उनको तहसील कार्यालय कार्यकारिणी के अध्यक्ष और प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था।
2: Today is the birthday of a very, very popular actor, especially in Telugu cinema. We are talking about Rajendra Prasad. He made his debut in the year 1977 with the film Sneham and gained recognition with Manchu Palaki, which came in 1982. He then went on to star in several successful comedy films such as Ladies Tailor and Appulu Appa Rao, among others. Of course, he received the Nandi Award for Best Actor for Era Mandaram. We have a song from one of his films.

और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं हिंदी साहित्यकार, शिक्षक और कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक और फिल्मों के गीत लेखक गोपालदास सक्सेना यानी नीरज को। गोपालदास नीरज ने अपनी कविताओं, गजलों और फिल्मी गीतों में प्रेम, विरह, प्रकृति और जीवन के तमाम रंग शामिल किए। उन्हें पद्मश्री और फिर पद्म भूषण सम्मान मिला। फिल्मी गीतों के लिए उन्हें लगातार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। 1971 में आई फिल्म शर्मीली, इसका एक गाना था आज मदहोश हुआ जाए, काफी लोकप्रिय रहा। नीरज के लिखे गीत पर एसडी बर्मन ने म्यूजिक दिया। गाना राखी और शशि कपूर पर फिल्माया गया, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया।

1968 में शशि कपूर की फिल्म कन्यादान का ये गाना लिखे जो खत तुझे को हिंदी फिल्मों के क्लासिक गानों में शुमार किया जाता है। लिखे जो

1970 में देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी आई थी। इसमें नीरज का लिखा एक गीत था फूलों के कलम से दिल की कलम से। एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में ये गीत गाया गया।

0: What a beautiful song, isn't it? And Gopal Das Neeraj ki kuch panktiyan jo bahut famous hain. Ab to mazhab koi aisa bhi chalaya jaye jisne insaan ko insaan banaya jaye, jiski khushbu se mehak jaye padosi ka bhi ghar, phool is qism ka har simt khilaya jaye. Bahut khoob. और सारा उन्हीं की आवाज में हमने एक उनकी कविता निकाली है, आइए सुन लेते हैं.
1: आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मेरा होना भाग्य है कल होना सौभाग्य. रुके नहीं कोई यहाँ नामी हो के नाम, रुके नहीं कोई यहाँ नामी हो के नाम, कोई जाए सुबह को कोई जाए शाम.
0: बहुत खूब, यानी कवि का किस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है वो इसमें देखने को मिल जाता है. एंड फॉर दैट दीजिए इजाजत फरहत सायरा को. नमस्कार.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. सुबह के 9:50 हुए हैं. अब खबरें नशे की जाएंगी.
3: हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए. हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है. इम्तहान से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने तलबा और वालदेन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट्स जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. सीबीएसई ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तहान के नतीजे का ऐलान कर दिया है. खराब मौसमी हालात के पेश नजर अमरनाथ जी और विष्णु देवी यात्राएं आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं. और फीफा आलमी कप 2026 में तीसरे मकाम के सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर कांस्य का तमगा जीता है, जबकि फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमरीका के न्यूजर्सी में स्टेडियम में होगा. खबरें तफसील से. हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज सभी सियासी जमातों की एक मीटिंग बुलाई है. इस मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाने को यकीनी बनाने के लिए सियासी पार्टियों को ताउन चाहेगी. मानसून इजलास कल से शुरू होगा जो अगले माह की 13 तक जारी रहेगा. इजलास के दौरान कई अहम बिलों पर बहस की जाएगी और उन्हें मंजूर किया जाएगा. दस्तावेजात में रद्दोबदल से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात के पेश नजर इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने सख्त तंबीह जारी करते हुए तलबा और वालदेन को जांच पड़ताल के लिए ओएमआर शीट्स जमा कराने के बारे में एक सख्त एडवाइजरी जारी की है. एजेंसी ने इंकशाफ किया कि हाल ही में नजरसानी के लिए जमा कराई ओएमआर शीट्स जाली या मसनूई जहानत से तैयार करदा पाई गई हैं, जिसके बाईस तमाम शिकायत की मजीद सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है. सानवी तालमी के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं क्लास के दूसरे बोर्ड इम्तहान 2026 के नतज का ऐलान कर दिया है. तलबा अपने नतज डिजी लॉकर रिजल्ट्स पोर्टल पर देख सकते हैं. कौमी तालीमी पॉलिसी की सिफारिशात से हम आंगी करते हुए सीबीएसई ने इस साल 10वीं क्लास के दो बोर्ड इम्तहान शुरू किए थे. मेन बोर्ड इम्तहान 17 फरवरी से 11 मार्च और दूसरा बोर्ड इम्तहान 15 मई से 21 मई तक मुनाकिद किया गया था. सीबीएसई के मुताबिक मेन और दूसरे बोर्ड इम्तहान के मजमूई पास फीसद को जोड़कर इस साल नतज 96.78% रहे. सीबीएसई के मुताबिक बैरून मुल्क तलबा भी अपने नतज

0: दी जी लॉकर पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से आज खराब मौसम के पेशगोई के पेश नजर एहतियात के तौर पर बंद रहेगी। ये फैसला भारतीय महकमा मौसमियात की जानिब से अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की पेशगोई की वजह से मुसाफिरों की सलामती और तहफ्फुज़ को तवज्जो में रखते हुए किया गया है। हुक्काम ने कहा है कि अगले हुक्म तक बालतल और नूनवान चंदनवाड़ी बेस कैंप से यात्रियों की किसी भी तरह की आमोदरफ्त पर पाबंदी रहेगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भारत के महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की गई खराब मौसम से मुतालिक एडवाइजरी के पेश नजर वैष्णो देवी यात्रा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। श्राइन बोर्ड की तरफ से सरकारी तौर पर जारी की गई एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला यात्रियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। अकीदतमंदों को मशवरा दिया गया कि वो तहम्मुल से काम लें और श्राइन बोर्ड के सरकारी मवासलाती चैनलों के जरिए जारी की गई मालूम को अपनाए। हुक्काम लगातार मौसम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और यात्रा उसी वक्त फिर से शुरू हुई जब ये समझा जाएगा कि यात्रियों के लिए यात्रा पूरी तरह महफूज है। महकमा मौसमियात ने हसास इलाकों में अचानक सैलाब, मिट्टी के तोड़े खिसकने और पानी जमा होने के इम्कान के साथ जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्सों में फिर से शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया है। इंतजामिया ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करें और आबी इदारों से दूर रहें। वैष्णो देवी यात्रा ने इस साल एक अहम संग मील हासिल कर लिया है क्योंकि मुकद्दस गुफा के दर्शन के लिए यात्रियों की तादाद 50 लाख से ज्यादा पार कर गई है। 2025 में इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 39,84,000 यात्रियों ने मुकद्दस गुफा के दर्शन किए थे जबकि रवां साल के दौरान 50,70,000 यात्री मुकद्दस गुफा के दर्शन के लिए यात्रा कर रहे हैं जो एक रिकॉर्ड है। भारतीय महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड में आज तेज से बहुत तेज बारिश के सबब रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत के बहुत से हिस्सों में मुसलसल बारिश दर्ज की जा रही है जिसकी वजह से बड़ी नदियों की आबी सतह बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जुड़ो मकरबी मानसून के सरगम रहने के साथ ही रियासत के बेशतर हिस्सों में कल रात से रूक रूक कर बारिश जारी है। शिमले के मौसमियात के मरकज ने मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश के मद्देनजर 21 जुलाई तक ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में आज तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरला, माहे, ओडिशा और शुमाली मशरकी भारत के हिस्सों में इस मुद्दत के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। दिल्ली में महकमा मौसमियात ने बादल छाये रहने और हल्की फुल्की बारिश की पेशगोई की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जंजीबार के सदर और इनकलाबी कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मिवनी, जो भारत के चार रोजा सरकारी दौरे पर हैं, आज नई दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा भारत तंजानिया ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और मुस्तकबिल में ताउन के नए मौके तलाश करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर भी आज दौरे पर आए मेहमान से मुलाकात करेंगे। अमरीकी फौज ने उर्दुन में एक हमले के लिए पासदाना ने इनकलाब के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर से फजाई हमले किए हैं। पासदाना ने इनकलाब के हमले में दो अमरीकी फौजी अहलकार हलाक, एक लापता और चार फौजी जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल दाखिल किए गए हैं। अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर दुनिया भर में अमरीकी शहरियों के लिए सफर के सिलसिले में एहतियात बरतने की गरज से एडवाइजरी जारी की है। उसने खित्ते में अमरीका और ईरान की तरफ से जारी फौजी कार्रवाइयों के पेश नजर बढ़ती हुई कशीदगी के साथ सिक्योरिटी के पेचीदा सूरत हाल के लिए खबरदार किया है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के डायरेक्टोरेट DRI ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुल्क भर में कार्रवाइयां अंजाम दी हैं, जिसके नतीजे में बैरून मुल्क से स्मगल किया गया 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है जिसकी कीमत तकरीबन 22 करोड़ रुपए बताई जाती है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय करेंसी भी जब्त की गई है। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भोपाल जिले के जगदीशपुर में आज एक बड़ी तकरीब मुनाकिद करेंगे। वो 1460 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 10 लाख 54,000 किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल करेंगे। फीफा आलमी कप में कल रात मियामी स्टेडियम में तीसरी पोजीशन के लिए खेले गए एक सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 4-6 से हराने के बाद कांसे का तमगा जीत लिया है। बुकायो साका इंग्लैंड के ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने आलमी कप के नॉकआउट मैच में हैट्रिक बनाई। दूसरी जानिब आज न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आलमी कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 12:30 शुरू होगा। भारत की फुटबॉल की राजधानी समझी जाने वाली कोलकाता में फुटबॉल शायकीन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आज देर रात होने वाले सनसनीखेज आलमी कप का फाइनल मैच देखने के लिए पूरे जोश खरोश और जज्बे और बेसब्री से इस मैच को देखने के लिए बेहद मुंतजिर हैं। इसी दौरान दिल्ली की वजीर आला मोहतरमा रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि शहर के रेस्तरां, कैफे और दीगर अहल मराकिस कल 4:00 तक खुले रहेंगे। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने तलबा और वालदेन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट्स जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सीबीएसई ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तहान के नतीजे का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णो देवी यात्राएं आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे मुकाम के सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर कांसे का तमगा जीता, जबकि फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज देर रात अमरीका के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में होगा। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है अकवाल जर्रे पर मबनी शम्मे फरोजा।
2: इंसान अपनी फितरत के एतबार से तमद्दुन पसंद है। वो अलग थलग रहने के बजाय एक समाजी जिंदगी गुजारता है, अपने दूसरे हम जिंसों के साथ रहना पसंद करता है। समाज किसी एक फर्द या चंद अफराद के मजमू नहीं होता, बल्कि एक भरी पूरी जिंदगी और एक बड़ी तादाद में लोग यहां रहते बसते हैं। समाजी जिंदगी मुख्तलिफ अफराद और लोगों पर मुश्तमिल होती है। इसमें करीबी, अजीज व करीब और दीगर अफराद होते हैं। यहां सबसे पहले वालदैन, भाई बहन, दीगर अजीज व करीब, पड़ोसी और फिर अपनी औलाद से वास्ता होता है। इंसान के मिजाज में भलाई के साथ दीगर अनासिर भी शामिल हैं, इसलिए बड़ों पर, छोटों के तई या फिर वालदेन पर अपनी औलाद के तई तरबियत की एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अच्छी तरबियत खैरखाही, हमदर्दी और बाहमी ताबुन का जज्बा पैदा करती है, जिससे एक ऐसे मुआशरे का जन्म होता है जिसमें बाहमी खुवत, भाईचारा और एक दूसरे के तई काम आने का जज्बा होता है। यही जज्बा एक बेहतर समाज और इंसान की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करता है और किसी अच्छे समाज के लिए मील का पत्थर होता है। बच्चे पैदाइशी तौर पर कोरे कागज की तरह होते हैं। वो अपने दरमियान और आसपास होने वाली हरकत व सकनात का बगौर मुशाहिदा करते हैं और उसे अपनी जात पर नक्श कर लेते हैं। इसलिए वालदेन पर अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए बेहतर तालीम और तरबियत की बड़ी जिम्मेदारी बहर सूरत आ ही जाती है। नफसियात के माहिरीन और समाजी जिंदगी से बाखबर रहने वाले इसको गैर मामूली अहमियत देते हैं। गालिबन इसीलिए उनका ख्याल है कि एक महजब समाज की तश्कील का आगाज बच्चे से नहीं बल्कि उनके वालदैन से होता है, क्योंकि बच्चा जो कुछ हासिल करता है उसकी इब्तदा वालदैन या करीबी अजीज व करीब से होती है। इससे किसी को इनकार नहीं कि बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। अगर उनकी तालीम और तरबियत में जरा सी भी कोताही बरती गई तो उन्हें जवाल पजीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बच्चों की तरबियत का अव्वलीन इदारा मां की गोद है। अगर मां अपने बच्चे की तालीम और तरबियत बेहतरीन खतूत पर करती है तो वह दरअसल माशरे को एक बेहतरीन इंसान मुहैया कराने में अपना किरदार अदा करती है। मां की तरबियत के साथ ही साथ बाप का किरदार भी बहुत अहमियत का हामिल होता है। एक तरफ मां का लाड और प्यार है तो दूसरी तरफ बाप की सख्ती, लेकिन लाड और प्यार सख्ती में एतदाल बढ़ता जाए, यानी लाड ऐसा कि जायज मुतालबे ही तकमील को पहुंचे और सख्ती ऐसी कि इसमें प्यार भी हो بچے کو سماج کا مثالی

0: इस गजल के साथ ही हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशात का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के तहत लीजिए अब सुनिए मारूफ शायर, मौलिम, मतरजिम और मारूफ नाजिम जनाब अनवर जलालपुरी के साथ की गई एक बातचीत। आपसे महवे गुफ्तगु हैं SM नोमान।
1: मोहतरम हजरात, उर्दू सर्विस के रूबरू प्रोग्राम में हम गाहे गाहे आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियतों से कराते हैं जो अपने खास मैदान में एक मुनफरिद मुकाम रखती हैं और जमाना उनको अलग अलग नामों से भले ही जानता हो, उनकी अलग अलग हैसियतों से भले ही वाकिफ हो, लेकिन उनके जो कारहाए नुमाया होते हैं वो इतने अहम होते हैं कि उन्हें किसी भी तौर आने वाली नस्लें भी फरामोश नहीं कर पाएं। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे दरमियान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिसे हम मौलिम की हैसियत से भी पहचानते हैं, एक बहुत अच्छे शायर की हैसियत से भी वो सारी दुनिया में जाने जाते हैं, बहुत अच्छे तर्जमा नगार, बहुत अच्छी नस्ल लिखने वाले और बहुत उम्दा निजामत करने वाले। मेरी मुराद है मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब से। हम स्टूडियो में आपका खैर मकदम करते हैं।
2: शुक्रिया नुमान साहब।
1: आपकी जिंदगी के जितने पहलू जिनमें से शायद चंद एक का जिक्र मैंने यहां किया है, उसमें अगर आपको खुद मैं फैसला करने को कहूं कि आप इनमें से किसी एक अपनी हैसियत को तरजीह देना चाहें तो वो हैसियत कौन सी होगी?
2: देखिए नुमान साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कमजोर पहलू की वजह से नुमाया हो जाता है, हालांकि उसका मजबूत पहलू भी होता है
1: जी।
2: मुशायरे की निजामत या किसी की शख्सियत का कमजोर पहलू है, ये अलग बात है कि इससे इज्जत भी वाबस्ता है, शोहरत भी, मकबूलियत भी, लेकिन ये कमजोर पहलू है। मजबूत पहलू तख्लीक है।
1: बेशक
2: कौन कितना अच्छा और कितना सच्चा तख्लीककार है, ये मजबूत पहलू है। तो मैं ये चाहता हूं कि खुदा मुझे वो सलाहियत बाकी रखे मेरे अंदर कि मेरी जो नसरी तख्लीक है और शायरी की जो तख्लीक है ये दोनों सलामत रहे, या मेरा जो तर्जुमे का काम है ये सलामत रहे। तो मैं इसकी दुआ करता हूं, इसलिए कि ये निजामत जो मेरी शोहरत का सबब बनी है, ये मैं समझता हूं ये सच्ची शोहरत का सबब नहीं होना चाहिए। इसे सच्ची शोहरत का सबब मेरी तख्लीकी सलाहियत जो है वो होनी चाहिए। लोग मेरी शायरी पर मुझे दाद दें, लोग मेरी नसर पर मुझे दाद दें, लोग मेरे तर्जुमे के काम को सराहें, ये मेरे लिए इज्जत की बात होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा नाजिम हूं, इसलिए कि निजामत में वाकई झूठ बोलना पड़ता
1: है।
2: हाँ, ये बिल्कुल

0: कन्फेशन है, झूठ इसलिए बोलना पड़ता है कि हमें ये मालूम है कि ये शायर जो सुना रहा है ये अपना कलाम नहीं सुना रहा, इसके बावजूद भी हमें वाह वाह करनी पड़ती है, दाद व तहसीन से नवाजना पड़ता है, उसे मुकर्रर इरशाद कहना पड़ता है और सामईन की ख्वाहिश पर उसे बार बार बुलाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये निजामत की जो खूबी है ये अल्लाह ने अलग से दी है, लेकिन ये खूबी पहचान न बनाए, पहचान तख्लीकी सलाहियत बनाए कि मैं शायरी कितनी अच्छी करता हूँ या मैं नसर कितनी अच्छी करता हूँ या मैंने जो तर्जुमे का काम किया है वो कितना सच्चा किया है।
1: बहुत उमदा बात कही आपने कि किसी भी फनकार की जो बुनियादी पहचान होती है वो उसकी अपनी तख्लीकात के हवाले से होती है, और यकीनन आपकी जो सलाहियतें हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपकी कई किताबें तस्करे में रही हैं, उन पर बहुत मशाहिर ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने, और जहां तक निजामत की बात है वो एक इजाफी आपकी क्वालिटी खूबी है, मस्त है, आपने खुद फरमाया। और कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक प्रोफेशनल डोमेन में होती हैं,
0: बेशक।
1: तो मुझे लगता है कि ये फन से ज्यादा एक खास तरह की तकनीक होती है जिसे मुशायरे में जो नाज़िम होता है वो इस्तेमाल करता है, और माशाल्लाह आप इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। और ये भी सही है कि मुशायरे की कामयाबी उस सेंस में नहीं, उन मानों में नहीं जिसमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो समझते हैं या जो सामईन हैं वो समझते हैं, बल्कि मुशायरे की असल कामयाबी जो होती है वो अवाम को अच्छे शेर व अदब की तरफ खींचना, रागिब करना,
0: बेशक।
1: ये फरीजा नाजिम का बहुत मुकद्दस फरीजा होता है जहां तक मैं समझता हूं, तो इसमें आप माशाल्लाह काफी कामयाब हैं, इसलिए ये हैसियत भी हमारे लिए अहम है, ये और बात के उस तरह से नहीं हो सकती।
0: देखिए नुमान भाई, ऐसा बहुत अच्छा जुमला आपने कहा कि ये मुशायरा जो है ये फन भी है, तकनीक भी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये तकनीक ज्यादा है, फन कम है, और इसे अगर फन किसी हद तक बनाया तो डॉक्टर मलिकजादा साहब ने बनाया था, इसका एतराफ करना पड़ेगा, इसलिए कि वो आला दर्जे की उर्दू बोलते थे, अदबियात आलिया से उनका ताल्लुक था, और वो अवाम को अपनी जहनी सतह पर लाना चाहते थे, ये उनकी खूबी थी। बाकी नाजिम जो हैं उसमें मैं भी शामिल हूं कि हम लोग अवाम की जहनी सतह पर अक्सर उतर जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। होना ये चाहिए कि हमारी जो इल्मी और जहनी सतह है हम अवाम को, सामईन को उस सतह पर लाने की कोशिश करें। हालांकि आज के दौर में जब उर्दू का मुकद्दर खराब हो चुका है, उर्दू इतनी कमजोर हो गई है कि मुशायरों में जो फरमाइशी पर्चे आते हैं वो हिंदी में लिखे हुए आते हैं, तो ये तवक्को करना कि सामईन की जहनी सतह उतनी बुलंद होगी जितनी नाजिम की जहनी सतह बुलंद है, या जो सदारत कर रहा है अगर वो कोई प्रोफेसर है या दानिश्वर है उसकी जो जहनी सतह है उस सतह पर अवाम नहीं आ पाएंगे। उस सतह पर लाने के लिए खसूसी नशिस्तें करनी पड़ेंगी जिसमें चुनिंदा सामईन को हमें बुलाना पड़ेगा, लेकिन ये हुजूम और भीड़ वाला मुशायरा जो है ये अच्छी शायरी न तो पेश करने का मौका देगा न अच्छी शायरी पर सच्ची दाद मिलने का मौका मिलेगा, इसलिए कि शायर भी मजबूर है कि सामईन क्या चाहते हैं, तो कभी कभी शायर सामईन की जहनी सतह पर उतर जाता है,
1: डिमांड सप्लाई का मामला
0: ये बेशक वही हो गया है। हालांकि होना ये चाहिए कि नाजिम ये कोशिश करे कि मुशायरे के सामईन को की जहनी सतह को तैयारी इस बात के लिए कर दे अपनी इब्तदाई तकरीर में कि मुशायरे के सामईन ये समझें कि हम एक तहजीब के शामियाने के नीचे बैठे हुए हैं।
1: बहुत अमदाबाद,
0: हमें ये चाहिए कि हम अच्छी शायरी पर दाद दें न कि शोर मचाएं। मुशायरे का ये जवाल है कि लोग मुशायरे में शोर मचाते हैं, सुनते कम हैं, अपना शोर ज्यादा सुनाते हैं, ये जो एक बात बिगड़ गई है, ये मुशायरे की जो तहजीबी चमक दमक है उसमें कमी ला रही है।
1: बेशक आपकी जो क्या कहें आपकी जो तशवीशात हैं

0: बिल्कुल साफ हैं। आजकल जो भी लोग मुशायरों में दिलचस्पी रखते हैं, मेरी मुराद है जो भी सुनते हैं या टीवी पर देखते हैं, उन्हें इस बात का एहसास तो होता है कि ये सामईन और नाजरीन वो नहीं है जो अब से 20 साल पहले हुआ करते थे। चूंकि जैसे जैसे हमारी कदरों में तब्दीलियां आ रही हैं, बहुत सारी चीजें तब्दील हो रही हैं, बहुत तेजी से इनकलाबात आ रहे हैं, उनके असरात जहनों पर और मयार और मिजाज पर भी होते हैं। अभी बरसबील तस्करा आपने जिक्र किया मलिकजादा मंजूर साहब का, अब इसे हुस्न इत्तेफाक कह लें हम कि वो भी अंग्रेजी के उस्ताद थे,
1: जी
0: आप भी अंग्रेजी के उस्ताद रहे हैं, तो ये जो उर्दू से बाहर का अदब है, जो दूसरी जबानों का अदब है, उनसे वाकफियत, उनका इल्म, उनकी समझ और एक जो ग्लोबल माइंडसेट है, उसे समझने के बाद क्या आपको शायरी में या जो अभी आपने जिस मजमे का या भीड़ का या सामईन का जिक्र किया, तो उनके मिजाज को संभालने और समझने में वो चीजें मुआविन होती हैं?
1: देखिए मैं बताऊं, मेरे ख्याल में अपने हर शख्स को दो कौमी और एक बैन अल-अक़वामी जबान सीखना चाहिए।
0: बहुत
1: अगर उसको उसके शऊर में ये बात शामिल है कि मुझे पढ़े लिखे लोग भी पढ़ा लिखा समझे, तो दो कौमी और एक बैन अल-अक़वामी जबान जरूरी है। उमूमन हम लोगों के साथ ये खुशकिस्मती है कि हम उर्दू के साथ हिंदी भी एक साथ तौर पर जानते हैं, और अगर हम अंग्रेजी भी जाने जो एक लिंगुआ फ्रेंका है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उसका फायदा यह होगा कि हमारा कैनवस जो है वो बड़ा हो जाएगा, हमारे सोचने का अंदाज तब्दील हो जाएगा। हम अगर शेली कीट्स को पढ़ते हैं तो फिर हम मजाज और अख्तर शीरानी को पढ़ें, हम उधर अगर बड़े टीएस इलियट वगैरह को पढ़ते हैं तो हम इधर आकर के सरदार जाफरी क्या कह रहे हैं, कैफी साहब क्या कह रहे हैं, अख्तरुल ईमान क्या कह रहे हैं, इन सब को भी जब हम पढ़ेंगे तो यकीनन जो है हमारा जहन बड़ा होगा, और उसके बाद हम अगर तख्लीककार हैं तो ये सारे मुताले के बाद हमारी जो तख्लीकी सलाहियत है उसकी सेहत में इजाफा होगा। तो दुनिया को खुली आंखों से देखना जरूरी है, और कम से कम दो हिंदुस्तानी अदब और एक गैर मुल्की अदब का मुतालिया जरूरी है। अगर आप इस 125 करोड़ के हिंदुस्तान में कुछ थोड़ी बहुत अपनी पहचान चाहते हैं तो आपको दो कौमी जबानें और एक गैर मुल्की जबान, वो चाहे अंग्रेजी हो, फ्रांसीसी हो, जर्मन हो या अरबी हो, फारसी हो, तो अगर हम उर्दू और हिंदी और फारसी इन तीन जबानों से अच्छी तरह वाकिफ हैं तब भी हमारा जहन बड़ा हो जाएगा, और उर्दू हिंदी के साथ अगर अंग्रेजी से या फ्रांसीसी से वाकिफ हैं तब भी जहन हमारा बड़ा हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि उर्दू शायरी करके अपने को तस्लीम कराने के लिए आपको मेरा ख्याल है अफलातून, अरस्तू और सोक्रात से भी वाकिफ होना चाहिए, और अरस्तू की जो पोएटिक्स है शेरियात के नाम से जिसका तर्जुमा शम्सुर रहमान साहब ने किया है, उस किताब को भी पढ़ना जरूरी है, और इधर आकर के मतलब हाली शिबली और मोहम्मद हुसैन आजाद को पढ़ना बहुत जरूरी है। बदकिस्मती यह है कि मुशायरे पर जो शोरा हावी हैं वो शायद जितने नाम मैंने लिए इनकी किताबों के एक दो सफात भी उनकी आंखों ने नहीं देखे, ये बदकिस्मती है। अल्लाह करे कि लोग बाशऊर हों और जो बातें मैं कह रहा हूं ये वो लोग भी सुन रहे हों जो मुशायरों के हीरो।
0: यकीनन वो सुन रहे होंगे, और हिंदुस्तान में ही नहीं हिंदुस्तान से बाहर भी सुन रहे होंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम दुनिया के अलग अलग ममालिक में सुना जाता है, काफी बड़ी तादाद में इसके सामीन मौजूद हैं। अभी तस्करा ये हुआ था कि जब हम मुशायरों में पढ़ रहे होते हैं और जब सामीन में से कोई उठ के आपको पर्ची देता है तो वो हिंदी में लिखी हुई होती है,
1: ये तो अक्सर,
0: और उससे पता चलता है कि ये शख्स, इसकी मादरी जबान उर्दू नहीं है, ये तो पता

0: चलता है। लेकिन अब जो इधर 10 साल से पिछले और तकरीबन 5 सालों से बहुत तेजी से जो लोग जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है, वो नौजवान प्रोफेशनल्स हैं उनमें से बहुत सारे जो साइंस के तालिब इल्म हैं और अलग अलग जगहों पर माशाल्लाह अच्छी जगहों पे हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, उनकी उर्दू शायरी में दिलचस्पी बढ़ी है और इस हद तक बढ़ी है कि वो उर्दू सीख भी रहे हैं। और जो लोग भी उर्दू में जाने जाते हैं उन तमाम लोगों को उन्होंने कमोबेश पढ़ा भी हुआ है।
1: बेशक।
0: और ये सूरत हाल अब से 10-15 साल पहले तक नहीं थी।
1: जी।
0: एक जहन कारफरमा था जो इन चीजों को एक मुख्तलिफ नजरिए से देखता था, लेकिन जो नई नस्ल आई है उसके यहां वो तअस्सुबात और तहफ्फुज़ात अगर हैं भी तो वो उतने मजबूत और मुस्तहकम नहीं है जो उसे रोक सकें शायरी से, अदब से, कल्चर से करीब आने में। जैसे अभी आपने तर्जमे किए हैं काफी, आपने माशाल्लाह गीता का तर्जमा किया है उर्दू में, और हिंदी में भी आप उतने ही जाने जाते हैं जितने उर्दू वालों में जाने जाते हैं।
1: सम्मेलन भी जाता
0: जी माशाल्लाह आपकी काफी मकबूलियत है उन स्टेजेस पर भी जहां खालिस उर्दू वाले आमतौर से नहीं होते। तो अब ये उर्दू हिंदी की ऑडियंस अलग अलग नहीं रही, सामीन अलग अलग नहीं रहे, मुझे लगता है कि ये एक हो गए हैं। तो उनमें कई लोग और कई सामीन इतने उम्दा जौक के होते हैं कि कई बार हैरानी होती है कि इनके खमीर में वो चीजें नहीं हैं जिनकी हम तवक्को इनसे करते हैं, लेकिन उनका मिजाज और उनके मुतालबात वो हैं जो बिल्कुल बहुत नफीस और नस्तालिक जहन के लोगों के होते हैं। तो ये बहुत अच्छी तब्दीली रोनुमा हुई है। इसमें जाहिर है आप जैसे लोगों का हाथ भी है जो अपनी चीजों को और दूसरे जो असातिज़ा की चीजें हैं चाहे उन्हें कोट करते हुए या जिस तरह से भी लोगों तक पहुंचाते हैं जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है। आपके तर्जमे पर अगर हम अभी गीता का जो तर्जमा है इस पर हम बात भी करेंगे और इससे हम कुछ अगर आप सुनाना चाहेंगे तो ये और खुशबख्ती होगी हमारी।
1: मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन एक बात आप जो ये कह रहे हैं कि जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है वो भी उर्दू से मुतासिर हैं और उर्दू में शायरी कर रहे हैं और किताबें भी उनकी छप रही हैं, अगरचे देवनागरी में छप रही हैं लेकिन वो होती हैं उर्दू ही।
0: उर्दू में
1: इधर पिछले 15-20 वर्षों से एक तहजीबी टकराव लाने की कोशिश की कि उर्दू और हिंदी को खामखा अलग किया जा रहा है। एक ही तरह की जबान अगर हमारे हिंदी के दोस्त पढ़ते हैं तो हम उसी जबान को हिंदी कह देते हैं
0: जी,
1: वही जबान अगर उर्दू वाला पढ़ता है तो हम उसे उर्दू कह देते हैं। दोनों बहुत प्यारी हैं,
0: बेशक
1: दोनों से मोहब्बत है, दोनों हमें प्यारी हैं, तो उर्दू भी हमारी ही है, हिंदी भी हमारी ही है, इसलिए कि दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एक जमाने में मैं मुशायरों में अक्सर ये बात करता था कि उर्दू के बगैर हिंदी न सीखी जा सकती है न सिखाई जा सकती, इसलिए कि इतनी कुर्बत दोनों में है कि हजार कोशिश के बावजूद अलग नहीं किया जा सकता। आप दर्जा 3 और 4 के किसी भी विद्यार्थी की वर्ड्स मीनिंग की कॉपी उठा लीजिए तो आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा सहायता माने मदद, आज्ञा माने हुक्म,
0: पुस्तक माने किताब,
1: पुस्तक माने किताब, प्रातः माने सुबह, संध्या माने शाम,
0: बहुत उम्दा बात
1: है, प्रकाश माने रोशनी। तो इस तरह के एक दो नहीं सैकड़ों अल्फाज, तो मालूम यह हुआ कि उसके अंदर उसके शऊर में और लाशऊर में रोशनी शामिल है, प्रकाश नहीं शामिल है। तो हम ये कह रहे हैं कि काश ऐसा माहौल बन जाए कि लोग प्रकाश को भी समझें और रोशनी को भी समझें और दोनों को लिखने के तरीके को भी समझ लें। एक दूसरे के करीब आने के लिए कुछ तो एक कदम हमें भी बढ़ाना पड़ेगा, एक कदम आपको भी बढ़ाना पड़ेगा हमारी तरफ। तो हम उर्दू वालों ने तो तो हिंदी सीख कर, हिंदी रस्म-ul-खत सीख कर, हिंदी जबान सीख कर अपना हक अदा कर दिया है। और हमारी ये दुआ है कि हमारे हिंदी के दोस्त जो हैं उनका दिल इतना कुशादा हो जाए कि वो उर्दू रस्म-ul-खत सीख लें, तो बहुत आसानी से दाहिना हाथ जो है, हमारा दाहिना हाथ आपके दाहिने हाथ से मिल जाएगा, हमारा बायां

0: आपके बाएं हाथ से मिल जाएगा और ये इतना खूबसूरत हिंदुस्तान बनेगा जबान के एतबार से जिसका ख्वाब महात्मा गांधी ने, चिश्ती ने, नानक ने, ये सब ने देखा था, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। हम लोग तो ख्वाब में देखते हैं कि काश ऐसा लिसानी तौर पर ऐसा हिंदुस्तान बन जाता कि जिसमें हमें एक दूसरे को सिर्फ समझने की जरूरत होती, समझाने की जरूरत ना होती।
1: आमीन, इंशाल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी, क्योंकि इस मरहले में अब काफी पेशरफ्त हो रही है, अलग अलग तबकात से, अलग अलग जगहों से लोग एक जगह जमा हो रहे हैं और इसी बात पर गौर किया जा रहा है कि ये जो जबानों के बीच एक मस्नूई फसील खड़ी थी उसे कैसे खत्म किया जाए, और इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगी। अभी आपके तर्जमे के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था, आपने गीता पर जो काम किया है, मुझे याद आता है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले चश्मे रेख्ता में इम्तियाज साहब ने, जो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने गीता पर एक तकरीर की थी, तो इसका रिलेवेंस, इसकी मानवीयत आज हमारे लिए, हमारी जिंदगी में क्या है, इस पर काफी गुफ्तगू होती रही है, सदियों से होती रही है और सदियों होती रहेगी। इस तरह की किताबें अपने आप में खजाने होते हैं जो धीरे धीरे, जिनसे हीरे जवाहरात निकलते रहते हैं। आपने जो तर्जमा किया है, अगर उसमें से कुछ हमें सुनाना चाहें हमारे सामईन के लिए, बहुत इनायत होगी।
0: मेरे लिए बड़ी खुशी और खुशकिस्मती की बात होगी। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक ये है कि अंधे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, बताओ युद्ध क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है, वहां दोनों फौजें क्या कर रही हैं। बात सिर्फ इतनी है, इस बात को मैंने जो फैलाया तो यूं बना पहला श्लोक गीता का कि धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे, उन्हें भी थी ख्वाहिश की दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या, वो एक शख्स संजय पड़ा जिसका नाम, वही उनसे आखिर हुआ हम कलाम, उसे रब ने ऐसी नजर बख्श दी कि बिन देखे हर एक शय देख ली, धृतराष्ट्र राजा भी थे बाप भी, समझते थे वो पुण्य भी पाप भी, मोहब्बत से बेटों की सरशार थे, अजब तरह के वो भी किरदार थे, उन्हें थी ये ख्वाहिश की सब जान लें, सभी लड़ने वालों को पहचान लें, कहानी तो संजय सुनाता रहा, है मैदान में क्या बताता रहा, वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वहीं से जले धर्म के भी दिए।
1: वाह वाह, बहुत
0: जंग से अमन की फसल पैदा हो रही है, ये गीता का बड़ा कारण।
1: बहुत रमादमा तर्जमा और बहुत
0: ये तो पहला श्लोक था जो मैंने आपको सुनाया। अगर आप इजाजत दें तो मैं कृष्ण अर्जुन की गुफ्तगू जो एक मौके पर हो रही है उसके मैं कुछ शेर आपको सुना दूं। सुनिएगा कि अजब हाल अर्जुन की आंखों का था, अजब हाल अर्जुन की आंखों का था, बड़ी देर तक सिर्फ आंसू बहा, बढ़ी उलझने और बेचैनियां, लगा उनको घेरे हैं दुश्वारियां, तो फिर कृष्ण ने उससे पूछा यही, बता किससे सीखी है ये बुजदिली, ये सब इल्म से दूर की बात है, जहालत की मजबूर की बात है, भले मानुषों की ये हरकत नहीं, ये हरकत वह है जिसमें बरकत नहीं, ये हरकत न इज्जत दिला पाएगी, न ये तुझको जन्नत दिला पाएगी, अय अर्जुन हवाओं का रुख मोड़ दो, ये नामर्दियों बुजदिली छोड़ दो, ये फितरत तुम्हें जेब देती नहीं, डुबो देना तुमको ये आदत कहीं, उठो जंग के वास्ते उठ पड़ो, लिए हाथ में असलहे उठ पड़ो, ये फरमान अर्जुन ने जब सुन लिया तो फिर दिल में जो कुछ भी था कह दिया, मैं भीष्म पितामह पे तानू कमा, मैं भीष्म पितामह पे तानू कमा, तो फिर सारे जग में रहूंगा कहाँ, गुरु द्रोण पर मैं चलाऊं जो तीर, तो सब लोग मुझको कहेंगे हकीर, बुजुर्गों की दिल में है इज्जत बहुत, मैं रखता हूं उनसे अकीदत बहुत, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे ऐशो इशरत नहीं चाहिए, बुजुर्गों को मारूं तो जाऊं कहां, निदामत को

0: अपनी छिपाऊं कहां, गदागर बनूं मुझको मंजूर है, भिखारी रहूं मुझको मंजूर है, नहीं कुछ खबर क्या है करना मुझे, है किस रास्ते से गुजरना मुझे, कहां जीत है और कहां हार है, हमें ये समझना भी दुश्वार है, जिन्हें मार कर हम न जी पाएंगे, प्याला न अमृत का पी पाएंगे, वही तो है दुश्मन बने जान के, कि जैसे वो बंदे हैं शैतान के, ऐ आका ये मुझ पर करम कीजिए, मेरी कश्मकश को समझ लीजिए, जो बेहतर है मुझको दिखा दें वो राह, मैं दामन में अब ले रहा हूँ पनाह, नसीहत हमें कोई फरमाइए, जो सीधा हो रास्ता वो दिखलाइए, मेरा देश हो चाहे जितना विराट, मिले चाहे संसार का राजपाट, मुझे देवता अपना राजा कहें, सभी लोक वाले मेरी ही सुने, मगर दुख मेरा कम न हो पाएगा, हंसेगा न दिल मेरा रो पाएगा। उधर जिक्र संजय करने लगा, धृतराष्ट्र के कान भरने लगा, कि लड़ने से अर्जुन का इनकार है, नहीं उनका दिल अब तो तैयार है, कृष्णा से ये कह के खामोश हैं, उन्हें होश ही है न बेहोश हैं, धृतराष्ट्र से उसने ये भी कहा कि अर्जुन है मायूस और गमजदा, मगर कृष्ण देते हैं हिम्मत उन्हें, दिखाते हैं राह शुजात उन्हें, उधर कृष्ण अर्जुन से हैं हम कलाम, सुनाते हैं रूहानियत का प्याम, वो कहते हैं अर्जुन से ऐ सोगवार, तू गम ओढ़ लेता है क्यों बार बार, तेरी बात तो ज्ञान वाली नहीं, कहीं से ये सम्मान वाली नहीं, जो ज्ञानी है जीने पे मरते नहीं, कभी मौत से भी वो डरते नहीं, वो कहते हैं ये जिंदगी कुछ नहीं, कि उनके लिए मौत भी कुछ नहीं, ये मिट्टी की काया हकीकत नहीं, बदन की यहाँ कोई कीमत नहीं, अजल और अबद तो फकत रूह है, हमारी सनत तो फकत रूह है, सदा से हूँ मैं भी सदा से हो तुम, हमेशा से मैं इब्तिदा से हो तुम, ये राजा भी तो है शुरुआत से, ये वाकिफ नहीं फिर भी हालात से, सभी लोग कल भी रहेंगे यहाँ, यूं ही सचता जाएगा सारा जहाँ, बदन जिसमें खून की रवानी भी है, उसी से बुढ़ापा जवानी भी है, इसी से तो वाबस्ता बचपन भी है, कि एक नाम इसका लड़कपन भी है, ये सब जिंदगानी की पहचान है, मगर रूह बिन सब ये बेजान है, वही रूह जब तक कि तन में रहे, तभी तक तो हरकत बदन में रहे, मगर एक दिन छोड़ देती भी है, किसी सिमत रुख मोड़ देती भी है, नए जिस्म की जान बन जाती है, नए तन की पहचान बन जाती है, समझदार गम इसका करते नहीं, जो मरता है साथ उसके मरते नहीं, ये सर्दी ये गर्मी ये गम ये खुशी, धनंजय समझ इनको तू आरजी, इन्हें मुस्तकिल मत समझना कभी, कि इन पर भरोसा न रखना कभी, ये जैसे भी हैं इनको बर्दाश्त कर, न फेर इनकी जानिब से अपनी नजर, कि है ऐसी बातों से जो बेनियाज, समझता है वो जिंदगानी का राज, तवाज़ुन जो दुख सुख में कायम रखे, तबीयत जो अपनी मुलायम रखे, मिजाज अपना जो मुस्तकिल रख सके, हमेशा जो काबू में दिल रख सके, वही मोहतरम गैर फानी वही, कि दायम वही जावेदानी वही।
1: बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इसकी रवानी और इसका जो जोश व खरोश और जो मुकालमे का अंदाज है, उसे आपने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने उसको यहाँ बयान किया है शायरी में।
0: नुमन भाई, ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी दाद है, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूंगा।
1: नवाजिश। और अब हमारे सामेईन ये चाहते हैं कि आप अपनी शायरी अगर अलग से तर्जमे के अलावा कुछ शेर इनके लिए सुनाना चाहें।
0: जी नुमान भाई,
1: इरशाद
0: कुछ गजल के चंद शेर सुनिए। कि जुल्फ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, जुल्फ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, आज तक कोई कसीदा नहीं लिखा मैंने, जब मुखातिब किया कातिल को तो कातिल लिखा, जब मुखातिब किया कातिल को तो कातिल लिखा, लखनवी बन के मसीहा नहीं लिखा मैंने, लखनवी बन के मसीहा नहीं लिखा मैंने, मैंने लिखा है उसे मरियम और सीता की तरह, मैंने लिखा है उसे मरियम और सीता की तरह, जिस्म को उसके अजंता नहीं लिखा मैंने, जिस्म को उसके अजंता नहीं लिखा मैंने।

0: तू मेरे पास था या तेरी पुरानी यादें, तू मेरे पास था या तेरी पुरानी यादें, कोई एक शेर भी तन्हा नहीं लिखा मैंने। चंद शेर और सुन लीजिए कि दिल से तड़प रगों से हरारत चली गई, दिल से तड़प रगों से हरारत चली गई, वर्षे में जो मिली थी वो दौलत चली गई, वर्षे में जो मिली थी वो दौलत चली गई। और देखिए हम जो स्टेज के माइक के लोग हैं, हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि बस एक लफ्ज मुंह से जो जायद निकल गया, बस एक लफ्ज मुंह से जो जायद निकल गया, रुसवाइयों को छोड़ के शोहरत चली गई, रुसवाइयों को छोड़ के शोहरत चली गई। अब मीठे बोल बोलने आए हैं लोग जब, अब मीठे बोल बोलने आए हैं लोग जब, बीमारे गम के सुनने की ताकत चली,
1: बहुत उम्दा,
0: बीमारे गम के सुनने की ताकत चली गई।
1: आपकी शायरी हो या आपके तर्जमे हो, आपकी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो अभी हम चाह रहे थे कि अगर आपके पास और वक्त होता तो काफी देर तक हम गुफ्तगू कर सकते थे। आपके पास इतने सारे मौजूआत हैं, आपने इतना कुछ पढ़ा है, इतना कुछ लिखा है कि हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, लेकिन आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए, बहुत नवाजिश, करम।
0: बहुत शुक्रिया नुमान भाई।
2: सामिन रूबरू प्रोग्राम के तहत अभी आप मारूफ मुअल्लिम शायर मुतरजिम मारूफ नाजिम जनाब अनवर जलालपुरी के साथ की गई एक बातचीत सुन रहे थे। आपसे महवे गुफ्तगू थे एसएम नुमान। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है। मेरी पसंद प्रोग्राम के तमाम सामईन को नईम का आदाब।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फर्ज फिल्म का नगमा। नगमा निगार थी आनंद बख्शी, मौसीकी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश है मिलन फिल्म का दो गाना, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ, और मौसीकी यहां भी तरतीब दी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

यह है मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में इंतकाम फिल्म का नगमा, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ मौसीकी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

इस नाम के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। ओली जब सुनी जनाब योगराज का तहरीर करदा ड्रामा बदला का पहला हिस्सा।

0: अंकल, अंकल।
1: अरे नसीम बेटी, आप इस वक्त यहाँ?
0: हाँ कोतवाल अंकल, बात ही कुछ ऐसी है। आप मेरे साथ अंदर आइए जरा।
1: हाँ चलिए। अरे बेटी, दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है। कहो बेटी, ऐसी क्या बात है इस गर्मी में? अरे मुझे बुला भेजा होता।
0: नहीं अंकल, इस तरह बात नहीं बनती।
1: अच्छा तो कहिए।
0: सच जानिए कोतवाल अंकल, मैं सच बोल रही हूँ और अपने पूरे होशो हवास में हूँ।
1: ये लंबी चौड़ी तमीज के माने?
0: मैं जानती हूँ कोतवाल अंकल, आपको मुझ पर यकीन नहीं आएगा। आपका कसूर नहीं, बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन आपको यकीन करना होगा क्योंकि ये सच है, कड़वा सच।
1: मुस्लिम बेटी,
0: मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बोल रही हूँ। आपको रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। मेरे अब्बा अपनी मौत नहीं मरे, बल्कि उनका कत्ल हुआ है।
1: नसीम बेटी, खुद को संभालने की कोशिश करो। ये क्या हालत बना रखी है आपने?
0: आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते कोतवाल अंकल? मेरे अब्बा मरे नहीं बल्कि मारे गए हैं, उनका खून किया गया है और मैं खूनी का पता बताने आई हूँ। ये खून किसी और ने नहीं, मेरे चचा शराफत अली ने किया है।
2: अरे अकबर भाई, मेरी तो जान निकल गई जब भाभी जान ने कहवा भेजा कि नसरीन बेटी का पता नहीं है। अरे कहाँ चली गई थी बेटी, कहाँ चली गई थी तू? अरे बेटा, क्यों अपने चचा की जगह जाय कराती हो? एक तो रहमत भाई हमें छोड़ गए, कुछ क्या कम कहर था हमारे ऊपर? अरे तुम तो इस बूढ़े चचा के सफेद बालों का ख्याल रखो बेटा। है
1: तुम्हारे चचाजान ठीक कहते नसीम बेटी।
2: देखो बेटा, मैं मानता हूँ, मानता हूँ बेटा कि बाप की मौत का गम, और वो भी रहमत अली जैसे शफीक बाप की मौत का गम, तो बड़ा जान का होता है बेटा। लेकिन बेटा यही तो वक्त है, यही वक्त इम्तहान का होता है बेटा, सब्र के इम्तहान का वक्त।
1: नसीम बेटे, अपने दुख को दुनिया की नजरों में तमाशा न बनाओ। उठो, शाबाश, सीधे घर चलो।
2: चल बेटा, चल चल चल चल। अरे मेरे बुढ़ापे के आबरू बेटा, चल चल।
0: कोतवाल अंकल, मेरी बात।
2: आओ बेटा, आओ आओ।
3: चलो मिया।
2: अरे भाभी जान, क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली बैठी हो? अरे क्यों दुनिया के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो?
0: ये क्या कहते हो शराफत भाई?
2: ठीक है कि खामिद की मौत का सानेहा कम जान का नहीं होता, लेकिन न मरने का पट्टा इस

0: दुनिया में भाई आखिर कौन लिखा के आया?
1: मैं बेवा पहले ही बहुत दुखी हूँ, ऊपर से मेरी और
0: देखो, देखो देखो देखो भाभी जान, तुम नसरीन की फिक्र मत करो, उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। ये अब ये तो ये बेटी तो अब मेरी आबरू है। अब देखो इसका भार तुम्हारे नहीं मेरे कंधों पे है। अरे ये तो मेरे बड़े भाई की निशानी है। अब देखो ना, रहमत भाई चाहते थे उनकी बेटी जिस घर में जाए खुशहाल जिंदगी गुजारे। बताइए,
1: अल्लाह तुम्हारा भला करे, मरने वाला तो बस ख्वाहिश करके चला गया।
0: अरे भाभी जान, आप क्यों फिक्र करती हैं? भाभी जान फिक्र मत कीजिए, अरे रहमत भाई की ख्वाहिश का पूरा पूरा एहतराम होगा, आप बेफिक्र रहिए।
1: काश काश।
0: इंशाल्लाह बेटा,
1: चुप,
0: इंशाल्लाह
1: चुप,
0: जरूर होगा,
1: चुप हो जा,
0: और दुनिया देखेगी बेटा। हाँ अच्छा अच्छा, तो भाभी जान मैं चलता हूँ। हाँ सुनिए, वो नसरीन बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, जरा तो बस जरा दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है, तो इसे अकेले मत रहने दीजिएगा। आप खुद समझदार हैं भाभी जान। अच्छा खुदा हाफिज।
1: कसाई की हमदर्दी बड़ी महंगी पड़ेगी अम्मी। बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, अरे अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो सबका निगहबान है। अम्मी है लेकिन हमारा तो अल्लाह भी नहीं। बेटा ऐसा नहीं बोलते, ये कुफ्र है बेटा। अम्मी अम्मी मुझे बचा लो। अम्मी मैं कहती हूँ इसी कसाई ने मेरे अब्बा का कत्ल किया है, इसी जालिम ने तुम्हारा सुहाग उजाड़ा है। अरे बेटा ऐसा नहीं कहते बेटा।
2: जब मुझे सच बोलने से डर नहीं लगता, अम्मी तुम सच सुनने से क्यों डरती हो?
3: अरे नसरीन, नसरीन तुमने तो वादा किया था ना?
1: हाँ, वादा किया था कि मैं रोऊंगी नहीं।
2: रो कह रही हूँ मैं तो अम्मी को खबरदार कर रही हूँ।
3: अच्छा किससे खबरदार कर रही हूँ?
2: जो शख्स अम्मी के सुहाग को खा गया अब अम्मी की बेटी पर निगाह रखता है।
1: अब इसे कौन समझाए बेटा, किसके अब्बा बीमार थे?
2: लेकिन वो बीमार क्यों हुए?
3: देखो देखो नसरीन, हम सब जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं।
2: जमाल जमाल, मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकती, मेरी आंखों में खून उतर आता है।
3: लेकिन आपकी बात कौन मानेगा? आप क्या कर सकती हैं?
2: मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप कसाई की छुरी के नीचे गर्दन रख दूं।
3: तो क्या करेंगी आप?
2: फड़फड़ा तो सकती हूँ, हाथ पांव मारना तो मेरा हक है।
1: जमाल बेटे, शराफत की बातों से साफ जाहिर है कि वो अपने बेटे का निकाह नसरीन से करना चाहता है।
2: शराफत चाचा को मुझसे कोई लगाव नहीं है, वो जो मेरे नाम एक दो हवेलियां है ना और कुछ जमीन है ना।
1: मेरी बच्ची, अपने जीते जीते उन्होंने हाना की, शराफत भाई ने लाख सोर डाला, अब क्या होगा?
3: अम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो, यह जंगल का कानून नहीं चलता, शराफत अंकल अपनी मनमानी नहीं कर सकते।
2: जमाल तुम क्या कर लोगे, तुम होते कौन हो?
1: ओ जमाल, वो औकाब की सूरत मुझ पर निगाहें जमाए बैठा है, कभी भी झपट कर अपने खूंखार पंजे में उड़ाकर मुझे भगा ले जाएगा।
3: नसरीन इस तरह क्यों सोचती हैं आप? वक्त हमारा दुश्मन नहीं हो सकता।
2: बेटा बेटा कुछ नहीं हो सकता। अम्मी अम्मी चलो हम यहाँ से दूर कहीं भाग जाएं।
1: कहाँ कहाँ चले मेरे बच्चे,
2: जहाँ शराफत चचा ना सके।
3: ऐसी कोई जगह नहीं नसरीन। हाँ अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो नसरीन को चंद रोज के लिए गांव ले जाऊं, अब्बा भी कह रहे थे।
1: लेकिन तुम्हारे शराफत अंकल?
3: अरे अम्मी आप उनकी फिक्र ना करें, शराफत अंकल मेरे अब्बा का कहा नहीं टाल सकेंगे।

0: हाँ हाँ हाँ बदला बदला बदला।
1: अकरम देखो तुम क्या जानो इस आग को। इस आग में इंसान हमेशा जलता रहता है, कभी खाकस्तर नहीं होता, बस हमातन शोले की तरह भड़कता रहता है। अब मेरी भी यही हालत है।
2: अब्बा अब कौन सी तिशनेगी बाकी है? अब्बा क्यों आप ये भयानक खेल खेलना चाहते हैं? देखिए अब्बा, जिनके साथ

0: ये क्या नसरीन, कब तक इस तरह गुमसुम बैठी रहोगी?
1: मुझे डर लगता है गजाला।
0: कैसा डर?
1: बात करते हुए भी डर लगता है।
0: लेकिन किससे?
1: जिसने मेरे अब्बा का खून किया है।
0: नसरीन,
1: मेरी अब कोई नहीं सुनता। कोतवाल अंकल भी मुझे पागल कहते हैं।
0: खुदा न करे। नसरीन, तुम हिम्मत रखो, जमाल भाई मेरे अब्बा के पास आए थे।
1: जमाल भी क्या करेंगे।
0: अच्छा अब छोड़ो ये सब। ओहो, मैं भी कैसी बुद्धू, मैं कहती हूँ बस तू चल चला।
1: लेकिन कहाँ?
0: बस अब तू पूछ नहीं, अगर तेरा दिल ना बहला तो मेरा जिम्मा, तू ही मेरे सर की कसम।
1: नहीं गजाला, मैं नहीं चलूंगी।
0: अच्छा चल, तुम्हें जमाल की कसम।
1: मेरा जी ठीक नहीं है गजाला।
0: इसी का तो इलाज करना है। बस अब जल्दी से उठ, उठ और चल, अब चल ना।
1: तुम मानेगी थोड़ी
0: भाई, जमाल मियां की कसम जो दी है।
1: बाबा
2: नहीं गजाला, नसरीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी।
0: क्यों चाचा जान?
2: नसरीन अब कहीं भी नहीं जाएगी।
1: अब क्या हुआ? अरे बच्ची मुश्किल से मानी थी।
2: बेटा गजाला तुम जाओ, जाओ
0: जी
2: जाओ।
1: लेकिन मैं भी तो सुनू।
2: देखो भाभी जान, रहमत भाई की मौत के बाद इस घर की तमाम तर जिम्मेदारियां मेरी हैं। इस घर की इज्जत मेरी इज्जत।

0: चाची जान, चाची जान, चाची जान।
1: क्या बात है गजाला? अरे कहाँ से भागी आ रही है बेटा?
0: बड़ी बुरी खबर है, नसरीन कहाँ है? नसरीन!
1: अरे अंदर है बेटा, तुम कुछ कहो तो क्या हो गया?
0: चाची जान, जमाल भाई का कत्ल हो गया।
1: तेरे मुंह में खाक! तू क्या कह रही है?
0: मैं झूठ बोलू तो खड़े खड़े ये जमीन फट जाए।
1: अरे बेटा, बेटा तुझे कैसे पता चला?
0: कोतवाल चाचा से, वो इधर ही आ रहे हैं।
1: अरे मेरे बच्चे,
0: नसरी, जमाल भाई, हमारे जमाल भाई नहीं रहे।
1: मैं तो जानती थी, मुझे पता था ऐसे ही होना था। हाँ, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था।
2: भाभी जान, आप पर्दे भी हो जाइए, मैं अंदर आना चाहता हूँ।
1: अरे भाई साहब, ये गजाला सच कह रही है क्या?
2: हाँ भाभी जान, ये मनोज खबर मुझे अभी अभी मिली है।
3: आप तो मुझे दीवानी कहते थे ना? हाँ, आप कहिए, कहिए ना।
1: मैंने कहती थी ये तो होना ही था।
3: अब मेरी बारी आएगी।
1: फिर अम्मी की, कोतवाल अंकल,
3: कोई नहीं बचेगा,
1: सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे।
4: अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अरे कोतवाल भाई, क्या हो गया है? जमाल बेचारे के तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी भाई।
3: दुश्मनी थी, मैं जानती हूँ जमाल की दुश्मनी किससे थी
4: बेटी,
3: और ये उसी का किया है।
4: बेटी मैं जानता हूँ, अरे मैं जानता हूँ, तुम पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन नसीम बेटे, तुम तो समझदार हो। अरे बेटा गसाला, नसरीन को अंदर ले जाओ बेटा। अरे भाभी जान, आप भी संभालिए, संभालिए नसरीन को।
0: अम्मी अब रास्ता साफ हो गया है।
2: कोतवाल भाई, कातिल का पता जरूर लगना चाहिए। ये लाकानूनियत तो हम जैसे मुहज्जब शहरियों के लिए लानत है भाई।
5: समझ नहीं आता शराफत भाई, इस कत्ल के पीछे कातिल का मकसद क्या हो सकता है?
2: आप कहिए तो मैं इंस्पेक्टर जनरल को फोन कर दूं। देखो भाई, कातिल को तो सजा मिलनी ही चाहिए।
5: स्पेशल फोर्स तो भेज दी गई है, बस मुझे भी ऊपर से हुक्म का इंतजार है।
2: किसी माहिर खोजी को बुलवा लीजिए अकबर भाई, वो तो कोई ना कोई सुराग जरूर ढूंढ निकालेगा।
5: अजीब और गरीब मिस्ट्री है ये कत्ल भी।

0: कहो जाने गजाला कैसी हो?
1: आओ गजाला, तुम कैसी हो?
0: ये गुमसुम क्यों बैठी हो? कहो, रात कैसे मार्के की जंग रही?
1: गजाला, जो सोचा था वो सब कुछ नहीं हुआ।
0: क्या मतलब?
1: मैंने सोचा था अपने तहफ्फुज़ के लिए न जाने क्या कुछ करना पड़ेगा। खुदा मालूम अपना तहफ्फुज़ हो भी सकेगा या नहीं। निहत्थे सिपाही की मानिंद चारों शाने चित गिरना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मुकाबला किसी जाबिर से नहीं था।
0: मेरी समझ में तुम्हारी ये शायरी नहीं आ रही।
1: गजाला, गजाला, यहाँ मैं अनगिनत उकाबों के बीच एक बेबस फाख्ता हूँ। गजाला, गजाला, मैं जमाल की अमानत।
0: क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली बैठी हो?
1: ये जिंदगी अब जिंदगी कहाँ है? बस चलती फिरती लाश है।
0: लेकिन
1: नसीनी लाश ढो रही हूँ बस।
0: ये घर, यहाँ के लोग।
1: गजाला, ये घर, यहाँ के लोग सब मेरे दुश्मन हैं। मैं काश मैं इस काबिल होती।
0: लेकिन मेरी जान, इसमें अक्रम भाई का क्या कसूर है?
1: वो तो तुम्हारे अक्रम भाई का सबसे बड़ा कसूर ये है कि वो शराफत अली का बेटा है, और शराफत अली ने जमाल को मरवाकर तुम्हारे अक्रम भाई को उसकी जगह बिठाने की कोशिश की है।
0: नसरीन,
1: गजाला, गजाला, मैं बड़ी बदबख्त हूँ। मेरा नसीब भी किसी के नसीब सा ना हो।
0: इसी मत को
1: गजाला, दुआ करो मेरे लिए, दुआ करो ये आग भड़के और भड़के।

0: अरे अरे अक्रम बेटा तुम, अरे जी, इस कदर जल्दी घर लौट आए भाई?
1: जी दुकान बंद कराकर सीधा घर आ रहा हूँ।
0: क्यों भाई क्यों, वो तुम्हारे दोस्त वगैरह क्या हुए?
1: अब बस अब बहुत कर लिया, अब कोई हसरत बाकी नहीं।
0: अरे बेटा अब्बा की खुशी के लिए तो तुम्हें सब कुछ।
1: आपकी खुशी? अच्छा क्या है आपकी खुशी?
0: अब देखो बेटा, तुम वाकिफ हो बखूबी मेरी खुशी से।
1: हाँ मैं बखूबी वाकिफ हूँ। एक बाप अपने बेटे की अजदवाजी जिंदगी बर्बाद करने की आरजू रखता है।
0: नहीं नहीं बेटा, क्या बात कर रहे हो तुम, क्या बात कर रहे हो? मैं तो रहमत की बेटी को घर से निकालकर उसके माथे पर तलाक की लानत लिखकर तुम्हारा फिर से घर बसाना चाहता हूँ।
1: नहीं अब्बा नहीं, अकरम अब अपनी बुरी आदतों का गुलाम नहीं रहा। देखिए अब आपकी एक भी नहीं चलेगी।
0: अरे तुम होश में तो हो?
1: हाँ मैं होश में हूं। देखिए नसरीन से मेरी शादी तो एक मजबूरी थी, लेकिन अब उसकी बेहतरी, उसकी हिफाजत मेरे फराइज में शामिल है और इन फराइज का मैं एहतराम करता।
0: देखो देखो देखो देखो, तुम्हारी औकात क्या है, क्या औकात है तुम्हारी?
1: नहीं आपका एहताब मुझे डरा नहीं सकता।
0: नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
1: अब कुछ तो सोचो, नसरीन ने आपके बेटे को एक नई जिंदगी बख्शी है, आपको तो नसरीन का शुक्रगुजार होना चाहिए।
0: अकरम लगता है तुम मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं हो।
1: आप अपनी तबाही का खुद ही बायस बन रही हैं। देखिए अब्बा हुजूर, अब नसरीन आपके घर की इज्जत है, आपके खानदान का नाम लेवा नसरीन का ही बच्चा होगा। क्या आप चाहते हैं कि इस खानदान का कोई नाम लेवा ना हो?

0: अभी आप सुन रहे थे जनाब योगराज का तहरीर करदा ड्रामा बदला का पहला हिस्सा। तरतीब पेशकश सरफराज अहमद की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशात का सिलसिला जारी है। दिन के 12 बजे चाहते हैं अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: अब आप हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रूमानिया के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। नायब सदर जमहूरियत CP राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में जंजिबार के सदर डॉक्टर हुसैन अली मीमनी के साथ मुजाकरात करेंगे। अमरीकी फौज ने उर्दून में ईरानी हमलों के जवाब में ताजा फजाई हमले किए हैं। बैडमिंटन में ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली PV सिंधु ऐसी पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने जापान ओपन का खिताब जीता है। और फीफा आलमी कप 2026 में तीसरे मुकाम के सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर कांस्य का तमगा जीता है, जबकि फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमेरिका के न्यूजर्सी स्टेडियम में होगा। खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज 3 मुल्कों मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रूमानिया के सरकारी दौरे पर रवाना हुई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरियत कल मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वो मोल्दोवा की अपनी हमनसब माया सांदू के साथ मुलाकात करेंगी और बाद में उनके साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी और मोल्दोवा भारत पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप के साथ बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मुर्मू एक कारोबारी फोरम से भी खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के मेंबरों के साथ गुफ्तगु करेंगी। मोल्दोवा के लिए किसी भारतीय सदर जमहूरिया का यह पहला दौरा है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में जंजिबार के सदर डॉक्टर हुसैन अली मियावनी के साथ मुजाकरात करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा भारत और जंजिबार ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और मुस्तकबिल में ताउन के नए मौके का पता लगाएंगे। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर भी आज दौरे पर आए मेहमान से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि आलमी जुनूब में भारत और तंजानिया के दरमियान बहुत से शोबों में करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों का एक दूसरे से करीबी ताउन है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस दौरे से आपसी मफाद के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए एक नई जहत फराहम होने का इम्कान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अजीम इनकलाबी रहनुमा और मुजाहिद आजादी मंगल पांडे को उनकी यौम पैदाइश पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि मंगल पांडे ने मादर वतन की इज्जत और अजमत को बरकरार रखने के लिए अपनी जान कुर्बान की। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी जुरत और अजीम कुर्बानी पर आज भी हर भारतीय फख्र महसूस करता है। जनाब मोदी ने कहा कि मंगल पांडे का हुब्बुल वतनी और जुरतमंदी का जज्बा मुल्क की नस्लों को तहरीक देता रहेगा। अमरीकी फौज ने उर्दून में एक हमले के लिए पासदाना ने इनकलाब के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर से फजाई हमले किए हैं। पासदाना ने इनकलाब के हमले में 2 अमरीकी फौजी अहलकार हलाक, 1 लापता और 4 फौजी जख्मी हालत में आज इलाज के लिए अस्पताल दाखिल किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कम करने के लिए किए गए ताकि आबनाए हुरमुज के रास्ते तेल से लदे जहाजों की आमदरफ्त को रोका जा सके। जंग से पहले इस आबी गुजरगाह से दुनिया के लिए 20% तेल की सप्लाई होती थी। ये ताजा हमले उस वक्त शुरू किए गए जब अमरीकी फौज ने ईरान की तरफ से जुमे को उर्दून में एक अड्डे पर एक ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद अमरीकी फौजियों के हलाक होने के बारे में इत्तला दी। अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर दुनिया भर में अमरीकी शहरियों के लिए सफर के सिलसिले में एहतियात बरतने की गरज से एडवाइजरी जारी की है। उसने खित्ते में अमरीका और ईरान की तरफ से जारी फौजी कार्रवाईयों के पेश नजर बढ़ती हुई कशीदगी के साथ सिक्योरिटी की पेचीदा सूरत हाल के लिए खबरदार किया। एक बयान में स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि परवाजों की मनसूखी और वक्तन फोक्तन फजाई हदूद को बंद करने से सफर में खलल पड़ सकता है, जबकि इलाकाई कशीदगी की वजह से शहरियों के लिए परवाजें मुतासिर हो रही हैं।

ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज सभी सियासी जमातों की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को खुशअसलूबी से चलाने को यकीनी बनाने के लिए सियासी पार्टियों का ताउन चाहेगी। मानसून इजलास कल से शुरू होगा जो अगले माह की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान कई अहम बिलों पर बहस की जाएगी और उन्हें मंजूर किया जाएगा। पनामा के वजीर खारजा जावेद एडवर्डो मार्टिनेस भारत के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। वो कल वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर और कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल के साथ बातचीत करेंगे। पनामा के वजीर खारजा बुध के रोज नई दिल्ली में बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि भारत और पनामा के दरमियान करीबी शराकतदारी है जो मुश्तरक अकदार, आपसी मफादात और खैर सगाली पर मबनी है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से आज खराब मौसम की पेशगोई के पेश नजर एहतियात के तौर पर बंद रहेगी। ये फैसला भारतीय महकमे मौसमियात की जानिब से अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की पेशगोई की वजह से मुसाफिरों की सलामती और तहफ्फुज को तवज्जो में रखते हुए किया गया है। हिमाचल प्रदेश में जुनूब मगरबी मानसून के सरगम रहने के साथ ही रियासत के बेशतर हिस्सों में कल रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। शिमला के मौसमियात के मरकज ने मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश के मद्देनजर 21 जुलाई तक ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले और पीर पंजाल के वसीतर खित्ते में लगातार शदीद बारिश और बादल फटने से अचानक सैलाब आने, पानी जमा होने और मिट्टी के तोदे खिसकने की इत्तलात हैं। राजौरी शहर के बेला इलाके में धाराहाली दरिया में भारी तबाही हुई है जिसके सबब बस स्टैंड को शदीद नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि सैलाब की वजह से काफी नुकसान हुआ है। नीस दर्जनों गाड़ियों और बहुत से घरों को भी नुकसान हुआ है। बहुत से दरिया और मौसमी नहरें मामूल की सतह से ऊपर बह रही हैं जिसके सबब मकामी हुकाम ने हाई अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश जारी रहने का इंतबाह दिया है। वेनेजुएला में पिछले माह आए 2 जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,000 से ज्यादा हो गई है। बैन अलाकवामी मालियाती फंड IMF ने बहाली और तामीर नौ की कोशिशों में मदद देने के लिए 346 मिलियन अमरीकी डॉलर की हंगामी माली इमदाद का ऐलान किया है। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आज पहली बार जापान ओपन का खिताब जीत लिया है। वो ये पुरवकार टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 3 बार की आलमी चैंपियन और पसंदीदा मकामी खिलाड़ी आकाने यामागुची को सीधे मुकाबलों में 21-17 से हरा दिया। पीवी सिंधु ऐसी पहली भारतीय खातून बन गई हैं जो सेमीफाइनल में छैन यूवी को हराने के बाद जापान ओपन के फाइनल में पहुंची हैं और आज उन्होंने अपने कैरियर का सबसे बड़ा खिताब भी जीत लिया। फीफा आलमी कप में कल रात मियामी स्टेडियम में तीसरी पोजीशन के लिए खेले गए एक सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 4 के मुकाबले 6 गोल से हराने के बाद कांसे का तमगा जीत लिया है। बुकायो साका इंग्लैंड के ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने आलमी कप के नॉकआउट मैच में हैट्रिक बनाई है। इससे पहले 1966 के फाइनल में सर गियोफ हर्स्ट ने यह कारनामा अंजाम दिया था। इसी तरह 1982 में आलमी कप का सबसे ज्यादा सनसनीखेज मैच हंगरी और एल सल्वाडोर के दरमियान हुआ था जिसमें हंगरी ने एल सल्वाडोर को 10-1 से हरा दिया था। दूसरी जानिब आज न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आलमी कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 12:30 बजे शुरू होगा। कोलकाता जैसे भारत की फुटबॉल दारुल हुकूमत कहा जाता है, वर्ल्ड कप के फाइनल में शायकीन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान होने वाले मैच के लिए बेहद पुरजोश हैं। भारत और इंग्लैंड के दरमियान एक रोजा बैन अलाकवामी मैचों की सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। कार्डिफ में दूसरे एक रोजा बैन अलाकवामी मैच के दौरान जख्मी होने की वजह से ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर टीम में शामिल नहीं किए गए हैं। उनकी अदम मौजूदगी में सेलेक्टर्स ने आज के मुकाबले के लिए ऑलराउंडर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया है। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मालदोवा, शुमाली मकदूनिया और रूमानिया के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में जंजीबार के सदर

0: डॉक्टर हुसैन अली के साथ मुजाकरात करेंगे। अमरीकी फौज ने उर्दुन में ईरानी हमलों के जवाब में ताजा फजाई हमले किए हैं। बैडमिंटन में ओलंपिक में दो बार तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु ऐसी पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने जापान ओपन का खिताब जीता है और फीफा आलमी कप 2026 में तीसरे मुकाम के सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर कांस्य का तमगा जीता है, जबकि फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में होगा। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे नशे जारी है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। मिले सुर मेरा तुम्हारा, इस प्रोग्राम में सुनिए चंद फिल्मी तो गाने। आगाज बॉर्डर फिल्म के नगमे से, आवाज़ें सोनू निगम और अलका याग्निक की, मौसीकी अनु मलिक की।

0: मैं सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। सामने ये प्रोग्राम अभी जारी है, आइए पहले सुनते हैं तारीख सास प्रोग्राम। मौजू है अली अब्बास हुसैनी।
1: अली अब्बास हुसैनी के बारे में फिराक गोरखपुरी ने कहा था, उनके अफसानों में जिंदगी कूट कूट कर भरी रहती है, न कि फिक्रियात और नजरियात। और यही खसूसियात दुनिया के बड़े बड़े अफसाना निगारों की यहां मिलती है। माहौसाल के एतबार से आलमी तनाजुर में गो के उर्दू अफसाना अभी कमसिन है, लेकिन उर्दू जबान इस एतबार से सरबलंद है कि इसमें ऐसे अफसाना निगार भी गुजरे हैं जिनको लेकर उर्दू मोपसा और चखौफ की तख्लीकात से आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। ऐसे ही अफसाना निगारों में एक नाम अली अब्बास हुसैनी का है। अली अब्बास हुसैनी की तारीफ यही है कि वो अली अब्बास हुसैनी थे। उन्होंने अपनी निगारिशात की तख्लीक किसी मिशन को लेकर या किसी नजरिए से मुतासिर होकर नहीं की और न ही नाकिदीन फन की खुशनूदी के हुसूल के लिए लिखा। उन्होंने जब भी लिखा अपने जज्बे तख्लीक की आसूदगी के लिए लिखा, अपने पढ़ने वालों के लिए लिखा। न सताइश की तमन्ना थी न सिले की परवाह। इसके बावजूद उर्दू अफसाने में जो रुतबा जो दर्जा व मकाम अली अब्बास हुसैनी को हासिल हुआ, उनके बाद उर्दू का कोई और अफसाना निगार उसे छू नहीं पाया। उनका फन उर्दू अदब में ऐसे विरसे की हैसियत रखता है जिस पर अदब परस्तों की आइंदा कई नस्लें फख्र करती रहेंगी। उन्होंने कारीन की फिक्र को नई जहती अता की, अदब को नई वसतों से रूशनास कराया और नई मंजिलों के निशान किए। जबान की दिलकशी अफजों की इजहार व असलूब के नए पैराए सामने रखे। उनके नावल और अफसाने हमें जिस दुनिया की सैर कराते हैं वो हमारे लिए अजनबी नहीं होती। इसमें फाकाकश भी हैं, दौलतमंद भी, जालिम भी हैं, मजलूम भी, काश्तकार भी हैं, जमींदार भी। गरज हर वो किरदार जो हमें अपनी जीती जागती दुनिया में मिलता है, हुसैनी की तहरीरों में अपने जाहिर और बातिन दोनों के साथ मौजूद रहता है। अली अब्बास हुसैनी ने अपनी सलाहियतों और ख्यालात के इजहार के लिए महज अफसाने को ही वसीला नहीं बनाया, बल्कि उनकी नसरी अदब का दायरा बेहद वसी है। हर सिंफ में तबा आजमाई की, अफसाना, ड्रामा, नावल, तस्करा और तारीख, हत्ता के स्कूली बच्चों का निसाब भी तरतीब दिया। मुतरजिम के तौर पर भी वो एक मुनफरिद मकाम के मालिक हैं। उनका तर्ज तहरीर दिलनशी है, दिलावेज है और कारी के उन जहनी कोशों को छू लेता है जहां तक हर एक अदीब की रसाई मुमकिन नहीं। अली अब्बास हुसैनी की शख्सियत और फन के नमू में उनके घरेलू माहौल ने बड़ा किरदार अदा किया। उनका घराना जमींदार घराना था, इसके बावजूद न तो वहां काश्तकारों पर जुल्म सितम का दौर दौरा था और न ही राजा और प्रजा वाला मामला। उनके वालिद सख्त मजहबी कस्म के आदमी होने के बावजूद एक वसीउ नजर और इल्म दोस्त शख्स थे। उर्दू के सैकड़ों शहपारे घर की लाइब्रेरी में मौजूद थे। इब्तदाई उम्र में हुसैनी को जो इल्मी और अदबी माहौल मिला उसने आगे चलकर उनके किरदार और फन की साख्त में पुख्ता बुनियाद का रोल अदा किया। अली अब्बास हुसैनी का मुताला उर्दू अदब तक महदूद नहीं था, दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े अदीबों का उन्होंने मुताला किया और अपने कल्ब और जहन को वसत बख्शी। अपने बारे में उन्होंने एक बार लिखा था, लोग पार्कों में जाते हैं, सिनेमाघरों में जाते हैं, मेले ठेलों में शरीक होते हैं, कॉफी हाउस और क्लब घरों में दिल बहलाते हैं, मैं पलंग पर लेटा लेटा दुनिया जहान की सैर करता हूं, मैं किताबों की वसातत और तखय्युल की मदद से जंगलों, दरियाओं, पहाड़ियों, वादियों, सहराओं, रेगिस्तानों, कोहिस्तानों, समंदरों को पार करता हूं। हुसैनी ने 200 से जायद मतबूए अफसाने, 4 नावल, 2 ड्रामे और मुतादिद दीगर तसानीफ विरसे में छोड़ी जो कि उर्दू अदब में बेशबहा खजाने की हैसियत रखती है और इन्हें जिंदा और जावेद बनाए रखने के लिए काफी से ज्यादा हैं। उनके करीबी साथी अली जवाद जैदी ने हुसैनी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लिखा था, हुसैनी साहब ने मरते दम तक कलम हाथ से नहीं छोड़ा, कलम के साथ मरने वाला उस मुजाहिद से कम नहीं

0: जो मरते दम तक कौमी परचम को सरनिगोह नहीं होने देता। हुसैनी मरे नहीं बल्कि दास्तान कहते कहते सो गए हैं और मोहब्बत करने वाले कदमों की चाप सुनकर जाग जाया करेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे तारीख साज प्रोग्राम, मौजूद था अली अब्बास हुसैनी, तहरीर जनाब प्रेमपाल अशकी थी, रावी थी मरियम कासमी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, प्रोग्राम जारी है मिले सुर मेरा तुम्हारा।

श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में सिलसिले फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे। मौसीकी हिमेश रेशम की थी। और इस प्रोग्राम के आखिर में सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल का गाया हुआ ये नगमा। फिल्म है तुम सा नहीं देखा। नगमा निगार समीर, मौसीकी नदीम श्रवण की।

0: स्ट्रक्चरली बहुत फ्लेवर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ये एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसको हैंडल करने के लिए किस तरह के सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, ये सारी चीजें ही हमें दर्शाता है। और इसी चीज से एक बिजनेस पर्सन को पता चलता है कि भाई इस स्टेट में काम करना मुनासिब है या इसमें मुनासिब नहीं है। जी,
1: अनुकूलता की बात जहां आती है वहां एक तरह से अगर ये कहें तो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के बीच में, स्टेट्स के बीच में एक प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। हालांकि ये बहुत हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये सूचकांक में आगे बढ़ने के लिए या बिल्कुल ऊपर जाने के लिए एक रेस टू द बॉटम जिसे कहें, रेस टू द बॉटम का मतलब यह है कि क्या स्टेट्स ऊपर पहुंचने के लिए सूचकांक में कुछ ऐसे अनसस्टेनेबल फिस्कल इन्वेस्टमेंट या इंसेंटिव नहीं देंगे जो कि एट द कॉस्ट ऑफ लेबर या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होगा? आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कुछ कहीं पर ऐसी कुछ गुंजाइश बन सकती है जहां पर कि राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए कुछ ऐसे बहुत ही अनसस्टेनेबल फिस्कल इंसेंटिव दे देंगे जिसमें कि एट द कॉस्ट ऑफ लेबर या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होगा?
0: हम अगर देखें तो राज्यों में जो टैक्स की जो स्टेट लेवल टैक्सेस है, मैं म्यूनिसिपल लेवल जो लेवीज है उसको मैं इससे अलग रख रहा हूँ, स्टेट लेवल टैक्सेस है उसको करीब करीब इक्वलाइज कर दिया गया है जीएसटी के चलते। अभी किसी भी राज्य के लिए जीएसटी के अलावा कोई दूसरा सपोर्ट मैकेनिज्म देना लगभग असंभव है। और चूंकि जीएसटी इज अ नेशनल लेवल, तो जो भी स्टेट जो भी करेंगे वो जीएसटी के तहत ही आएंगे, तो एक तो वो चीज है। दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह, ये सारे टैक्सेस भी राज्य नहीं केंद्र सरकार तय करते हैं। कस्टम्स ड्यूटी भी राज्य सरकार नहीं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। कुछ कम्युनिटीज ऐसे हैं जिनके कस्टम्स ड्यूटी पर राज्य का बनता है, तो उस पर जरूर कुछ कुछ कर सकते हैं। बट लेकिन स्मार्ट स्टेट्स वही है जो टैक्सेस को इस तरह से चलाते हैं ताकि अपना बजट भी सही रहे और आगे जिसे कहते हैं रेस टू द बॉटम का गुंजाइश ना आए। तो ये तो रही फिस्कल चीजों की बातें अगर हम इसको छोड़े। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि बाकी और क्या चीजें हो सकता है, किसी भी इंटरप्राइज को, किसी भी कंपनी को, किसी भी छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो किसी भी इंटरप्राइज को चार चीजों की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एक रिस्क कवर। अगर हम इन चारों चीजों को अगर हम एक एक करके देखें, लैंड में इनफैक्ट इसमें तो प्रतिस्पर्धा उल्टा होना चाहिए। ज्यादातर राज्यों में अभी भी लैंड मामले में बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस है। किसी भी राज्य में आप भारत में पहुंच जाइए, जमीन खरीदना किसी भी इंडस्ट्री के लिए और खासकर ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा बाधक होता है। बड़ी इंडस्ट्रीज तो अपना लॉयर्स लगा के, ये लगा के वगैरह करके निकल जाएंगे, लेकिन छोटे जो उद्योग है, खुद जो उद्योग है, जो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि छोटे उद्योग जो होते हैं उनके लिए शहर से दूर बैठ के कोई काम करना असंभव है। उनको शहर के पास ही नहीं, शहर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास वो उनका वो टर्नओवर में उनके पास कैपेसिटी नहीं होगा कि वो अपना चीज लेकर शहर तक जाएंगे,
1: बिल्कुल
0: तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी भी शहर में, राज्य में अगर कितना बारीकी से वो इन चीजों को देखे हैं उस पर काफी संदेह है। राज्य लैंड इज समथिंग जिस पर लोग स्टेट्स ने अटेंशन नहीं दिया है और बहुत सारे वजह से इसको इस पर काम करना बहुत जरूरी है। सो इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में एक ये चीज उभर के सामने आता है कि लैंड इश्यूज में स्टेट्स ने कितना काम किए हैं, और आप देखेंगे कि जिस स्टेट्स ने काम किए हैं, थोड़ा बहुत भी अगर काम किए हैं तो वहां पे स्मॉल इंडस्ट्रीज पहुंच जाते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज की सक्सेस या फेलियर में लैंड का अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरा होता है लेबर। हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि औसतन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे देश में हर टेक्सटाइल यूनिट में एवरेज एम्प्लॉयमेंट इज 1.5, यानी कि सिर्फ आदमी खुद और किसी से पार्ट टाइम हेल्प ले रहा है, बस यही है इंडस्ट्री कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट का चित्र। और चित्र इसलिए है क्योंकि लेबर को एम्प्लॉय करना, लेबर को किसी काम में रखना हमारे लिए इतना दुष्कर बना हुआ है। और इसीलिए ये भारत सरकार की अभी का जो पहल लेबर कोड्स, जो चार लेबर कोड्स आए हैं, वो एक बहुत ही बड़ा सुदूर काम है कि उसने काफी हद तक ये लेबर लॉस को रिलैक्स किए हैं। अभी भी देखिए, जैसे हमारे देश में कोई, जैसे टेक्सटाइल की हम बात कर रहे थे या दूसरे इस तरह के यूनिट्स में, लोगों की जरूरत होती है, मतलब अगर यूनिट अगर सच में अगर कामकाज ही का हो तो करीब 10 से 15,000 लोगों की जरूरत होती है एक यूनिट में। 10 से 15,000 से नीचे कोई यूनिट चल ही नहीं सकता है अगर वो सच में अगर एक्सपोर्ट मार्केट में चलेंगे। आप सोचिए 10 से

0: 15,000 लोग कितने ही एम्प्लॉयमेंट, कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र खुल जाता है, लेकिन अभी भी भारत सरकार के उद्योग के बावजूद रूल ये है कि सिर्फ कि जिस यूनिट में 300 लोग है, यानी कि रिलैक्सेशन दिया गया है कि अप टू 300 पीपल का हायर तक रूल्स रिलैक्स किए गए हैं, लेकिन 300 से ऊपर जाते ही रूल्स काफी कठिन है। अब भारत सरकार की तरफ से प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार सिर्फ यहीं तक कर सकते थे, लेकिन इसके आगे कि 300 तक इंडिया गवर्नमेंट ने कर दिया है, केंद्र सरकार ने कर दिया है, तो आगे चल के जो रिलैक्सेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है।
1: बिल्कुल
0: अब हम बात कर रहे हैं 10,000 या 15,000 लोग जैसे लोगों के एम्प्लॉयमेंट का, वहां पे 300 लोग आए या ना आए उसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये सारे जो रिलैक्सेशन है ये बहुत बड़ी जरूरी है, तो एक वो वाली चीज है। तो ये रेस टू द बॉटम नहीं, ये तो रेस टू द पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, अगर स्टेट्स अगर इन चीजों को समझे। एक हुआ लैंड, दूसरा हुआ लेबर, तीसरा है कैपिटल। कैपिटल के मामले में मैं समझता हूं कि स्टेट्स को एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कैपिटल ज्यादातर आते हैं बैंक से या बड़े बड़े कंपनी से, एनबीएफसी से, जिन पर राज्यों का बहुत ज्यादा हाथ नहीं होता है। हालांकि वहां भी कुछ कुछ काम कर सकते हैं, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, वो जरूर दे सकते हैं। दूसरे जैसे फ्रीबीज वगैरह आपने टिप्पणी किया और वो बात सही है कि वो फ्रीबीज वगैरह देने के बजाय अगर इंटरेस्ट सबवेंशन दे तो बहुत काम हो सकता है। एक पॉजिटिव चीज जो स्टेट्स ने किए हैं, कुछ कुछ स्टेट्स ने किए हैं, वो है कि वुमेन ट्रेवल बहुत सारी जगह पे उसको फ्लेक्सिबल कर दिए हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस में। अब जैसे बिहार में अभी शुरू हो गया है पिंक बसेस, बाकी बहुत सारे स्टेट्स में भी ये कदम लाया जा रहा है, दिल्ली में भी शुरू हुआ है कि वुमेन के लिए एक फ्री ट्रैवल का एक प्रोग्राम चल पड़ा है बहुत सारे स्टेट्स में, और वो बहुत अच्छा चीज है कि वुमेन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो खर्चा है वो खर्चा कम हो जाए। लेकिन साथ में चीज है सिक्योरिटी, कि वुमेन जब शाम को ऑफिस घर से फैक्ट्री से आएंगे तो उस वक्त उनको सिक्योरिटी कहां तक मिलता है। अब हर वुमेन के पीछे तो एक पुलिस पर्सन नहीं खड़ा सकता है ना,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी का जो एनवायरमेंट है वो सिक्योरिटी का एनवायरमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, और ये तो केंद्र सरकार नहीं कर सकते ना, ये तो राज्य सरकार को करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सिक्योरिटी का एस्टेब्लिशमेंट पुलिस में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ताकि वुमेन एम्प्लॉय वर्कफोर्स काम में कर सके। ग्राउंड रियलिटी की आप जो बात कर रहे थे बहुत सही है कि ग्राउंड बहुत सारे स्टेट्स ने अपने इस मामले में बहुत अच्छे अच्छे कदम अपनाए हैं, और इस वजह से उस स्टेट्स में वुमेन एम्प्लॉयज का संख्या एकदम जिसे कहते हैं तेजी से आगे बढ़ा है। मैं एग्जाम्पल दू दो स्टेट्स का, गुजरात और तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट्स में वुमेन सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग किया गया है, इन दोनों स्टेट्स में वुमेन एम्प्लॉयमेंट और खासकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जहां पे वुमेन की जरूरत खास ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर से बोलिए या इवन सिंपल घड़ी मैन्युफैक्चरिंग, वॉच मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जरूरत होती है, तो वहां पे वो लोग कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव प्रोवाइडेड कंसिस्टेंट लेवल ऑफ वुमेन सिक्योरिटी। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंड डेवलप कैपिटल रिस्क वाली चीज हम बाद में बात कर सकते हैं, बट ये तीनों चीजों में ही अगर स्टेट्स अगर ध्यान दे तो बहुत कुछ अट्रैक्टिव सॉल्यूशन उनके सामने निकल के आएंगे।
1: शुभ, अगर हम बात करें ये कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स, तो नेचुरली ये होगा ही होगा इनटू टीयर्स लाइक टॉप परफॉर्मर्स। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो एस्पायरिंग स्टेट्स होंगे, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ऊपर के ब्रैकेट में होंगे, कुछ बीच में होंगे, कुछ नीचे होंगे। तो आपको क्या लगता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर ऐसा क्या करें जिससे कि जो एस्पायरिंग स्टेट्स हैं, जो नीचे हैं सूचकांक में, वो भी उसी जगह पर आकर के खड़े हो जाएं?
0: बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी जरूरी चीज जिसका हम पहले ही जिक्र कर रहे थे कि केंद्र सरकार कर रहे हैं, नीति आयोग खासकर इसमें बहुत काफी काफी काफी अच्छे काम किए हैं। नीति आयोग ने बहुत सारे स्टेट लेवल में क्या काम सफल हुआ है, किस स्टेट में कौन सा वाला काम सफल हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा लिस्ट ही नहीं, बार बार उस लिस्ट को आगे रिवाइज करते जा रहे हैं। तो वो केंद्र सरकार से एक बहुत बड़ा सक्षम कार्यक्रम है कि नीति आयोग का जो देखें डेटा एनालिसिस, केस स्टडीज, और काफी डिटेल्ड मात्रा में उन्होंने काम किया है इसमें। अभी उन्होंने म्यूनिसिपल गवर्नेंस के ऊपर भी रिपोर्ट्स निकाले हैं, इस तरह से बहुत सारी रिपोर्ट्स मिले। दूसरी बात यह है कि स्टेट्स जब काम कर रहे हैं, जो स्टेट्स पीछे हैं, बहुत सारे टाइम में स्टेट सोचते हैं कि हमें पैसा चाहिए। इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स का जारी करने का वजह यही है, ये बात सिर्फ कैश सपोर्ट की नहीं है, इनफैक्ट कैश सपोर्ट से ये काफी दूर है, ये है टू डू स्मार्ट पॉलिसीज, जैसे स्मार्ट पुलिसिंग या स्मार्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। ये कोई कैश वाली बात नहीं है, इट इज सिंपली अबाउट कि हम स्टेट्स अपना अपना जो कैपेसिटी है उसको काम में लगाएं।
1: आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी जानकारी दी, अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ,
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नीति आयोग का निवेश अनुकूलता सूचकांक और राज्यों में प्रतिस्पर्धा और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा।

0: में भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से आलमी खबरें सुनिए। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल नई दिल्ली में सरकार की जानिब से बुलाई गई सभी पार्टियों की मीटिंग जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज तीन मुल्कों मोलदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी और पीर पंजाल में अचानक सैलाब आने से तबाही हुई है। कटरा में 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अमरीकी फौज ने उर्दून में ईरान के हमलों में दो अमरीकी फौजियों के हलाकत के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर फजाई हमले किए हैं। बैडमिंटन में ओलंपिक में दो बार तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु जापान ओपन टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और फीफा आलमी कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा मुकाम हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल नई दिल्ली में सरकार की जानिब से बुलाई गई सभी पार्टियों की मीटिंग जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। यह मीटिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद अपोजिशन पार्टियों ने शुरू में मीटिंग से वॉकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूरी अपोजिशन की पार्टियों ने एहतजाज में मीटिंग से वॉकआउट किया। मोहतरमा महुआ मोइत्रा ने इल्जाम लगाया कि आज की मीटिंग में शिरकत करने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया कोई तस्लीमशुदा पार्लियामानी पार्टी नहीं है। अलबत्ता अपना एहतजाज जाहिर करने के बाद अपोजिशन के अरकान मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। इनमें कांग्रेस के जयराम रमेश, सीपीआईएम के लीडर जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज तीन मुल्कों मोलदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया कल मोलदोवा पहुंचेंगे, जहां वो मोलदोवा की अपनी हमनसब मावा संधू के साथ मुलाकात करेंगी और बाद में उनके साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोलदोवा के पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसु से भी मुलाकात करेंगी और मोलदोवा भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के साथ बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मुर्मू एक कारोबारी फोरम से भी खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के मेंबरों के साथ गुफ्तगू करेंगी। मोल्डोवा के लिए किसी भारतीय सदर जमहूरिया का यह पहला दौरा है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में जिंजबार के सदर डॉक्टर हुसैन अली के साथ मुजाकिरात करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली भारत के चार रोजा सरकारी दौरे पर हैं। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा भारत जिंजबार ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और मुस्तकबिल में ताउन के नए मौके का पता लगाएंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी आज दौरे पर आए मेहमान से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि आलमी जुनूब में भारत और तंजानिया के दरमियान बहुत से शोबों में करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों का एक दूसरे से करीबी ताउन है। पनामा के वजीर खारजा हेवियर इडुआर्डो मार्टिनेज भारत के पांच रोजा दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। वो कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल के साथ बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद राजौरी कस्बे में अचानक सैलाब आ गया। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने के तनाजुर में सैकड़ों लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। दरियाओं के किनारों में शगाफ पड़ गए हैं और दरियाओं का पानी किनारों से बाहर बहने की वजह से दर्जनों मोटर गाड़ियां या तो पानी में बह गई या जेर आब आ गई हैं। सरकारी और प्राइवेट अमलाक को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया और पुलिस की मुआवनत से बचाव और इमदादी टीमों ने मुतासरा कुंभों को बचाकर बाहर निकाला है। इन इलाकों में बेला कॉलोनी और अब्दुल्ला ब्रिज के नजदीक झुग्गी झोंपड़ी की बस्ती शामिल है। 50 से ज्यादा कुंभों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है क्योंकि सैलाब का पानी उनके घर में आ गया था। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, और वजीर आला।

उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की और राजौरी जिले में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। जनाब अमित शाह ने मुतासिर लोगों की सलामती और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से उन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। मौसमियात महकमे ने अगले चंद रोज के दौरान खित्ते में दूर दूर तक बारिश होने और गरज चमक के साथ तेज बौछार पड़ने की पेशगोई की है। दूसरी तरफ कटरा की सब डिवीजनल इंतजामिया ने बारिश के मौसम के दौरान तेजी के साथ कार्रवाई करने और बेहतर तालमेल के लिए दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। वहां के बाशिंदे कटरा मानसून कंट्रोल रूम से रुजू करके इमरजेंसी सूरत हाल की इत्तला दे सकते हैं या मदद हासिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कटरा और तिरकुटा हिल्स में खराब मौसम के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अब भी मुअत्तल है। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने बताया है कि नामुआफिक मौसम के तनाजुर में अकीदतमंदों की सलामती को यकीनी बनाने की खातिर एहतियाती इकदाम के तौर पर यात्रा आरजी तौर पर रोक दी गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी फौज ने उर्दुन में एक हमले के लिए पासदाराने इनकलाब के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर से फिजाई हमले किए हैं। पासदाराने इनकलाब के हमले में दो अमरीकी फौजी अहलकार हलाक, एक लापता और चार फौजी जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किए गए। अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर दुनिया भर में अमरीकी शहरियों के लिए सफर के सिलसिले में एहतियात बरतने की गरज से एडवाइजरी जारी की है। उसने खित्ते में अमरीका और ईरान की तरफ से जारी फौजी कार्रवाईयों के पेश नजर बढ़ती हुई कशीदगी के साथ सिक्योरिटी के पेचीदा सूरत हाल के लिए खबरदार किया है। भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक में दो बार तमगा जीतने वाले पीवी सिंधु ने जापान ओपन टूर्नामेंट में खातून सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। वो जापान में बड़ा टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। टोक्यो में खेले गए फाइनल में सिंधु ने आलमी नंबर 3 जापान की अकाने यामागुची को 21-17 और 21-17 से हरा दिया। इस तरह दो साल से ज्यादा अरसे के बाद पीवी सिंधु ने कोई टाइटल हासिल किया है। इससे कबल उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में टाइटल जीता था। 2019 में आलमी चैंपियनशिप जीतने के बाद से सिंधु का यह सबसे बड़ा टाइटल है। आज रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला यूरोप की मजबूत टीम स्पेन से होगा। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। कोलकाता, जिसे भारत की फुटबॉल दारुल हुकूमत कहा जाता है, वर्ल्ड कप के फाइनल में शायकीन और अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान होने वाले मैच के लिए बेहद पुरजोश हैं। आज रात कोलकाता जागता रहेगा और पूरे बंगाल में ऐसा ही होगा। फीफा वर्ल्ड कप भले ही हजारों मील दूर न्यू जर्सी में हो रहा हो, लेकिन इसका जोश रियासत के हर घर तक पहुंच गया है। फीफा आलमी कप में कल रात मियामी स्टेडियम में तीसरी पोजीशन के लिए खेले गए एक सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 4-6 से हराने के बाद कांसे का तमगा जीत लिया है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और फैसला कुन एक रोजा मैच आज लंदन में लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर नहीं खेल सकेंगे। कार्डिफ में दूसरे एक रोजा मैच के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। खास खबरें एक बार फिर। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल नई दिल्ली में सरकार की जानिब से बुलाई गई सभी पार्टियों की मीटिंग जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 3 मुल्कों मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी और पीर पंजाल में अचानक सैलाब आने से तबाही हुई है। कटरा में 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अमरीकी फौज ने उर्दुन में ईरान के हमलों में दो अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर फजाई हमले किए हैं। बैडमिंटन में ओलंपिक में दो बार तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु जापान ओपन टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और फीफा आलमी कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा मुकाम हासिल किया है। इसके साथ ही आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास से कबल नई दिल्ली में सरकार की जानिब से बुलाई गई सभी पार्टियों की मीटिंग जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज तीन मुल्कों मालदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। जम्मू कश्मीर, राजौरी और पीर पंजाल में अचानक सैलाब आने से तबाही हुई है। कटरा में 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अमरीकी फौज ने उर्दुन में ईरान के हमलों में दो अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर फजाई हमले किए हैं। बैडमिंटन में ओलंपिक में दो बार तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु जापान ओपन टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और फीफा आलमी कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा मकाम हासिल किया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं हमारी पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सहपहर 3 बजे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपनी मन पसंद फिल्म DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अपने मन पसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से। और आज ये फिल्म लेकर आई है आपकी मन पसंद दोस्त तृप्ति जौहरी, आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आइए जल्दी से फिल्म की कहानी की बात कर लें। फिल्म की कहानी कुछ संक्षिप्त में इस प्रकार है। लंदन में रहने वाली सिमरन अपने सपनों की राजकुमार की कल्पना करती है। यूरोप यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात होती है राज से। शुरुआत में दोनों के बीच में तकरार होती है, लेकिन धीरे धीरे यही नोकझोंक प्यार में बदल जाती है। दूसरी ओर सिमरन के पिता ने बचपन में ही उसका रिश्ता पंजाब में अपने मित्र के बेटे कुलजीत से तय कर रखा है। राज चाहता तो सिमरन को लेकर भाग सकता था, लेकिन उसने फैसला किया वो सिमरन के परिवार का दिल जीत कर ही उसे अपने साथ ले जाएगा। यही बात, जी हाँ, यही बात इस फिल्म को अन्य प्रेम कहानियों से अलग बनाती है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने भारतीय सिनेमा में रोमांस का

नया दौर शुरू किया। इस फिल्म ने ये संदेश दिया कि सच्चा प्रेम केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि परिवारों के सम्मान और विश्वास को साथ लेकर चलने का नाम है। आज भी नई पीढ़ी इस फिल्म को उतने ही उत्साह से देखती है जितना 1995 में दर्शकों ने देखा था और चाहा था। इसकी गवाही देता है मुंबई का मराठा मंदिर सिनेमाघर, जिसमें ये फिल्म वर्षों तक लगातार प्रदर्शित होती रही, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड माना जाता है।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो

निर्देशन की शुरुआत करी और बेहतरीन शुरुआत हुई, ये तो आप सभी जानते हैं। क्या आपको पता है पहले राज की भूमिका के लिए टॉम क्रूज का नाम भी विचार में आया था, लेकिन बाद में ये किरदार शाहरुख खान को मिला। जी हाँ, शाहरुख खान शुरुआत में रोमांटिक भूमिका करने को लेकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थे, लेकिन बाद में यही किरदार उनके करियर की पहचान बन गया। फिल्म ने कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऐसा डायलॉग आपको याद आ गया होगा ना? और जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ये भी डायलॉग आपको याद आ गया होगा ना? आज भी ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं अधिकतर जुबान पर आ ही जाते हैं। आप बताएं, आपको कौन कौन सी बातें इस फिल्म से जुड़ी खास लगती हैं? हमारी ईमेल आईडी पर, हमारी ईमेल आईडी तो आप जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं उनको चलिए मैं बता देती हूँ। हमारी ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल जो इस फिल्म को और भी खास बनाता है, अपना बनाने में खास योगदान दिया था, वो था इस फिल्म का कर्णप्रिय संगीत, जिसे तैयार किया जतिन ललित ने और गीत लिखे आनंद पक्षी ने। फिल्म के सभी गीत सुपरहिट रहे, ऐसा आप भी मानते हैं ना?

भाई शाबा शाबा तो हम भी कर रहे हैं स्टूडियो में, और उम्मीद करते हैं शाबा शाबा आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि गीत और संगीत ही इतना कर्णप्रिय है आज की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का, क्योंकि आज की फिल्म है ही ऐसी। और देखिए ना, हमारा कंप्यूटर स्क्रीन भर चुका है आपकी ईमेल से, लगातार आ रहे हैं आपके संदेश। तो चलिए ले लेते हैं सबसे पहला संदेश। सबसे पहला संदेश हमको मिला है गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, और आप लिखते हैं शुक्रिया धन्यवाद आपका। तो शुक्रिया तो हम आपका अदा करना चाहेंगे साथी कि आपने प्रोग्राम सुना, और उसके साथ ही

तुरंत ही अपनी प्रतिक्रिया भेजी। इसके साथ ही हमारे को जो संदेश मिला है, ये हमारा संदेश आया है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। आप हमारे साथी हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और उनके साथ हैं खुशी गोस्वामी। और आप लिखते हैं हमारे साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से पेश करता आदरणीय जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बहुत अच्छा लग रहा है एक फिल्म की स्टोरी सुनकर, धन्यवाद आपका। और अगला जो संदेश है वो कार्यक्रम में हम ले रहे हैं, ये हमारा संदेश है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा कपिल पूजा परिहार जी का। और ये लिखते हैं बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं, बेहतरीन नगमे, रोचक किस्से, कहानी, नगमे के साथ बेहतरीन जानकारी आप दे रहे हैं, हम भी प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं। तो इससे बेहतरीन बात क्या होगी कि आपको कार्यक्रम बेहतरीन लग रहा है। और ये हमारे जो अगले साथी हैं राम राम जी प्लीज एनी सॉन्ग जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम विशाल प्रिया दिशानी और निमित, तो ये साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही हमारे और जो साथी जुड़े हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से आप हैं संतोष खड़गे और विनोद खड़गे, ये साथी हमारे जुड़े हैं। और ये लिखते हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आपने अपने समय की सबसे लोकप्रिय फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की स्टोरी गीत और अनसुने फैक्ट्स पर बहुत सुंदर जानकारी दी, सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए आपको हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। तो धन्यवाद आपका तहे दिल से संतोष खड़गे और विनोद खड़गे जी कि आपने इतने ध्यान से कार्यक्रम को सुना। अगला संदेश आया है, ये है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से, आप हमारे साथी हैं श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख डॉक्टर प्रशांत राजे पोता कुमार संचित वायल पोता कुमार प्रथमेश देशमुख हर्षद प्रणाली सर्वत देशमुख सानवी देशमुख और हर्षद देशमुख। और ये लिखते हैं एक ही फिल्म से प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लगता है और ये प्रोग्राम हम हर दिल ना ही इस प्रोग्राम में फिल्म के बारे में ज्ञानवर्धक मालूमात दी जाती है, धन्यवाद साथी कि आप इतने गौर से प्रोग्राम सुनते हैं। इसके साथ ही अगली जो मेल आई है वो है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की और ये लिखते हैं आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज की फिल्म का बेहतरीन जानकारी दिलचस्प किस्से और दिल को छूने वाले गाने बहुत ही सुकून दे रहे हैं, आपको उत्कृष्ट उत्तम प्रस्तुतिकरण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो धन्यवाद कोटि कोटि आपका दिग्दर्शन गौड़ जी। और अगली जो मेल है ये है हमारे साथी सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से और आप लिखते हैं आदरणीय तृप्ति जौहरी जी, तो आप आदरणीय नहीं भी लिखेंगे प्यार से तृप्ति लिखेंगे वो भी हम कबूल करेंगे। सादर प्रणाम कार्यक्रम सुन रहे हैं और जिसमें आज आप बात कर रही हैं फिल्म DDLJ की मधुर प्रस्तुति मोहक जानकारी और मन भावन गीत मस्त कार्यक्रम मन से बड़ी वाली बधाई ओ धन्यवाद आपका दिवस और जीवन बहुत मंगलमय हो कोटि कोटि धन्यवाद। तो आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। और अगला संदेश है संदीप मक्कड़ जी का, ये ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत कमल पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से आप साथी भी जुड़े गए हैं हमारे साथ। और अगले जो साथी हैं रोजी डिकेस्ट्रो ये लिखते हैं नमस्कार जी हम भी आपके प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पल डिकेस्ट्रो विलिस डिकेस्ट्रो। साथियों एक गुजारिश हम भी आपके दिल से करना चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट हमारी भी दिल से एक्सेप्ट कीजिए प्लीज कि बहुत सारे साथी हमारे बार बार संदेश भेजते हैं जिसके कारण हम बहुत से साथियों की रिक्वेस्ट को ईमेल्स को हम पढ़ नहीं पाते और उनकी जानकारी रह जाती है, तो प्लीज उनकी भी ईमेल हम शामिल कर पाए अधिक से अधिक संदेश हम शामिल कर पाए तो उनको भी जगह दीजिए और बार बार ईमेल्स ना भेजें। अगली जो ईमेल आई है आदरणीय प्रसारक जी को प्यार भरा नमस्कार और ये है हमारे साथी अनिल बुरांडे जी। और अगली जो आई है ये आई है प्रकाश वर्मा झग्गाराम साहू राजकुमार

तो श्रोताओं, यही थी हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की कहानी और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद है आपको ये विशेष प्रस्तुति पसंद आई होगी। इसी तरह फिल्मों के सुनहरे सफर और उनसे जुड़े अनकहे किस्सों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आज के कार्यक्रम से अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी को दीजिए इजाजत, लेकिन छोड़े जाती हूँ इस फिल्म के एक खूबसूरत से गीत के साथ।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोण दीआं खबरां। कल शुरू हो रहे पार्लियामेंट के मानसून इजलास तो पहला अज सर पार्टी मीटिंग हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोलदोवा, उत्तरी मैसेडोनिया ते रोमानिया के दौरे लई रवाना हो गए ने। जम्मू कश्मीर च अज सवेरे पुंछ जिले च भारी मीह ते जमीन खिसकन कारण घट्टो घट्ट चार लोगों की मौत हो गई ते कई होर लापता ने। दो बार ओलंपिक तमगा जेतू पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट का खिताब जीत लिया है। फीफा विश्व कप 2026

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल सरकार ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। अपोजिशन ने मीटिंग में एनसीपीआई को मजबूत किए जाने पर अलामती वॉक आउट किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी पार्टियों से ताउन की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कई मुकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमदाद को नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोर शोर से जारी है।

0: मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन का टाइटल जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को हराकर ख्वातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल नई दिल्ली में सरकार की जानिब से बुलाई गई सभी पार्टियों की मीटिंग जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। जनाब किरण रिजिजू ने मीटिंग से पहले इजहार ख्याल करते हुए सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो मानसून इजलास के कामकाज को खुश उसलूबी से चलाने के लिए ताउन करें।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन दोनों तरफ के अरकान कानून साजी के कामकाज में तामीरी अंदाज से हिस्सा लेंगे। इधर मीटिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद अपोजिशन पार्टियों ने शुरू में मीटिंग से वॉकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूरी अपोजिशन की पार्टियों ने एहतजाज में मीटिंग से वॉकआउट किया। मोहतरमा महुआ मोइत्रा ने इल्जाम लगाया कि आज की मीटिंग में शिरकत करने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया कोई तस्लीम शुदा पार्लियामानी पार्टी नहीं है, अलबत्ता अपना एहतजाज जाहिर करने के बाद अपोजिशन के अरकान मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। इनमें कांग्रेस के जयराम रमेश, सीपीआईएम के लीडर जॉन ब्रिटस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सवेरे पुंछ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से तीन ख्वातीन समेत कम से कम चार अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने बताया है कि ये सभी अमवात सबसे ज्यादा मुतासिरा सूरनकोट तहसील में हुई हैं। हुक्काम ने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए इमदादी कार्रवाई तेज कर दी है। पुंछ के नोनाबांदी गांव में एक मकान के गिरने से एक खातून की मौत हो गई। उनके शौहर और दो साल से लेकर छह साल तक के तीन बच्चों को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार बारिश और अचानक सैलाब आने के तनाजुर में राजौरी और पुंछ में बचाव और इमदादी कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो पुरसुकून रहें और सरकारी जराये से हासिल होने वाली ताजा जानकारी पर अमल करें। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक सैलाब आने से लोगों की मौत होने पर दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद राजौरी कस्बे में अचानक सैलाब आ गया। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने के तनाजुर में सैकड़ों लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। दरियाओं के किनारों में शगाफ पड़ गए हैं और दरियाओं का पानी किनारों से बाहर बहने की वजह से दर्जनों मोटर गाड़ियां या तो पानी में बह गई या जेरे आब आ गई हैं। सरकारी और प्राइवेट इमलाक को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया और पुलिस की मुआवनत से बचाव और इमदादी टीमों ने मुतासिरा कुंभों को बचाकर बाहर निकाला है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की और राजौरी जिले में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। जनाब अमित शाह ने मुतासिरा लोगों की सलामती और तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से उन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। मौसमियात महकमे ने अगले चंद रोज के दौरान खित्ते में दूर दूर तक बारिश होने और गरज चमक के साथ तेज बौछार पड़ने की पेशगोई की है। दूसरी तरफ कटरा की सब डिवीजनल इंतजामिया ने बारिश के मौसम के दौरान तेजी के साथ कार्रवाई करने और बेहतर तालमेल के लिए दिन रात काम करने वाला एक

कायम किया है। वहां के बाशिंदे कटरा मॉनसून कंट्रोल रूम से रुजू करके इमरजेंसी सूरत हाल की इत्तला दे सकते हैं या मदद हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर इस तरह है 01991295681। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा हिल्स में खराब मौसम के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अब भी मुअत्तल है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया है कि नामुआफिक मौसम के तनाजुर में अकीदतमंदों की सलामती को यकीनी बनाने की खातिर एहतियाती इकदाम के तौर पर यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा दोबारा शुरू होने के ताल्लुक से सरकारी वसीलों के तवस्सुत से ताजा जानकारी हासिल करते रहें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वो अपने हमनसब मया संधु के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा के पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। वो भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मोल्दोवा का ये अव्वलीन दौरा है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया मंगल के रोज शिमाली मकदूनिया जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में जुमेरात को रोमानिया पहुंचेंगी। आज अजीम इनकलाब पसंद रहनुमा और मुजाहिद आजादी मंगल पांडे का योम पैदाइश मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंगल पांडे ने मादरे वतन की शान और अजमत को सरबुलंद रखने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने हेरा फेरी करके बनाई गई दस्तावेजात के मामले पर बढ़ती हुई तशवीश के तनाजुर में सख्त वार्निंग दी है और जांच के लिए ओएमआर शीट से जमा कराने के बारे में तलबा और वालिदैन के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने बताया है कि जांच के लिए हाल ही में जो ओएमआर शीट से दाखिल की गई हैं उनमें से कई फर्जी या एआई की मदद से तैयार की गई हैं। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ियों और ओलंपिक में दो बार तमगे जीतने वाली पीवी सिंधु ने जापान ओपन टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। वो जापान में बड़ा टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। टोक्यो में खेले गए फाइनल में सिंधु ने आलमी नंबर 3 जापान की अकाने यामागुची को 21-17 और 21-17 से हरा दिया। आज रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला यूरोप की मजबूत टीम स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और फैसलाकुन एक रोजा मैच आज लंदन में लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले सरकार ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। अपोजिशन ने मीटिंग में एनसीपीआई को मधु के जाने पर अलामती वॉकआउट किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी पार्टियों से ताउन की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन का टाइटल जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। 2 PM समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।

0: किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991295681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिलिया नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन

0: में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली ओएमआर शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लंदन के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

जी हाँ दोस्तों, आपने हमें याद किया और हाजिर हो गए हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है एक ही कलाकार। और आज मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो साथी

दोस्तों, आप इस गाने को सुन रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आपने पहचान ही लिया होगा कि आज के हमारे कलाकार कौन हैं। जी हाँ, वे हैं जाने माने और समानांतर सिनेमा के साथ साथ कमर्शियल सिनेमा में अपनी शानदार एक्टिंग से, अभिनय से हम सभी का दिल जीतने वाले नासिरुद्दीन शाह साहब। ये हैं हमारे आज के कलाकार।

खय्याम साहब के संगीत में और भूपेंद्र सिंह साहब की आवाज में आप सुन रहे हैं बाजार फिल्म का ये दिल को छू जाने वाला नगमा।

दोस्तों, नसरुद्दीन शाह साहब का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक नवाब परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट एंसलप अजमेर में और सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल से पूरी किया। इसके अलावा उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और इसके बाद दिल्ली आ गए और यहां पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उनको अभिनय सीखने का मौका मिला और उन्होंने वहां से अपने अभिनय करियर की एक तरह से कहें कि शुरुआत की, क्योंकि इस एनएसडी से कोर्स करने के बाद ही उन्होंने अपने करियर का डेब्यू जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल साहब की प्रसिद्ध फिल्म निशांत से की, जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। और अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से नासिर साहब समानांतर सिनेमा

0: यानी पैरेलल सिनेमा और व्यवसायिक सिनेमा यानी कि कमर्शियल सिनेमा में बराबर की पकड़ रखते हैं। उन्होंने बहुत सारी समानांतर सिनेमा में काम किया, जैसे कि आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, अर्ध सत्य, बाजार और जाने भी दो यारो। इसके अलावा अगर कमर्शियल सिनेमा की बात करें तो उन्होंने त्रिशूल, मोहरा, सरफरोश, इश्किया, द डर्टी पिक्चर जैसी कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान भी बनाई, किस फिल्म के साथ जरूर आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको सुनवाते हैं उनकी एक ऐसी ही कमर्शियल फिल्म से एक सुपर डुपर हिट सॉन्ग, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा।
1: Oh, yeah.

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। हमारे नियमित श्रोता हैं मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, इन्होंने लिखा है अरुणेश भाई नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। और आपने लिखा है कि आपके ये कार्यक्रम हम सुन रहे हैं, बेहद पसंद आ रहा है, बहुत ही शानदार प्रस्तुति और बेहद ही प्यारे से गाने आप जो सुनवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

एक और संदेश आया है और ये आया है रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी वीणा आशीष राजा चैतन्य मस्ती मेघा और चंडीगढ़ से राहुल खुराना रति खुराना और किशोर विधान। इन्होंने लिखा है कि आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत खयाम साहब के संगीत में किया और जो आपने नगमा सुनाया करोगे आप तो हर बात याद आएगी और इसके

दोस्तों नासिर साहब की फिल्मों में जो उन्होंने किरदार निभाए हैं वो हमें और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो उनकी फिल्मों को देखते हैं वो बेहद ही यादगार किरदार उन्होंने निभाए हैं अलग अलग फिल्मों में। और जब भी नासिर साहब की बात होती है तो एक फिल्म मासूम जो कि 1983 में आई थी इसका जिक्र जरूर होता है और होना भी चाहिए क्योंकि इस फिल्म में शबाना आजमी के साथ नसरुद्दीन साहब ने बेहद ही दिल को छू जाने वाला अभिनय किया है और इस फिल्म के गीत के बोल लिखे हैं गुलजार साहब ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले हम आपको इसी फिल्म से एक बेहद ही प्यारा सा दिल को छू जाने वाला गाना आपको सुनवाते हैं अनूप घोषाल साहब की आवाज में।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा की दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में समय के साथ मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही एक दोस्ती का रिश्ता जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब और नसरुद्दीन साहब के बीच में दोस्ती का बहुत ही शानदार रिश्ता हुआ करता था। अपने एक इंटरव्यू में ओमपुरी साहब ने बताया था कि जब वे FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो उनके पास अच्छे कपड़े तक नहीं थे और तभी नसीर साहब ने उन्हें अपनी एक बहुत ही शानदार शर्ट पहनने को दी। इसके अलावा उन्होंने कई बार अपने दोस्तों की मदद की है। तो ऐसे प्यारे इंसान हैं हमारे नसीर साहब।

संदेश आया है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, सीता और गीता का, और इन्होंने लिखा है कि हम आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप जो गाने सुना रहे हैं वो बेहद हमें पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।

इसी बीच कुछ और संदेश आपके हमारे पास आए हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है कि वेरी गुड आफ्टरनून सर जी, बहुत बहुत नमस्कार। और इन्होंने लिखा है कि हम आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपकी प्रस्तुति बेहद ही शानदार है और आपकी आवाज तो लाजवाब है। क्या बात है, ऐसा कह करके आप हमारी जो तारीफ करते हैं बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपना फीडबैक ऐसे ही दिया कीजिए। और इसके अलावा एक और संदेश आया है हमारे पास, ये है नरवेल महाराष्ट्र से, नलेश्वर पी एस न्यावकर, निर्मला और विशाल जी का। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस कार्यक्रम में कुछ और संदेश आपके जरूर लूं, जैसे कि एक बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन और अपार का मैसेज आया है, और जो नसीर साहब पर मैं जानकारी दे रहा हूं वो उनको बेहद पसंद आ रही है, और साथ ही में उन्होंने शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए धन्यवाद भी दिया है। जी आपका धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताते हैं नसीर साहब के बारे में, कि जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि नसीर साहब हमारे हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से हैं जो कि समानांतर यानी पैरेलल सिनेमा के साथ साथ कमर्शियल सिनेमा में भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। और ऐसी ही एक आमिर खान साहब के साथ उन्होंने फिल्म किया था जिसका नाम था सरफरोश, और इस मूवी में बहुत ही शानदार एक्टिंग का परिचय दिया था नसीर साहब ने। और इसी फिल्म से हम जगजीत सिंह साहब की मखमली आवाज में एक प्यारा सा आपको एक प्यारी सी गजल सुनवाते हैं, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा।

मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अल्ताफ, आफरीन और नीलोफर का। इन्होंने लिखा है कि आपके इस कार्यक्रम को सुनकर बेहद ही मजा आ रहा है। आपकी प्रस्तुति का अंदाज बेहद ही सटीक और शानदार है। आपकी मधुर और मीठी आवाज दिल को छू जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

दोस्तों, नसीर साहब को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। जी हाँ, साल 2001 में आई थी एक फिल्म मॉनसून वेडिंग और एक हॉलीवुड फिल्म आई थी द लीड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। और इन फिल्मों में भी नसीर साहब ने शानदार अभिनय किया था और उन्होंने थिएटर में तो बहुत सारे नाटकों में अभिनय भी किया और साथ ही में निर्देशन भी किया। इसके अलावा एक फिल्म में भी उन्होंने एज ए डायरेक्टर किया था, 2006 में आई थी और उस फिल्म का नाम था यूं होता तो क्या होता। और अब तक उनको 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल एवार्ड से नवाजा जा चुका है। और कला क्षेत्र में योगदान के लिए 1987 में उन्हें पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जानी मानी अभिनेत्री रत्ना पाठक से उन्होंने 1982 में शादी किया था और उनके 2 बेटे हैं, इमाद शाह और

0: दोस्तों एक और संदेश ले लेते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल और पूजा परिहार का। इन्होंने लिखा है कि अभिनेता नसरुद्दीन शाह के बारे में बेहद ही अच्छी जानकारी मिल रही है। उनकी फिल्मों के गीत जो आप हमें सुनवा रहे हैं ये भी हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारे इस कार्यक्रम एक ही कलाकार में गीत संगीत के साथ साथ नसीर साहब के बारे में बातें यूं ही रहेंगी जारी। मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद, बने रहिए हमारे साथ।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आप लोग सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी के साथ, और आज के हमारे कलाकार हैं नसरुद्दीन शाह साहब, और हाल ही में उनकी एक फिल्म आई है मैं वापस आऊंगा। इस फिल्म में नसीर साहब ने बंटवारे का वो दर्द पर्दे पर उतारा है, जिसे देखकर हर दर्शक की आंखें नम हो रही हैं। ये फिल्म याद दिलाती है कि किस तरह से बॉलीवुड के फिल्म मेकर भले ही उनसे यानी नसीर साहब से थोड़ा बचकर चलते हों, लेकिन हम दर्शकों को नसीर साहब का स्क्रीन पर होना भारतीय सिनेमा के लिए बेहद यादगार पल होता है, क्षण होता है। क्योंकि इम्तियाज अली साहब की जो फिल्म मैं वापस आऊंगा हाल ही में रिलीज हुई है, और इस फिल्म में नसीर साहब ने उन इमोशंस को बाहर निकाला है जो हम सबके दिल के किसी कोने में छुपी हुई है। और इस फिल्म के अलावा नसीर साहब ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, जिसके बारे में हमने अपने इस कार्यक्रम में चर्चा भी किया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा नगमा आपको, उनकी एक ही कमर्शियल सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी द डर्टी पिक्चर, इसमें बप्पी लाहिड़ी साहब और श्रेया घोषाल की आवाज में एक प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं।

और दोस्तों इसी के साथ घड़ी की सुनिए इशारा कर रही है कि इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत, फिर किसी न किसी मोड़ पर आपसे इसी चैनल में होगी मुलाकात। रखिए अपना और अपनों

एक ही कलाकार फिल्म सुन रहे थे। कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे रमेश द्विवेदी। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3।

सभी आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

सर मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर बाद 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद, जिनमें 3:30 हम पेश करेंगे जनाब योगराज टंडन की तहरीर का दर्रा में बदला का दूसरा और आखिरी हिस्सा। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले इन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

आईडीएम में 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने आज सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की। अपोजिशन ने मीटिंग में एनसीपीआई को मदु किए जाने पर अलामती वॉकआउट किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का कामकाज खुशउसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी पार्टियों से तआवुन की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोर शोर से जारी है। मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन का टाइटल जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीता। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल आज सरकार ने नई दिल्ली में सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग की सदारत की। पार्लियामानी उमूर के वजीर

रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। जनाब किरण रिजिजू ने मीटिंग से पहले इजहार ख्याल करते हुए सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो मॉनसून इजलास के कामकाज को खुशसलूबी से चलाने के लिए तआवुन करें। इधर मीटिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद अपोजिशन पार्टियों ने शुरू में मीटिंग से वॉकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूरी अपोजिशन की पार्टियों ने एहतजाज में मीटिंग से वॉकआउट किया। मुहतरमा महुआ मोइत्रा ने इल्जाम लगाया कि आज की मीटिंग में शिरकत करने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया को कोई तस्लीमशुदा पार्टी नहीं है। अलबत्ता अपना एहतजाज जाहिर करने के बाद अपोजिशन के अरकान मीटिंग में शामिल हो गए। इनमें कांग्रेस के जयराम रमेश, सीपीआईएम के लीडर जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद राजौरी कस्बे में अचानक सैलाब आ गया। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने के तनाजुर में सैकड़ों लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होना पड़ा है। दरियाओं के किनारों में शिगाफ पड़ गए हैं और दरियाओं का पानी किनारों से बाहर बहने की वजह से दर्जनों मोटर गाड़ियां या तो पानी में बह गई या जेरे आब आ गई हैं। सरकारी और प्राइवेट इमलाक को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया और पुलिस की माओनत से बचाव और इमदादी टीमों ने मुतासर कुनबों को बचाकर बाहर निकाला है। इन इलाकों में बेला कॉलोनी और अब्दुल्ला ब्रिज के नजदीक झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती शामिल है। 50 से ज्यादा कुनबों को महफूज मकाम पर पहुंचाए गए हैं क्योंकि सैलाब का पानी उनके घर में आ गया था। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की और राजौरी जिले में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। जनाब अमित शाह ने मुतासर लोगों की सलामती और तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से उन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। महकमा मौसमियात ने अगले चंद रोज के दौरान खित्ते में दूर दूर तक बारिश होने और गरज चमक के साथ तेज बौछार पड़ने की पेशगोई की है। दूसरी तरफ कटरा की सब डिविजनल इंतजामिया ने बारिश के मौसम के दौरान तेजी के साथ कार्रवाई करने और बेहतर तालमेल के लिए दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। वहां के बाशिंदे कटरा मॉनसून कंट्रोल रूम से रजू करके इमरजेंसी सूरत हाल की इतला दे सकते हैं या मदद हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर इस तरह है 0199125681। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 0199125681। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सवेरे पूंछ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से तीन खवातीन समेत कम से कम चार अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। आकाशवाणी जम्मू के नामाधिकार ने बताया कि ये सभी अमवात सबसे ज्यादा मुतासिरा सूरनकोट तहसील में हुई हैं। हुकाम ने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए इमदादी कार्रवाई तेज कर दी है। पूंछ के नूनाबांडी गांव में एक मकान के गिरने से खातून की मौत हो गई। उनके शौहर और 2 साल से लेकर 6 साल तक के 3 बच्चों को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार बारिश और अचानक सैलाब आने के तनाजुर में राजौरी और पूंछ में बचाव और इमदादी कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो पुरसकून रहें और सरकारी जराये से हासिल होने वाली ताजा जानकारी पर अमल करें। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पूंछ में अचानक सैलाब आने से लोगों की मौत होने पर दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा हिल्स में खराब मौसम के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अब भी मुअत्तल है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया कि नामुवाफिक मौसम के तनाजुर में अकीदतमंदों की सलामती को यकीनी बनाने की खातिर एहतियाती इकदाम के तौर पर यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा दोबारा शुरू होने के ताल्लुक से सरकारी वसीलों के तवसुत से ताजा जानकारी हासिल करते रहें। मौसम बेहतर हो जाने और आमद रफ्त के लिए रास्ता महफूज होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। हुकाम सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं।
अपने दौरे के पहले

0: बर्लिन में सदर जमहूरिया मोल्दोवा पहुंचेगी, जहां वो अपने हम मनसब माया सांधू के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट की सदर इगोर ग्रोसो से भी मुलाकात करेंगी। वो भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मोल्दोवा का ये अव्वलीन दौरा है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया मंगल के रोज शिमाली मकदूनिया जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में जुमेरात को रोमानिया पहुंचेंगी। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में तंजानिया मुत्यादा जमहूरिया के जंजीबार के सदर और इनकलाबी काउंसिल के चेयरमैन डॉ हुसैन अली न्यूनी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि मुलाकात के दौरान उन्होंने आला तालीम, सलाहियत साजी, पानी की सप्लाई, सेहत, मसनूई जहानत, एआई, डिजिटल और दीगर तरजीही शोबों में भारत और तंजानिया के दरमियान जारी तावुन में इजाफा करने के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि आईआईटी मद्रास का जंजीबार कैंपस भारत की मुस्तहकम साझेदारी और अफ्रीका की तालीम और तरक्की से मुतालिक तरजीहात के तहत भारत के ठोस आजम की एक ताबनाक मिसाल है। आज अजीम इनकलाब पसंद रहनुमा और मुजाहिद आजादी मंगल पांडे का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंगल पांडे ने मादरे वतन की शान और अजमत को सरबुलंद रखने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मंगल पांडे की दिलेरी और अजीम कुर्बानी आज भी हर भारतीय को फखर से सरशार कर देती है। वजीर आजम ने कहा कि हुब्बुल वतनी के मंगल पांडे के जज्बे और बहादुरी से मुल्क की हर आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक में दो बार तमगे जीतने वाली पीवी सिंधु ने जापान ओपन टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। वो जापान में बड़ा टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। आज रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला यूरोप की मजबूत टीम स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और फैसलाकुन एक रोजा मैच आज लंदन में लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 12:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से खबर, सरकार ने आज सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की। अपोजिशन ने मीटिंग में एनसीपीआई को मदऊ किए जाने पर अलामती वॉकआउट किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का कामकाज खुशनुबी के साथ चलाने के लिए सभी पार्टियों से ताउन की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कई मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं गोपालदास सक्सेना यानी नीरज जी के लिखे हुए नगमे, जिनका आज यौमे वफात है। गोपालदास सक्सेना यानी नीरज 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पैदा हुए। उन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज एक उस्ताद की हैसियत से धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ में किया और फिर वहीं से उन्होंने अपनी शायरी का आगाज भी किया। उस्ताद के होते हुए भी उन्होंने अपने शायराना रविश को बरकरार रखा और धीरे धीरे उनका कलाम बम्बई तक पहुंचा। इस तरह से वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गए और बहुत से मशहूर नगमे फिल्म इंडस्ट्री को दिए। उनके नगमों का अगर तस्करा किया जाए तो उन्होंने ज्यादातर जो उनके नगमे मशहूर हुए वो शंकर जयकिशन की मौसीकी से सजे हुए या फिर एस डी बर्मन की मौसीकी से सजे हुए नगमे थे। उन्हें उनकी इल्मी एतराफ में और शायरी के एतराफ में 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्मभूषण से नवाजा गया। फिल्म दुनिया को यह खूबसूरत नगमा देने वाला शायर 19 जुलाई 2018 को 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और अपने पीछे छोड़ गए वो नगमे जो आज भी जब हम सुनते हैं तो नीरज की याद हमारे जहन

और जब जिक्र है नीरज की नगमात का, तो फिर भला कौन भूल सकता है वो फिल्म जिसके गानों ने धूम मचा दी थी, मेरा नाम जोकर।

0: मीडियम वेव 41-71 हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है जनाब योगराज का तहरीर करदा ड्रामा बदला का दूसरा और आखिरी हिस्सा।
1: चलो एक दिन और कम हुआ, थोड़ा सा बोझ और हल्का हुआ। अरे अल्लाह, तू ही सहारा है।
2: अरे बेटा, क्या बात है, अंधेरे में बैठी हो? कम से कम लाइट तो ऑन कर लो।
1: मेरे लिए रोशनी अंधेरा सब बराबर है।
2: अरे बेगम, तुम तो बहुत पहुंची हुई हो।
1: हाँ।
2: चलो पीछे चलो, अरे खाने पर इंतजार हो रहा है।
1: मैं माफी चाहती हूँ, मैं सबके साथ दस्तरखान पर शरीक नहीं हो सकूंगी।
2: अरे तो कोई मजायका नहीं, मैं नीचे जाकर कह देता हूँ, हम दोनों का खाना ऊपर आ जाएगा।
1: मेरी वजह से आप सबकी नाराजगी मोल लेंगे।
2: अरे बेगम, अगर मैं नहीं लूंगा तो फिर और कौन लेगा?
1: देखिए, आपकी नवाजिशों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा अकरम साहब। मैं चाहते हुए भी आपको वो एहतराम, वो खुलूस नहीं दे सकती जिसकी आपको मुझसे तवक्को है।
2: मैं जानता हूँ बेगम, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम अपना काम करते जाओ और मुझे मेरा काम करने दो।
1: ये नहीं हो सकता, आप मुझे बेहतर सुलूक की देख देकर।
2: देखिए बेगम, ये सब जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, किसी मकसद को सामने रखकर नहीं कर रहा हूँ, बस एक रंग होती है उसके हवाले मैंने खुद को कर दिया है। मेरी जिंदगी में एक नई करवट ली है और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। हाँ बेगम, आज से मैंने रंग देकर छोड़ दी है।
1: आप क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं? इससे कुछ गुना नहीं होने वाला। मेरे दिल में आपके लिए नए ख्याल पैदा होते ही नहीं। मैं जमाल को नहीं भूल सकती, उसका कत्ल, मेरे अब्बा की मौत, किस किस का हिसाब दूं?
2: आखिर मैं तुम्हारा खामिन हूँ, तुम्हारा मजाजी खुदा।
1: हाँ, मेरे जिस्म पर आपका पूरा पूरा हक है, लेकिन मेरी रूह,
2: आपका जिस्म, हड्डियों का ढांचा, खाक का तोड़ा, मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मैं अब वो पहले वाला अकरम नहीं हूं जिसमें कोई कशिश नहीं रखता। हाँ, जिसमें कोई कशिश नहीं रखता।

si uniti, jisne us se hone wale gunahon ke bare mein mujhe khabardar kar diya. Ye nasreen bete ka masoom chehra, bilkul mere rehmat bhai ki surat, sab kuch bardasht karta hu. Main kiye gaye gunahon ki saza bhogne wala, apni tamam tar rehmaton ki barish karta hu. भाई के चेहरे से उभरती हुई एक औरत देखी, अछूती झलक खुदा के तसव्वुर की मानत. भाई मुझे सरफराज कर रहे हैं किसी बहुत बड़े रुतबे से. क्यों क्यों क्यों मैं तस्लीम बेटी को उन गुनाहों की सजा देने पर आमादा हो गया था जो उससे कभी सरजद नहीं हुई. क्यों क्यों आखिर क्यों तस्लीम.

0: अगम बेटा
1: जी
0: एक बात पूछूं तुमसे।
1: हाँ कहिए ना अब्बा जान।
0: वो भाई वो अब नसरीन बेटी और तुम मेरा मतलब वो तुम दोनों बेचारी सारा दिन घर में अकेले बैठे
1: अब्बा जान आप जानते तो हैं काम की भरमार।
0: ये क्या कहते हो बेटा ये क्या कहते हो काम तो सब दिन होते ही रहते हैं लेकिन बेटा घर बीवी क्या बहू से तुम्हारा वो कुछ
1: जो मिल गया है ना उसी का शुक्र बजा लाइए।
0: अब
1: आपका बिगड़ा हुआ बेटा सीधे रास्ते पर आ गया।
0: हाँ वो तो तुम ठीक कहते हो बेटा। अरे बेटा मैं तो बेहद शुक्रगुजार हूं नसरीन बेटी का लेकिन घर बहुत सुना सुना है। देखो बेटा इस घर को कब से एक मासूम बच्चे की किलकारियों का इंतजार भी है।
1: बजान खुदा ने हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है।
0: अरे मेरे खुदावंद कब आएगी वो खुश आइंद साथ अरे कब इस आंगन में थाली बजेगी कब आएंगे सब।

0: नहीं हो सकता, मेरी कोख से तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। मैं ऐसा हर किसी नहीं होने दूंगी।
1: देखो देखो बेगम, ये मेरी नहीं अब्बा जान की भी आरजू है।
0: अगर इतना ही शौक है तो दूसरी कर लो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बन सकती, सांप को दूध नहीं पिला सकती मैं।
1: ठीक है बेगम, तुम्हारे गम बेहिसाब है और इन गमों की वजह बहुत हद तक मैं हूँ। लेकिन बेगम, क्या तुम बता सकती हो क्या उससे तुम्हारा ही दिल दुखता है? नहीं बेगम, चोट से तो हर शीशा चूर हो जाता है। अरे मैं भी तो इंसान हूँ,
0: मैं हर तरह का जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ, कर रही हूँ और करती रहूंगी। लेकिन मैं जालिम को नहीं भूल सकती, उसे माफ नहीं कर सकती।
1: देखिए बेगम, माफ करने वाला बहुत ऊंचा मुकाम पाता है।
0: मुझे किसी ऊंचे मुकाम का लालच नहीं है, फिर मेरे बस में भी तो नहीं है अकरम साहब। मैं तो बेबस, लाचार, बेयारो मददगार, आपके रहमो करम के मोहताज हूँ।
1: बेगम, मैंने तुमसे निकाह किया है, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हारी बेहतरी, तुम्हारी भलाई का बेड़ा उठाया है।
0: आपकी नवाजिशों और मेहरबानियों से मेरा दिल नहीं बहल सकता।
2: नसरीन, नसरीन, अरे अकरम भाई, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई।
1: नहीं नहीं गजाला, तुम गलत वक्त पर नहीं आई हो, बल्कि तुम तो बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। अरे मैं तो समझा समझा के हार गया।
0: आप घर की बात का तमाशा बनाना चाहते हैं?
1: गजाला कोई गैर तो नहीं है
2: नसरीन? जाने गजाला,
0: क्या तुम और अकरम भाई?
2: गजाला,
0: बेहतर है कि तुम हमारे घरेलू मामलात में दखल ना दो,
1: वरना क्या। नसरीन नसरीन, खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द ख्याली तिलस्म को तोड़ो, इस बगोले की लपेट में आने से बचो, तुम्हें कुछ हो ना जाए। देखो नसरीन, मैं अब्बा को समझा लूंगा। अरे जरूरी तो नहीं आदमी की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। अरे तुम गांव के इस भयानक अंधेरे से निकलो, निकलो।
2: नसरीन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे कुछ तो सोचो, जो नहीं है हद हो चुका है उसको तुम सीने से लगाए बैठे हो, और जो है तुम्हें मिल रहा है उसे तुम इस बुरी तरह से ठुकरा रही हो, ये ठीक नहीं है नसरीन।

0: मुंगेर कमरा।
1: वाह बेगम, तुमने तो नक्शा ही बदल दिया।
2: आपको अच्छा लगा?
1: अरे तुम अच्छा लगने की पूछ रही हो, अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा। सच बेगम, अरे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश।
2: अच्छा तो आप मेरी एक बात मानेंगे?
1: अरे एक बस एक ही? अरे बेगम आज तो तुम सौ बातें मनवा सकती हो। अरे कम से कम तुमने मुझे इस काबिल तो समझा।
2: तो मुझे माफ कर दीजिए, कहिए ना आपने मुझे माफ कर दिया।
1: चलिए माफ किया, क्या माफ? लेकिन माफ करने वाले को ये तो पता चले आपका कसूर क्या है।
2: वो कल मैंने बहुत तल्ख कलामी से काम लिया।
1: हा?
2: सच मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
1: प्लीज प्लीज बेगम प्लीज, देखिए इतनी खुशी एक साथ मत दो, नहीं तो मैं घर में पागल ना हो जाऊंगा।
2: मैं बेहद नादिम हूँ।
1: अच्छा बेगम, अब एक बात इस बातचीत के लिए मान लीजिए।
2: कही?
1: नहीं नहीं, लेकिन पहले आप बाधे कीजिए, आप हमें मायूस नहीं करेंगी।
2: आप कहिए तो।
1: अब देखो
2: जी,
1: अब चलो आज कहीं बाहर चले, मेरा मतलब गोल तो किनारे घूमेंगे।
2: ठीक है चलिए।
1: अरे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ।
2: नहीं नहीं गाड़ी नहीं, रिक्शा पर चलेंगे।
1: अरे वाह, गाड़ी के होते हुए रिक्शा पर क्यों?
2: गाड़ी तेज चलती है, सफर जल्दी खत्म हो जाएगा।
1: अरे चलो चलो रिक्शा पर ही सही। अरे तुम चलो तो सही।

जाकर बैठकर कि मुझे क्या हो जाता है, ये क्या हो रहा है। दो मुतजाद ताकतें आपस में गुत्था गुत्था है, बदले का खूंखार जज्बा अपनी पूरी ताकत से पिछली बातों को भुला देने, माफ कर देने के जज्बे से नबर्द आजमा है। ये अक्रम किस मिट्टी का बना है, थक कर हार भी तो नहीं जाता। अपने बाप के तमाम गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर ढो रहा है। वैसे शराफत चचा भी अब पहले से शराफत चचा कहां है। उन्होंने तो वो कुछ भी नहीं किया जो सोचकर अक्रम से मेरी शादी कराई। फिर उनकी आंखों में खुशी की चमक मुझे किस आग में झोंक रही है। मेरे अब्बा जमाल की लाश, लेकिन अक्रम का क्या दोष है इसमें। अक्रम के अब्बा की दिल में मचलती आरज़ू, इस घर के आंगन में मासूम बच्चे की हंसी के घुंघरू। बच्चा शराफत चचा के खानदान का नाम।

0: कैसे है वो नसरीन? कैसे?
1: सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। लिखा है अभी कुछ दिन और ठहरेंगे, और लिखता है कि नसरीन का खूब दिल लगा हुआ वहाँ भाभी जान। दोनों खूब सैर सपाटे करते, और सबसे बड़ी बात यह है कि नसरीन बहुत खुश है भाभी जान।
0: अल्लाह उन दोनों की खुशियां सलामत रखे, सदा मुस्कुराते थे
1: भाभी जान। मेरे तो कान तरस गए हैं बहू और बेटे के दबे दबे कह कह सुनने को।
0: काश अल्लाह बड़ा काश सास है भाई साहब, वो सबकी सुनता है।
1: लेकिन भाभी जान मेरी बारी कब आएगी? कब मुझको ना घर के सुनी जाएगी भाभी जान?
0: सुनी जाएगी, सुनी जाएगी।

0: फिर क्या बात है गजाला, इसको नाप रही है,
1: है तो है,
2: बड़ी खुशी की बात है, बड़ी ही खुशी की बात है।
3: अरे भाई कुछ हम भी तो सुने।
2: चटादान आप, मैं तो आप ही के लिए यहाँ जाने वाली थी।
0: क्या बात है बेटा, बात कर ले या सांस ले ले तू।
2: आपके आंगन में बच्चा खेलने वाला है।
3: अरे क्या कह रही हो बेटा,
2: ये नसरीन की चिट्ठी। हाँ तो चाची जान, तुम्हारे बेटे का पाँव भारी है।
3: सुन बेटी, आज तुमने तो मुझे बिल्कुल निहाल कर दिया, मालामाल कर दिया बेटी तूने मुझे। इतना भाभी जान कैसे जश्न मनाता हूँ, सारे शहर में धूम भाग का करूंगा। लोग भी क्या याद करेंगे कि हमारे शराफत के घर में जश्न हुआ था।
2: अभी चाचा जान, अभी तो इंतजार इंतजार इंतजार।

0: मुबारक हो शराफत अली, मुबारक हो, जश्न मनाओ, तुम्हारे खानदान का नाम लेवा पैदा हो गया। खुशी के शादियाने बजाओ, रुपयों की थैली का मुंह खोल दो, दिल खोल कर गरीबों में खैरात बांटो, तुम्हारे घर का चिराग रोशन हो गया।
1: अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अरे भाई खुशी का मुकाम है। जाओ दोस्तों, शहर की नामी गिरामी गाने वालियों को बुला लो, सारे शहर में मनाली करा दो कि शराफत अली के खानदान का चिराग रोशन हो गया। दोस्तों मैं तो नाउम्मीद हो गया था, लेकिन मेरे अंदर उस पाक परवरदिगार के परतों ने मुझसे कहा, शराफत अली सबर कर, हौसला रख, तुम्हारी सुनवाई होगी और जरूर होगी, अल्लाह ताला तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। और आज सारी दुनिया देख रही है, उसने खुशियों से मेरी झोली भर दी है।
0: शराफत भाई, दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाना ना भूलना।
1: अरे कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये सब उसी का कर्म तो है।
2: ओ नसरीन, ओ बदबख्त, तुम्हारा दुश्मन खुशियों के शादियाने बजा रहा है, उसकी खुशी का इजहार तुम्हारी शिकस्त का मातम है। कहां गई वो नसरीन जो बदले की आग में जल रही थी, जो शराफत अली की जिंदगी को मातम कदर बनाना चाहती थी? अभी भी देर नहीं हुई।

0: कोतवाल भाई, मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं किस कदर खुश हूं। अकरम के इस नौजायदा बच्चे के कान में देखो, सबसे पहले मैं अल्लाह का नाम पुकारूंगा, अरे मैं सुनाऊंगा उसे अजान।
1: हाँ लो वो आ गया।

0: अरे बेटे
1: तुम बाप बन चुके हो ना।
2: अक्रम भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मैं तो सोने की बालियां लूंगी। अक्रम भाई आपसे
0: अरे जो मांगेगी दूंगा। अरे कहे तो तेरा मुंह मोतियों से बांध लूं।
2: चाचा जान आप गवाह हैं।
0: बिल्कुल
2: भाई क्या कह रहे हैं।
0: चलो अब उस मासूम के दीदार तो करवा दो।
3: चलो मैं भी तुम्हारी तरह इंतजार कर रहा था।
4: अच्छा वो अम्मी कहाँ है।
3: अब वो थोड़ी देर पहले बाहर गई थी किसी काम से। बस
0: चलिए पहले वहीं चलते।
2: नसरी चैनी गजाला कहाँ है आप। अक्रम भाई चचा जान और हम आ रहे हैं। मनिका यालिया कहाँ है आप।
0: नसरी अरे कहाँ है।
2: कहाँ है यहाँ कमरे में तो कहीं नहीं।
0: अरे लेकिन बच्चा कहाँ गई होगी।
2: नसरी
0: कहाँ हो।
3: अरे भाई कमरे में हो।
0: अरे कहाँ थे आप
2: मेरी जान। कहो ना
0: वो बच्चा कहाँ है। बच्चा हमें साहबजादे के दीदार नहीं कराओगी।
2: कहाँ छुपा रखा है शहजादे को।
5: शहजादा कैसा शहजादा। क्या मतलब
0: नसरीन बेटा बच्चा।
5: बच्चा किसका बच्चा।
0: नहीं ऐसा नहीं कहो बेटा। ऐसा नहीं कहते नहीं जान
5: नहीं है बच्चा नहीं है।
0: क्या कह रही हूँ।
5: मैंने गला घोंट दिया।
0: तुम ऐसा नहीं कर सकती।
2: नसरी ये झूठ है।
5: नहीं झूठ है। ये झूठ नहीं है।
0: नहीं मैं मर नहीं सकता। मेरा बच्चा मर नहीं सकता। मुझे मेरा खानदान का लाभ
2: लेवा।
0: तुमने बहुत बुरा किया नसरी। अरे काश तुम ऐसा ना करती।
5: मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई तुम्हारे अब्बा के चेहरे पर खुशी का नाच और मेरे अब्बा की लाश दोनों सामने थे। जमाल का खून मेरी आंखों से बह रहा था। ये खुशी के शादियां ने मेरी शिकस्त का मातम थे। मैं नहीं देख सकी।
0: ये ठीक नहीं हुआ।
5: चाचा की फतेह मैं नहीं देख सकी।
0: तुम दोनों की लड़ाई है। मुझे कौन से गुनाह की सजा मिली। मुझे कौन से गुनाह की सजा मिली है बोलो।
2: अक्रम भाई
5: मैंने बदला ले लिया। मेरे अब्बा की मौत का बदला।
0: मेरे अक्रम का बच्चा। मैं उसके कान में ना आजान दूंगा आजाला। कोतवाल भाई देखो ना देखो ना कोतवाल भाई ये बच्चा मेरी तरफ किस नजर से देख रहा है देखो। अरे मेरी आवाज कान में पड़ते ही कैसे हाथ पांव चलाने लगा। ऐसे मुस्कुरा रहा। देखो कैसे हाथ पांव चला रहा है जैसे मेरे खानदान का चराग। किसका रोशन है ये।
1: कुछ तुम्हारी
0: किसका रोशन है।
1: मैं नहीं समझता था किसी नफरत ये आग।

0: 내가 나하고 정의도가 다시 죽던데 죄송해 하자 내기야
1: 매니 매니 몸다 가깔라고 드려 매니 매니 받으라 렐리야 렐리야 받으라 매니
0: क्या मिला एक मासूम का खून करके गुनाह करके तुमने खुद को भी किसी कतरे में खड़ा कर लिया अरे जिसमें अब्बा जान खड़े थे तुम मेरे अब्बा से कम गुनाहगार नहीं हो अरे कम गुनाहगार नहीं हो तुम भी गुनाहगार हो
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: तुम कैसी माँ हो कैसी माँ हो तुम नसीम कैसी माँ हो अपने बच्चे का गला घोट दिया तुमने अपने बच्चे का गला घोट दिया तुमने नसीम माँ तुम बच्चे को खून पिलाती है अपना खून पिलाती है अपना खून पिलाती है
1: तुमने तुमने नसीम
0: अपने ही बच्चे का खून कर दिया मार कर तुमने अपने ही बच्चे को अपने ही बच्चे को मार दिया
1: नहीं ये मैंने क्या कर दिया ये सब क्या हो गया ऐसे कैसे हो सकता है नहीं मेरा मामला नहीं आप ये घर से भाग गया मैंने किसको मार लिया मैंने किसको मार दिया

उसकी 16 बरस छह महीना।

मैंने प्यार किया इस फिल्म में अब आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। नर्मनिका थे सर भोपाली, मौसीकार राम लक्ष्मण। और सामने लीजिए सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू की आवाज में 1942 आलव स्टोरी फिल्म का यह नगमा। नर्मा जी निगार जावेद अख्तर, मौसीकार आर डी बर्मन।

आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी अशरफ भोसले की आवाजों में तीसरी मंजिल का फिल्म का नगमा नगमनिगार मजनू मौसिकार आर डी बर्मन।

干了。

0: सभी फिल्म के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने आज सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की। अपोजिशन ने मीटिंग में एनसीपीआई को मदु किए जाने पर अलामती वॉकआउट किया। जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और 1 लाख को नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों मोलदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। कुवैत पर ईरान ने कई हमले किए हैं, वहां फिजाई दिफाई निजाम को फाल बना दिया गया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन का टाइटल जीतकर पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल आज सरकार ने नई दिल्ली में सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग की सदारत की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ईरान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा, निस पार्लियामानी उमूर के उजराए ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। इधर मीटिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद अपोजिशन पार्टियों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई की शिरकत के मामले पर मीटिंग से अलामती तौर पर वॉकआउट किया। एनसीपीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी है जिसने रियासती असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया था और हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के कई बागी अरकान पार्लियामेंट इसमें शामिल हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूरी अपोजिशन की पार्टियों ने एहतजाज में मीटिंग से वॉकआउट किया। महुआ मोइत्रा ने इल्जाम लगाया कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया कोई तस्लीमशुदा पार्लियामानी पार्टी नहीं है, अलबत्ता अपना एहतजाज जाहिर करने के बाद अपोजिशन के अरकान मीटिंग में शामिल हो गए। इजलास के दौरान कई अहम बिल बहस और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। पार्लियामेंट का मानसून इजलास कल शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सवेरे पुंछ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद तेज चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से 3 खवातीन समेत कम से कम 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं।

0: आकाशवाणी जम्मू के नामनिगार ने बताया है कि ये सभी अमवात सबसे ज्यादा मुतासरा सोरनकोट तहसील में हुई है। हुकाम ने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए इमदादी कार्रवाई तेज कर दी है। पुंछ के मोनाबादी गांव में एक मकान के गिरने से एक खातून की मौत हो गई। उनके शौहर और 2 साल से लेकर 6 साल तक के 3 बच्चों को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार बारिश और अचानक सैलाब आने के तनाजुर में राजौरी और पुंछ में बचाव और इमदादी कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो पुरसुकून रहें और सरकारी जराये से हासिल होने वाली ताजा जानकारी पर अमल करें। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक सैलाब आने से लोगों की मौत होने पर दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद राजौरी कस्बे में अचानक सैलाब आ गया। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने के तनाजुर में सैकड़ों लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। दरियाओं के किनारों में शगाफ पड़ गए हैं और दरियाओं का पानी किनारों से बाहर बहने की वजह से दर्जनों मोटर गाड़ियां या तो पानी में बह गई या जेर आब आ गई हैं। सरकारी और प्राइवेट इमलाक को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया और पुलिस की मुआवनत से बचाव और इमदादी टीमों ने मुतासरा कुंभों को बचाकर बाहर निकाला है। इन इलाकों में बेला कॉलोनी और अब्दुल्ला ब्रिज के नजदीक झुग्गी झोंपड़ी की बस्ती शामिल है। 50 से ज्यादा कुंभों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है क्योंकि सैलाब का पानी उनके घर में आ गया था। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की और राजौरी जिले में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। जनाब अमित शाह ने मुतासर लोगों की सलामती और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से उन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। मौसमियात महकमे ने अगले चंद रोज के दौरान खेतों में दूर दूर तक बारिश होने और गरज चमक के साथ तेज बौछार पड़ने की पेशगोई की है। दूसरी तरफ कटरा के सब डिविजनल इंतजामिया ने बारिश के मौसम के दौरान तेजी के साथ कार्रवाई करने और बेहतर तालमेल के लिए दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। वहां के बाशिंदे कटरा मानसून कंट्रोल रूम से रुजू करके इमरजेंसी सूरत हाल की इत्तला दे सकते हैं या मदद हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर इस तरह है 01991295681। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा हिल्स में खराब मौसम के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अब भी मुअत्तल है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया है कि नामुवाफिक मौसम के तनाजुर में अकीदतमंदों की सलामती को यकीनी बनाने की खातिर एहतियाती इकदाम के तौर पर यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा दोबारा शुरू होने के ताल्लुक से सरकारी वसीलों के तवस्सुत से ताजा जानकारी हासिल करते रहें। मौसम बेहतर हो जाने और आमदोरफ्त के लिए रास्ता महफूज होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। हुक्काम सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों मोलदोवा शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया मोलदोवा पहुंचेंगे जहां वो अपने हमनसब मियाई संदूक के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोलदोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर गोरोसो से भी मुलाकात करेंगी। वो भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मोलदोवा का ये अव्वलीन दौरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन का एक मज़मून शेयर किया है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किस तरह से भारत की रवायती दस्तकारी जद्दत तराजी और आलमी शराकतदारी के जरिए मुआशी तरक्की को फरोग दे सकती है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक जिला एक मसनूआत पहल मुकामी दस्तकारी की मार्केट तक रसाई को यकीनी बनाने, पायदार रोजगार के मौके पैदा करने, सकाफती वरसे के तहफ्फुज़ और आलमी सतह पर मुल्क की मुसाबिकती सलाहियत को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो रही है। आज अजीम इनकलाब पसंद रहनुमा और मुजाहिद आजादी मंगल पांडे का योम पैदाइश मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंगल पांडे ने मादर वतन की शान और अजमत को सरबुलंद रखने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मंगल पांडे की दिलेरी और अजीम कुर्बानी आज भी हर भारतीय को फख्र से सरशार कर देती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुब्बुल वतनी के मंगल पांडे के जज्बे और बहादुरी से मुल्क की हर आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। کویت نے آج کہا ہے کہ ملک پر ایران کی جانب سے میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے جا رہے ہیں. کویت کی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کی جارحیت کے بعد ملک کا فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا ہے. بھارت کے سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی اور اولمپک میں دو بار تمغے جیتنے والی پی وی سندھو نے جاپان اوپن ٹورنامنٹ میں خواتین سنگلز کا ٹائٹل جیت لیا ہے. وہ جاپان میں بڑا ٹائٹل جیتنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن گئی ہیں. ٹوکیو میں کھیلے گئے فائنل میں سندھو نے عالمی نمبر 3 جاپان کی اکانے یاماگوچی کو 21-17 سے ہرا دیا. آج رات نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں. اس میں موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ یورپ کی مضبوط ٹیم اسپین سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. دونوں ٹیموں نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل سرکار نے آج سبھی پارٹیوں کی میٹنگ طلب کی. اپوزیشن نے میٹنگ میں این سی پی آئی کو مدعو کیے جانے پر علامتی واک آؤٹ کیا. جموں کشمیر میں کئی مقامات پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے اور اچانک سیلاب آنے سے کئی افراد کی موت ہوئی ہے اور املاک کو نقصان پہنچا ہے. بچاؤ کارروائی زور و شور سے جاری ہے. مرکز نے ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 3 ملکوں مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے دورے پر روانہ ہو گئی ہیں. کویت پر ایران نے کئی حملے کیے ہیں. وہاں فضائی دفاعی نظام کو فعال بنا دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: ویڈیو میں 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شام میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: نمسکار. آکاشوانی ورلڈ سروس دن دی اے پنجابی سیوائے شام دے 5 بجے نے ہن ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی اے. سبھا دا آغاز کر رہے ہیں شہری زبان سرائکی دے پروگرام جھوک ماہی دے نال.

0: ऑल इंडिया रेडियो दासीराय की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर हाजिर हाँ। आज दा प्रोग्राम घिन के साडिया नदियां दा इतिहास बहुत पुराना रहा है। आज मैं तुहाकू सब तो पहला नदियां ते ही एक वार्ता सुने दी हाँ। वार्ता है संस्कृति दे संवाहक भारतीय नदियां गोदावरी नदी। वार्ताकार हिन स्नेहलता विज।
1: सारे सराइकी टब्बर दे भेणी भिरावा ते बाला को मैडी नमस्ते राम राम। आज मैं तोड़े सामने हाजिर थैया एक वार्ता घिन के। साडे भारत देश विच सत पवित्र नदियां हिन जिन्हां विचो सब तो वड्डी नदी गंगा है। दूजे नंबर ते सारा तो लंबी नदी है गोदावरी नदी। आज मैं गोदावरी नदी बारे चर्चा करे सा। गोदावरी नदी साडे दक्षण भारत दे पासे दी एक खास नदी है। ही नदी को संस्कृति दी संवाहक कई गल्ला तो मन्या वेंदे। सब तो मुख कारण ए है कि हिंदे तट ते पुष्कर दा मेला या कुंभ मेला 12 साला विच एक वेरी लगदे। ए कुंभ दा मेला हरिद्वार ते उज्जैन विच भी लगदा है। इत्था साडे 12 ज्योतिर्लिंगा विचो एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है जिंदा ना त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इत्था भगवान शिव दा बहु पुराना त्रिंबकेश्वर मंदिर है। इत्था नांदेड़ तख्त श्री हजूर साहब सिखा दा पवित्र स्थान है। इत्था दा भद्राचलम राम मंदिर बहु

सात ऋषियों दे ना के रखिया गया है। ओ हिन कश्यप, अत्रि, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि ते वशिष्ठ। पुराणा विच भी इन्हां दा जिक्र है। इन्हां को महापुण्य कारक नदियां भी आदन। गोदावरी नदी दी औसत गहराई 8 फुट या 19 मीटर है। ही नदी ते कई परियोजनावां बनाईयां गईयां। ही नदी ते श्री राम सागर बंद तो सिंचाई बहु चंगी तरह नाल थी वेंदी है। हिंद अलावा पोलावरम सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम ते सदरभट एनिकट इना दो परियोजनावां को अंतरराष्ट्रीय आयोग ने धरोहर सिंचाई संरचना स्थल दे रूप विच मानता दित्ती हुई है। गोदावरी नदी ते कृष्णा नदी रल के दूजा वड्डा डेल्टा आंध्र प्रदेश विच बनेंदी है। ही को केजी डेल्टा आदन। ही नदी दी सारा तो वड्डी बेली नदी है वेन गंगा। हिंदे अलावा सबरी, दूध गंगा, मानेर, किनार सन्नी विहिम। गोदावरी नदी दिया सत शाखावा बनिया वेंदियन। गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, आत्रेयी, बुद्ध गौतमी, तुल्या, भारद्वाजी। हिंदी उप नदियां विहिम, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। इत्थां दी शिल्प कला विच गौतम ऋषि दी कहानी बारे भी दिखाया गया है। गोदावरी नदी दे डेल्टा विच मैनग्रोव वन है। ही नदी दे बेसिन विच कुछ वन्य जीव अभयारण्य ते उद्यान भी पाए वेंदन। पहले उद्याना बारे जानकारी दे देंदी हां। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, नवे गांव राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। हुण वारी आ गई है अभयारण्य दी। मैं तुहाको दसना चाहंदी हां कि अभयारण्य ओ छां हुंदी है जिथां जानवर बगैर किसे डर दे रह सकन। सरकार इथां उन्हां दी पूरी तरह देखभाल करेंदी है। इस तो अलावा इथा कई झरने भी हैं। पवित्र नदी होन करके ही नदी दी आरती भी रोज थिंदी है। ही आरती विच नदी दी भौगोलिक स्थिति, पुराणिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक ते जीवन मूल्यां दा जिक्र हुई है। आरती विच कुल 8 श्लोक अनुष्टुप छंद निहिं। संत रामदास जी ने ही को रुद्र गंगा दा नां भी दित्ता है। INS गोदावरी नां दे भारतीय सेना दे जहाजा विचों एक जहाज दा नां गोदावरी नदी दे नां तो ही गिद्दा गया है। ही नदी दे बेसिन विच कुछ खनिज जिवें कोला, लोहा, मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइड भी मिलते हैं। एडी खूबियां करके असा गोदावरी नदी को संस्कृति दी संवाहक आंदे हां। ए नदी वास्तव विच साडी संस्कृति दी संवाहक अखिंदी है। साकू ही विरासत को संभाल के रखना चाहिदा है। ही नदी दी तारीफ विच कुछ लाइना कविता दे रूप विच लिखियां। साडा देश भारत है विच पवित्र गोदावरी, साडा देश भारत है विच पवित्र गोदावरी गंगा। लिखा जोग्राफी ते असा ए नक्शा बहु रंगा। लिखा जोग्राफी ते असा ए नक्शा बहु रंगा। ही नदी दी मिट्टी साकू पवित्र करेंदी। ही नदी दी मिट्टी साकू पवित्र करेंदी। जमीन ता के है, जमीन ता के है, स्वर्ग ते भी साकू पुछेंदी। गोदावरी नदी दा पानी साकू ताकत भी है देंदा। गोदावरी नदी दा पानी साकू ताकत भी है देंदा। भरत जिहा हिक बाल, भरत जिहा हिक बाल, पकड़ शेर को गिंदा। असा खुश हां कि साकू पवित्र देश विच

श्रवण को हे मिलदा धन्यवाद। संस्कृति दे समाहक भारतीय नदियां गोदावरी नदी हुए तो सा स्नेहलता विज दी ए वार्ता सुन दे पे हवे वार्ता बहु जानकारी पूर्ण है ना तो वो किंचित लगी सानू खत घाल के दसना ते आओ हुन सुने दे हा हित सिराय की गीत गावन आले हिन जीशम खान रोखड़ी।

0: ਅਸੀਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ 5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣ ਜੂਗਾ ਉਹਦਾ 1/2 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਮਲੇ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 10% ਬੂਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰਮਲਾ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ 2-1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 30 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਵਰਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵੀ। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायल्लू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष की बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मिवनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। ज़ांज़ीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मिवनी से भेंट की। ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वरम पारद्वीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8,000 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वायत्त संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना

0: बनाया गया। अमेरिका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। ईरान ने अमरीकी हमले में हुए नुकसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 46 ओवर में 2 विकेट पर 315 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषिजत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: हेमंत भाई देखिए, हमारे किसान भाई फसल लगाने से लेकर कटाई तक दिन रात मेहनत करते हैं
1: जी।
0: और ऐसे में यदि कोई प्राकृतिक आपदा, चाहे अधिक बारिश या बाढ़, चाहे सूखा पड़ना, चाहे ओले पड़ना, या फसल में आग लगने से लेकर फसल अगर खराब हो जाती है तो काफी नुकसान होता है।
1: बिल्कुल।
0: और भाई देखिए, प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन उनसे होने वाले नुकसान की भरपाई फसल बीमा से कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। इस योजना में सभी फसलों को, चाहे फसल भाई की बात खरीफ की हो, रबी की हो या बागवानी की हो, सभी फसलों को इसमें शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि देखिए, प्रीमियम राशि इसमें बहुत ही कम रखी गई है, जो किसान भाई आसानी से दे सकते हैं। और साथ ही भाई देखिए, अगर बात करें तो देखिए, इसमें जो फसल में, चाहे प्राकृतिक आपदा के कारण, चाहे ओले पड़ने से फसल खराब हो, चाहे भाई आग लगने से, या किसी भी तरह से अगर फसल खराब होती है तो इसका दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात हेमंत भाई, एक बात और भी है इसमें कि किसी भी स्मार्टफोन से इससे जो नुकसान के होने वाली भरपाई का आसानी से किसान भाई,
1: मतलब छोटा सा प्रीमियम होता है, लेकिन इसका जो लाभ है ना, जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या बाकी जो भी इंश्योरेंस हम अपना कराते हैं, वैसे ही हम फसल का कराएंगे तो कहीं ना कहीं लाभ जो है किसान भाइयों को होगा।
0: और एक बात और हेमंत भाई, देखिए इस योजना में सभी किसानों को शामिल किया गया है
1: जी,
0: जिनकी अपनी जमीन है वो भी, और जो पट्टे पर लेकर जमीन उगाते। कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि भी मैंने तो पट्टे पर जमीन ले रखी, तो सभी को इस योजना के तहत शामिल किया गया और इस योजना का फायदा सभी किसान भाई ले सकते हैं
1: जी। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी रही किसान भाइयों के लिए। और जैसा कि पहले कार्यक्रम में हमने बताया था कि हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारे किसान भाई फरमाइशी कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जो अब के कलाकार हैं वो हैं भुल्लन त्यागी, और उनको सुनने के लिए हमारे पास जो फरमाइश आई है, वो कुकदा कुमारी छत्तीसगढ़ से, बलराम भया, दामनी भया, डोमेश भया और उनके परिवार के सदस्यों की आई है।
0: और इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है, दुर्गा कॉलोनी हांसी से, और भेजने वाले हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू बब्बू।
1: और वहीं अगली फरमाइश रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से आई है, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश हमारे पास है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: और अगली फरमाइश हमें मिले रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा और करुण वर्मा की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, और इसको भेजने वाले पीएस नवांकर, निर्मला, विशाल और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश साले भाटा महासमुंद छत्तीसगढ़ से हमारे पास आई है जीतू, ध्रुव, केबल, किरण, दिव्यांशी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल और उनके परिवार के समस्त परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली हेमंत भाई नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से, इसको भेजने वाले अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से आई है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश,

0: पाल, पंकज, काजल, सीमा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: बुलंद त्यागी को ही सुनना चाहते हैं, नूर महल महसूल सीतामढ़ी से, और इसको भेजने वाले मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और उनका समस्त परिवार।
0: पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से फरमाइश आई है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: और ये अगली फरमाइश हमें मिली है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की।
0: जनकपुरी सहारनपुर से फरमाइश जॉनी डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की फरमाइश हम तक आई है।
1: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और उनका समस्त परिवार, साथ ही डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और उनका समस्त परिवार।
0: गांव कुमार हीड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, आक्सा, नाजिया, आफिया और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने फरमाइश भेजी है।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है जैन वाली गली कुरावली से, इसको भेजने वाले राशिद हुसैन अंसारी, नरसिंह अंसारी और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा की आई है, जो सुनना चाहते हैं बुलंद त्यागी को।
1: और ये फरमाइश हमें मिली नाईवाला जिला से और हनुमानगढ़ राजस्थान से भेजने वाले वेद मिड्डा और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रियान और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: बुलंद त्यागी को ही सुनना चाहते हैं गांव लोअर ठाकरावाला से शरण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप गिल और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई आजाद ना लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेहराज जहां और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: और ये फरमाइश हमें मिली गांव चौलदा बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया की।
0: बाकी अब इनकी फरमाइश पर सुन लेते हैं भूलन त्यागी से ये
1: उपदेश।

0: तो सुनील भाई हमारे साथी अभी सुन रहे थे उनकी फरमाइश पर आधारित बुलंद त्यागी को, और जैसा कि पत्रोत्तर पर आधारित ये हमारा कार्यक्रम है, और इसी कार्यक्रम में एक पत्र हमारे पास आया है और इसको लिखने वाले हैं। ये पत्र आया है गांव करथला जिला अलीगढ़ यूपी से, और लिखने वाले श्रोता हैं रामकुमार सिंह, हरिंद्र और अभय चौधरी।
1: तो रामकुमार भाई और हरिंद्र भाई क्या लिखते हैं?
0: वो कहते हैं कि मैं सरसों की फसल लगाना चाहता हूं, और इसकी बिजाई का सही समय क्या है, और इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, निराई गुड़ाई कब करें, और सिंचाई आदि की क्या व्यवस्था करें जिससे अच्छा उत्पादन मिले।
1: तो देखिए रामकुमार भाई, हरिंद्र भाई और अभय चौधरी, आपका खत मिला है, आप सरसों की बिजाई करना चाहते हैं। तो देखिए सरसों जो एक प्रमुख तिलहनी फसल है, यह फसल कम लागत

0: में और कम सिंचाई सुविधा में अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती है। और भाई देखिए, इसे अकेले भी लगाया जा सकता है और अन्य फसलों के साथ मिश्रित फसल के रूप में भी लगाया जा सकता है। सरसों की बिजाई की जहां तक आपने बात की, तो देखिए सही समय की अगर बात करें तो 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर का अंतिम पखवाड़ा सबसे उचित और सही माना जाता है, यानी इस समय सरसों की बिजाई सही की जा सकती है। इसकी जो मुख्य उन्नत किस्मों की अगर बात करें या प्रजातियों की बात करें, तो उसमें सिंचित क्षेत्रों की अगर बात करें तो वर्ना टी 58, क्रांति, रोहिणी पीआर 45, आरएच 53, आरएच 781, आरएच 9304 मुख्य है। और असिंचित क्षेत्रों की अगर बात करें तो किरण वीपीसी आरएच 819, आरएच 30, आरबी 9901 गीता मुख्य किस्में हैं। और देखिए, सरसों की जो बुआई है उससे 15 से 20 दिन के अंदर भाई आप निराई गुड़ाई अवश्य करें, क्योंकि देखिए खरपतवार नियंत्रण के लिए एक निराई गुड़ाई सिंचाई से पहले वह एक बाद में करना जरूरी है। जहां तक सिंचाई की बात है, तो देखिए पहली सिंचाई 30 से 40 दिन के बाद फूल आने के समय से पहले करें, उसके बाद आवश्यकता अनुसार वर्षा अगर न हो तो भाई दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिन में करें। और कटाई मढ़ाई की अगर बात करें, तो जब फलियां जब 75% सुनहरे रंग की हो जाएं तो फसल को काट कर सुखा लेना चाहिए, उसके बाद मढ़ाई करके बीज को अलग कर लें। इस प्रकार इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे, उन्नत किस्म लेंगे, तो आप ले पाएंगे सरसों फसल से भरपूर उत्पादन।
1: बिल्कुल, उम्मीद है कि जो पत्र भेजा था अभय चौधरी हरिंद्र और रामकुमार सिंह ने, उम्मीद है कि उनको सही जानकारी मिली है और इसका ज्यादा से ज्यादा वो लाभ उठाएंगे। और जैसा कि कार्यक्रम हमारा चल ही रहा था, लोक संगीत पर आधारित ये, और इसमें अगले के जो कलाकार हैं हमारे योगेंद्र नीमचाना, और उनको सुनने के लिए जो हमारे पास जो फरमाइश बची हुई है, और ये फरमाइश है गांव नागर कोहरा जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामिन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: अगली जो फरमाइश आई है सुनील भाई हमारे पास, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आइए, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली है हमें भाई ढाणा नासन भिवानी से जगदीश चिंडालिया, राजवीर चिंडालिया, सतीश चिंडालिया और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: योगेंद्र रिमचाना को ही सुनना चाहते हैं, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू और उनके परिवार के सदस्यों।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है हिन्दुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ।
1: योगेंद्र नीमचाना को ही सुनना चाहते हैं, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश आई है हमारे पास, रामकुरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और उनके परिवार के सदस्यों।
0: और ये अगली फरमाइश हमें मिली है गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर और आरती रानी की। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं योगेंद्र निमचाना से ये उपदेश।
2: दया धर्म पुन दान धैर्य।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना योगेंद्र निमचाना से। और
1: जी
0: मौसम की अगर बात करें तो देखिए, आने वाले दिनों में जो अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है, और साथ ही आने वाले दिनों में हल्की व मध्यम बारिश की जो उम्मीद जताई जा रही है।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है जब बारिश होती है तो हमारे किसान भाई को करना क्या है, जल निकासी का जो प्रबंध है बना के रखना है, खेतों में अतिरिक्त पानी निकालने के रास्ते साफ रखें ताकि भारी बारिश से फसलों में पानी जमा ना हो सके। और एक और बात, खड़ी फसलों में खाद, कीटनाशक दवाएं आदि का मौसम साफ होने तक रोकें, इंतजार करें जब मौसम साफ हो जाए तभी उनमें खाद दवा वगैरह जो देना है दें।
0: बिल्कुल, और कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 5:10 पर आनंद ले सकेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का।
1: वहीं 6:30 बजे का कार्यक्रम रहेगा अपना ग्राम संसार, जिसमें बातचीत होगी डिजिटल भूमि अभिलेख और किसानों को उनके लाभ।
0: 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी देंगे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के उपायों के बारे में, साथ ही योजना के बारे में जानकारी देंगे मेरा गांव मेरा गौरव, और हरियाणा की जो चुनिंदा मंडियों के बाजार भाव के बारे में भी जानकारी देंगे। तो भाई, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा, अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया हमें अवश्य लिखें, और इसके लिए हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली 110001।
1: और श्रोता हमें मेल भी कर सकते हैं अपना जो फीडबैक है, जो हमारे feedback@gmail.com यानी कि feedback@gmail.com पर भी अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, कैसा लगा उन्हें ये कार्यक्रम।
0: तो देखिए भाई, इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

119 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है अब गजल और कव्वाली का कार्यक्रम। शुरुआत रूना लैला की इस गजल के साथ करते हैं।

और श्रोताओ, इसी के साथ आज का गजल और कव्वाली से सजा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 300

0: 63.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार में जो है फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में 2 नई पहलें शुरू की। दिल्ली सरकार ने रोहिणी सेक्टर 26 में 65 लाख रूपये की लागत से निर्मित सीवर लाइन का शुभारम्भ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी और अवैध शराब तस्करी मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया और नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल अभियान का 82वां संस्करण आयोजित हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट रहने का संदेश दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायलू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संसद में व्यवधान के बजाय सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है।
7: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
6: दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आज पूर्वी दिल्ली में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में 2 नई पहल शुरू की है। उन्होंने गांधीनगर में स्मार्ट पैड माउंटेन सबस्टेशन का उद्घाटन किया और सोलराइज ईस्ट अभियान की शुरुआत की।
8: सोलराइज ईस्ट अभियान का उद्देश्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को रूफटॉप सोलर से जोड़ना है। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार ने एक वर्ष में बिजली क्षेत्र में 1,427 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि इस निवेश के माध्यम से ट्रांसमिशन और वितरण को सुदृढ़ किया जा रहा है, साथ ही नए सब स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा पुराने बिजली ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और आधुनिक तकनीकी को तेजी से अपनाया जा रहा है। श्री सूद ने कहा कि किसी भी आधुनिक शहर के विकास की सबसे मजबूत नींव उसकी बिजली व्यवस्था होती है। उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आम नागरिकों का दैनिक जीवन निर्बाध तथा गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल बिजली उपलब्ध कराना नहीं बल्कि विश्वसनीय, किफायती, स्मार्ट और हरित बिजली सुनिश्चित करना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
6: दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज रोहिणी सेक्टर 26 में 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीवर लाइन का लोकार्पण किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परियोजना का निर्माण दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है।
9: इस परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र में पेयजल पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, सड़कों का विस्तार और निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा बड़े स्तर पर पौधारोपण भी किया जा रहा है।

0: परियोजना के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में सीवर व्यवस्था सुदृढ़ होगी, गंदे पानी की समुचित निकासी सुनिश्चित होगी तथा जल भराव की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही गंदे पानी के जमाव से होने वाली बीमारियों की आशंका भी काफी हद तक कम होगी। श्री सिंह ने कहा कि इस परियोजना से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को भी आधुनिक शहरी क्षेत्रों के समान विकसित बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार विकास कार्यों को गति देने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
1: दिल्ली सरकार ने जनकपुरी स्थित एक निजी विद्यालय को बच्चों की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यालय को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है।
2: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यदि कोई संस्था बाल यौन उत्पीड़न जैसी गंभीर घटना को छिपाती है, आवासीय भवन के बेसमेंट में अवैध रूप से शाखा चलाती है और विद्यालय के धन का दुरुपयोग करती है तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर विद्यालय की भूमि की लीज रद्द कराने की भी कार्रवाई की जाएगी। श्री सूद ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और गरिमा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान छात्रा से कथित यौन उत्पीड़न की घटना की जानकारी छिपाने, सभी 64 सीसीटीवी कैमरों के बंद होने, बिना अनुमति शाखा चलाने, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो सुरक्षा व्यवस्था के अभाव, फायर एनओसी समाप्त होने और करीब 6 करोड़ रुपए के वित्तीय दुरुपयोग जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: दिल्ली सरकार स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ चलाने की तैयारी कर रही है। इस अभियान के लिए लगभग 2 लाख तिरंगे दिल्ली के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस अभियान के जरिए महिलाओं और स्थानीय समूहों को आजीविका तथा आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पूरी दिल्ली में 15 लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी तिरंगे भारतीय ध्वज संहिता 2002 और निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप तैयार किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा जन भागीदारी की भावना को मजबूत करने का भी एक अवसर है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज नेताजी नगर स्थित महिला तकनीकी संस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लगातार 33वें रविवार सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल मार्केटिंग जैसे रोजगारमुखी पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशने पर बल दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पीड़ित से 5,80,000 रूपये की ठगी की। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजस्थान के मेवात क्षेत्र से संचालित एक संगठित गिरोह से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 350 क्वार्टर अवैध शराब और अपराध में इस्तेमाल होने वाला एक वाहन भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब की बोतलों पर केवल हरियाणा में बेचने का लेबल था। मामले की जांच जारी है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध रूप से भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी भारतीय पहचान बनाकर दिल्ली में रह रहा था। जांच में पता चला कि उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता भी बनवा लिया था। पुलिस ने पासपोर्ट, आप्रवासन रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उसकी वास्तविक पहचान और अवैध रूप से भारत में रहने की पुष्टि की। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कल नई दिल्ली जिले में किसी भी अविरोध मार्च या जुलूस के लिए न तो कोई इजाजत मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए यहां विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी है। उन्होंने कहा कि इस धारा के अंतर्गत सिर्फ जंतर मंतर पर तय विरोध स्थल पर ही पहले से इजाजत लेकर प्रदर्शन करने की अनुमति है।

0: चूंकि कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए आम लोगों की सुरक्षा, सुरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा और अहम सरकारी इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर कल से नई दिल्ली क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के दिशा निर्देश जारी की है। यातायात पुलिस के अनुसार संसद सत्र के दौरान वाहनों की आवाजाही बढ़ने और सुरक्षा व्यवस्था के कारण कई प्रमुख मार्गों तथा चौराहों पर यातायात प्रभावित रह सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पशुपालन विभाग का अधिकारी बनकर रिश्वत मांगने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को पशुपालन और डेयरी विभाग का अधिकारी बताकर पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के अंतर्गत ऋण आवेदकों से लोन मंजूरी के नाम पर रिश्वत वसूलता था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने उत्तराखंड के एक पोल्ट्री फार्म संचालक से 22,50,000 रूपये के ऋण को मंजूरी दिलाने के बदले 45,000 रूपये की रिश्वत मांगी थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। खेल और युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित 82वें संडे ऑन साइकिल अभियान में भाग लिया। देशभर में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान के अंतर्गत आज खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों के साथ साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि आज के संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
1: आज संडे ऑन साइकिल की 82वीं एडिशन है। देश के लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कर्मियों के साथ आज संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 15,000 से अधिक स्थानों पर आज संडे ऑन साइकिलिंग करके देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वस्थ रहने का संदेश दिया है और प्रधानमंत्री जी की संडे ऑन साइकिल मूवमेंट के साथ जुड़े है।
0: इस दौरान खेल मंत्री ने साइकिल चलाने के 4 प्रमुख फायदे भी बताए।
1: साइकिलिंग एक छोटा प्रयास बट बहुत बड़ा परिणाम देता है। हर संडे 1 घंटे साइकिलिंग से आप स्वयं को फिट रख सकते हो, पोल्यूशन का सॉल्यूशन कर सकते हो, देश का तेल को बचा सकते हो। एक साइकिलिंग से इतना फायदा होने से और फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जोड़ने के लिए आज देश के लाखों युवाओं साइकिलिंग के और प्रेरित हो रहा है और साइकिलिंग कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि शहर भर के रेस्तरां, कैफे और अन्य कई स्थान कल सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसला फुटबॉल प्रेमियों को बड़े मुकाबलों का आनंद लेने का मौका देगा, साथ ही शहर की जीवंत नाइट लाइफ और स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार आज देर रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन का खिताब अपने नाम किया। महिला सिंगल्स फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता जापान की अकाने यामागुची को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान उनका दृढ़ संकल्प और असाधारण कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु की ये जीत देशभर के युवा खिलाड़ियों को बैडमिंटन में भाग लेने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है और पीवी सिंधु ने देश का मान बढ़ाया है। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर मौसम साफ रहने के साथ साथ लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में 2 नई पहलें शुरू की। दिल्ली सरकार ने रोहिणी सेक्टर 26 में 65 लाख रूपये की लागत से निर्मित सीवर लाइन का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी और अवैध शराब तस्करी मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। और नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल अभियान का 82वां संस्करण आयोजित हुआ। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं श्री रंजय अत्रिश्य, श्रीमती रचना सिंह, श्री चंदन कुमार सिंह और श्रीमती चंद्रकांता सिवाल। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं श्रीमती चंद्रकांता सिवाल।
1: नमस्कार, आज की इस काव्य गोष्ठी में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच आज के आमंत्रित कवि हैं श्री चंदन कुमार जी, जो एक मंचीय कवि है, सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्यमी है, और हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हैं कवि रंजय अत्रिश्य जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं कवित्री और लेखिका श्रीमती रचना सिंह जी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की ये काव्य गोष्ठी, और आज की ये काव्य गोष्ठी विशेष रूप से बापू स्टूडियो में आयोजित की गई है, और हम सबसे पहले बापू जी को ही नमन करते हुए उनको भाव विशेष समर्पित करते हैं।

0: और आज के इस काव्य गोष्ठी में मैं आमंत्रित करती हूँ चंदन कुमार जी को, जो एक कवि, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता है। आपकी कविताएं साहित्य और समाज संवेदनाओं, राष्ट्र प्रेम और रिश्तों की भावनाओं को सहज ही उजागर करती हैं। आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद। मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगा पहले अपने बारे में। करीब 30 साल पहले बिहार से दिल्ली आया था पढ़ाई के लिए, और उन संवेदनाओं को मैंने कुछ शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। उस कविता का शीर्षक है बाकी सब ले आया था। कविता कुछ ऐसे है कि माँ का आंचल वही रह गया, माँ का आंचल वही रह गया, पापा का दुलार भी समेट न पाया था।
2: बहुत बढ़िया।
1: माँ का आंचल वही रह गया, पापा का दुलार भी समेट न पाया था, गलियां दोस्त भी वही रह गए, लेकिन बाकी सब ले आया था।
2: क्या बात,
0: बहुत खूब बात।
1: किताबे सिताबे कपड़ा लत्ता टीन का बक्सा पूरा भर आया था, बस मेरा लड़कपन हठपन वही रह गया, बाकी सब ले आया था।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: दादी का प्यार, बहन का मनोहार, उनके आंसुओं को तो नहीं रोक पाया था, पर आंसुओं के निशान वहीं छोड़कर बाकी सब ले आया था।
2: क्या बात।
1: और सच तो यह है कि बहुत हिसाब से पैकिंग की थी
2: जी,
1: बहुत हिसाब से पैकिंग की थी, वैसे कुछ ज्यादा छूट नहीं पाया था, बस होली दिवाली वही रह गया, बाकी सब ले आया था। बाकी सब ले आया था, जब घर छोड़ दिल्ली में आया था, बाकी सब ले आया था।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
0: बहुत सुंदर। आपने अपनी बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की। चंदन कुमार जी से हम एक कविता और सुनेंगे।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रचना मैंने लिखी है, मेरी उम्र करीब 50 साल होने वाली है
2: जी,
1: और हमने ऐसा देखा है कि जो संबंधों में पति पत्नी के जो संबंध होते हैं
2: जी,
1: वो जीवन की आपाधापी में कहीं न कहीं 40-50 आते आते एक बड़ा ही फॉर्मल सा हो जाता है। तो ये कविता उसी संदर्भ में है कि चलो इश्क दोबारा करते हैं
0: जी। जी,
1: कविता का शीर्षक है कि इश्क दोबारा होने दो ना, अपनी आंखों में खोने दो ना
2: जी,
1: अपनी आंखों में खोने दो ना, अपने आंचल में सोने दो ना, एक उम्र परी है अभी जीने को, अभी तो फिर 50 साल ही हुए हैं, एक उम्र परी है अभी जीने को, इश्क दोबारा होने दो ना।
2: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: मैं देखूं तुम शर्मा जाओ,
2: क्या कहने,
1: मैं देखूं तुम शर्मा जाओ, कंधे पर जो हाथ रखूं तुम मन ही मन इतर आ जाओ, मैं देखूं तुम शर्मा जाओ, कंधे पर जो हाथ रखूं तुम मन ही मन इतर आ जाओ, तुम्हें छू लूं दिल में कुछ कुछ होने दो ना,
2: क्या बात,
1: इश्क दोबारा
2: होने दो ना, होने दो।
1: घंटों करते हैं बातें फिर से, बहुत समय है तो सारी जिम्मेवारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है
2: जी, जी।
1: तो घंटों करते हैं बातें फिर से, आओ गढ़ते हैं यादें फिर से, कुछ रात बिना नींद कटने दो ना, कुछ रात बिना नींद कटने दो ना, इश्क दोबारा होने दो ना। चलो भूल जाते हैं दुनिया के गम, चलो भूल जाते हैं दुनिया के गम, छोड़ो दुनियादारी क्या ज्यादा क्या कम।

0: समझदारी का बोझ जरा हटने दो ना, समझदारी का बोझ जरा हटने दो ना, इश्क दोबारा होने होना। सुबह की चाय चलो साथ बनाते हैं, सुबह की चाय चलो साथ बनाते हैं, रात को टहलते हुए आइसक्रीम भी खा आते हैं
1: जी।
0: सुबह की चाय चलो साथ बना देते हैं, रात को टहलते हुए आइसक्रीम भी खा आते हैं। उन लम्हों को फिर से जीने दो ना, इश्क दोबारा होने दो ना, चंदन से इश्क दोबारा होने दो ना, इश्क दोबारा होने दो।
1: बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, कमाल के,
2: बहुत सुंदर, इश्क दोबारा होने दो ना। अब मैं अगले कवि के रूप में श्री रंजय अतरीशे को आमंत्रित करती हूं, जो दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पर कार्यरत हैं और समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए सुनते हैं इनसे कविताएं इनकी।
3: धन्यवाद चंद्रेश जी। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरी नज्म है, इसका उन्वान है वर्दी
2: जी। स्वागत है।
3: मेरी नज्म देश के सभी सैनिकों को समर्पित है। तो इसका आगाज करते हैं कि हमारी आन है वर्दी, हमारी शान है वर्दी, अगर हम सच कहें तो सारा हिंदुस्तान है वर्दी।
0: क्या बात है,
3: हमारी आन है वर्दी, हमारी शान है वर्दी, अगर हम सच कहें तो सारा हिंदुस्तान है वर्दी। और कसम खाई है जो हमने, करेंगे मिट के भी वो पूरी।
0: क्या बात,
3: कसम खाई है जो हमने, करेंगे मिट के भी पूरी, हमारे खुद से वादे की अमिट पहचान है वर्दी।
2: बहुत
3: शुक्रिया। हमारे खुद के वादे से अमित पहचान है वर्दी, न देखे दिन न देखे रात, न ही धूप और बरसात।
0: बहुत सुंदर।
3: न देखे दिन न देखे रात, न ही धूप और बरसात, खड़ी हो कर्तव्य पथ पर हर जगह, यही अरमान है वर्दी।
2: बहुत सुंदर।
3: यही अरमान है वर्दी, और नजर से दुष्ट कोई बच नहीं सकता किसी सूरत, नजर से दुष्ट कोई बच नहीं सकता
0: किसी सूरत,
3: हमारे राष्ट्र का गौरव है निगेबान ये वर्दी।
2: बहुत
3: है निगेबान ये वर्दी, और जमीन से आसमानों तक रचा इतिहास है जिसने। वो करें जमीन से आसमानों तक रचा इतिहास है जिसने, वतन के जर्रे जर्रे का है गौरव गान ये वर्दी।
0: वाह
3: है गौरव गान ये वर्दी, और मने त्योहार घर घर में रहे सद्भाव जन जन में
0: जी।
3: मने त्योहार घर घर में रहे सद्भाव जन जन में, रहे मुस्कान चेहरों पर, वही दिनमान है वर्दी।
0: बहुत बढ़िया,
2: बहुत
3: रहे मुस्कान चेहरों पर, वही दिनमान है वर्दी। वो भले अवरोध हों कितने,
0: भले अवरोध हो कितने,
3: भले अवरोध हों कितने, भले हों इम्तहा कितने।
0: बहुत अच्छा।
3: भले अवरोध हों कितने, भले हों इम्तहा कितने, इरादे से नहीं दिखती वो एक चट्टान है वर्दी।
2: शुक्रिया।
3: इरादे से नहीं दिखती वो एक चट्टान है वर्दी, और नहीं है रंग प्यारा कोई भी, नहीं है रंग प्यारा कोई भी इस रंग से हमको, नहीं है रंग प्यारा कोई भी इस रंग से हमको, बदन पर है सजी खाकी मेरा अभिमान है वर्दी।
0: बहुत अच्छा।
3: बदन पर है सजी खाकी मेरा अभिमान है वर्दी, और जमाने भर में केवल एक ही चाहत है बस, जमाने भर में केवल एक ही चाहत है बस, समझ लेना, समझ लेना, समझ लेना, धड़कता दिल है इसमें।
0: क्या बात है,
3: धड़कता दिल है इसमें, ये भी तो एक इंसान है वर्दी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
3: धड़कता दिल है इसमें, ये भी तो एक इंसान है वर्दी।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया।
3: ये मेरी नज्म है, इसका उन्वान है हम फिर मिलेंगे,
0: हम फिर मिलेंगे,
3: हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे, चांदनी रातों में, प्यार की बातों में, दहकती चट्टानों में, खुले आसमानों में, हम फिर मिलेंगे।
0: वाह, बहुत अच्छा।
3: हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे, तेरी सांसों की महकती हुई खुशबुओं में और फुर्सत के उन्हीं लम्हों में। हम फिर मिलेंगे, तेरी सांसों की महकती हुई खुशबुओं में और फुर्सत के खूबसूरत लम्हों में, हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे, बरसात की बूंदों में, बरसात की बूंदों में, पहाड़ों पे फैली हुई सूरज की किरणों में, अलसा

0: छाई हुई धूप में, बादलों में, हवाओं में, खलाओं में हम फिर मिलेंगे।
1: बहुत सुंदर,
0: शुक्रिया। बादलों में, हवाओं में, खलाओं में हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। दूर वो जो एक नदी बहती है ना, उसके किनारे पे।
2: वाह,
1: बहुत सुंदर
0: जी। एक साथ
2: बहुत
0: आप जहाँ जहाँ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वहाँ वहाँ चले मेरे साथ कि हम फिर मिलेंगे। दूर वो जो एक नदी बहती है ना, उसके किनारे पे, छत पे, चौबारे पे और मन के द्वारे पे।
2: वाह,
0: हम फिर मिलेंगे।
2: बहुत सुंदर।
0: हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे पर्वतों पे बिखरी बर्फ पर और अनंत रेगिस्तानों की गर्म रेत पर।
2: वाह,
0: हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे उस जगह जहाँ वक्त ठहरा हुआ है सैकड़ों सदियों से, जहाँ कश्तियां बातें करती हैं मदमस्त नदियों से। हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे सच और झूठ के पर्दे से बहुत आगे।
2: बहुत सुंदर।
0: हम फिर मिलेंगे सच और झूठ के पर्दे से बहुत आगे, हम फिर मिलेंगे क्योंकि मिलना ही हमारा मुकद्दर है।
2: बहुत
0: हम फिर मिलेंगे क्योंकि मिलना ही हमारा मुकद्दर है, और जो ना मिल पाए तो इंतजार करना मेरा।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: और जो ना मिल पाए तो इंतजार करना मेरा, बदलती हुई ऋतुओं में, गिरती हुई पत्तियों में, बरसते हुए पानी में, हर अधूरी कहानी में।
1: बहुत सुंदर,
2: बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।
0: और जो ना मिल पाए तो इंतजार करना मेरा, बदलती हुई ऋतुओं में, गिरती हुई पत्तियों में, बरसते हुए पानी में, हर अधूरी कहानी में, फिर तुम और मैं मिलकर हम हो जाएंगे।
2: क्या बात है, क्या?
0: फिर तुम और मैं मिलकर हम हो जाएंगे, और मिल जाएंगे हवाओं में, कंदराओं में, नाचती लहरों में, बेलोस बातों में, सुबह में, रातों में।
2: वाह, बहुत सुंदर,
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: और मिल जाएंगे हवाओं में, कंदराओं में, नाचती लहरों में, बेलोस बातों में, सुबह में, रातों में, हम फिर मिलेंगे और फिर मिलते रहेंगे।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: हम फिर मिलेंगे और फिर मिलते रहेंगे, बस एतबार करना मेरा, इंतजार करना।
2: वाह वाह,
0: हम फिर मिलेंगे। आप दोहे सुनाता हूँ मैं आपको।
1: जी जी, स्वागत है।
0: हजारों ख्वाब हैं और हैं ख्वाहिशें हजार, हजारों ख्वाब हैं और हैं ख्वाहिशें हजार, है छोटी सी जिंदगी और छोटा सा घर द्वार। है छोटी सी जिंदगी, छोटा सा घर द्वार, और बात बात में हो गया जीवन से संवाद। बात बात में हो गया जीवन से संवाद, तुम हमसे जो आ मिले फिर कैसा अवसाद।
2: क्या बात है,
0: तुम हमसे जो आ मिले फिर कैसा अवसाद, और तेरे मेरे बीच में है कितना विस्तार, तेरे मेरे बीच में है कितना विस्तार, दिल से दिल को रोशनी फिर काहे बेजार। फिर काहे, और कोरे कागज पर लिखी कोमल मन की पीर, कोरे कागज पर लिखी कोमल मन की पीर, याद करूं जब भी तुझे नैनन बरसे नीर।
1: बहुत सुंदर।
0: और जग के पालन हार हैं सबके राजा राम, जग के पालन हार हैं सबके राजा राम, उनको है अभिमान कब करते सबके काम।
2: वाह वाह,
0: उनको है अभिमान कब करते सबके काम, ओ हम दोनों के बीच में वो बातों बातों में हुआ प्यारा सा आभास, बातों बातों में हुआ प्यारा सा आभास, पाया है मैंने तुम्हें आया है उल्लास।
2: क्या बात,
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: और कहने को लाखों मगर ज्ञानी वही विशेष,
2: कहने को लाखों मगर
0: ज्ञानी वही विशेष, रंजे जिसमें ज्ञान की रहे पिपासा शेष।
2: बहुत अच्छा।
0: रंजे जिसमें ज्ञान की रहे पिपासा शेष।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
1: बहुत सुंदर।
0: धन्यवाद,
2: बहुत सुंदर,
0: बहुत शुक्रिया, शुक्रिया,
1: बहुत बढ़िया। अभी हम रंजे अत्रिशे की कविताओं से रूबरू हो रहे थे, और अब हम आमंत्रित करते हैं रचना पथिक जी को, जो एक व्यंग्यकार समीक्षक है। आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं एक गीत प्रस्तुत करती हूँ।
1: जी स्वागत है,
3: धन्यवाद। तुमको

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
1: बहुत अच्छा।
2: तुमको पाकर हम खुद को कितनी जल्दी ये बैरी जाने की

0: है, दिल का लगाना ठीक नहीं,
1: दिल का लगाना ठीक
0: नहीं, जमाना चाहे दिल का लगाना ठीक नहीं। सुनिएगा
2: जी।

0: प्रतीक्षा का हाँ पल पल बीज प्रतीक्षा का
1: जी
0: बुआए
1: बहुत बढ़िया ओह बहुत अच्छा बहुत बढ़िया
0: तुमको पाकर हम खुद को धन्यवाद
2: बहुत
1: बढ़िया
0: एक गीत से जोड़ती हूँ ये तो मैं सुनाती हूँ ऐसे गाकर ही सुनाती हूँ अभी मैं अब तो लगता है पता जैसे हमारा खो गया है अब तो लगता है पता जैसे हमारा खो गया है दिल तुम्हारा और तुम्हारा बस
2: तुम्हारा हो गया
3: क्या बात है
0: हार कर आना लगा है जीत सा हार कर आना लगा है जीत सा
3: क्या बात
0: प्राण में झंकृत हुआ संगीत सा
3: बहुत
0: आपको तो शौक गीतों का रहा हम भी देखो कह रहे कुछ प्रीत सा रेत में जैसे हरी सी दूब कोई बो गया है रेत में जैसे हरी सी दूब कोई
2: बो
0: गया है दिल तुम्हारा और तुम्हारा बस तुम्हारा हो
1: बहुत बढ़िया
3: बहुत खूब
2: बहुत
0: दीप का भी आज उद्दीपन प्रबल ज्योति की रेखा अमावस पर सबल चांद तारे सब हमारी गोद में प्रेम की तप भूमि है मन आज साधना से सिद्धि पाकर

0: एक योगी सो गया है, दिल तुम्हारा और तुम्हारा बस
1: तुम्हारा हो गया। बहुत अच्छे।
0: मौन से है मौन का अनुबंध अब,
2: क्या बात है,
0: बाँचते नैना मृदुल संबंध अब। रेखा अपने भाग्य की अब मिल गई, हो गई ध्वनि धड़कनों की छंद। मुख तुम्हारा आजकल प्रतिबिंब मेरा हो गया है, दिल तुम्हारा और तुम्हारा बस
2: तुम्हारा हो गया,
1: हो गया। बहुत अच्छे,
2: बहुत बढ़िया
0: तुम्हारा,
2: बहुत
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: धन्यवाद।
2: अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चंद्रकांता सिवाल चंद्रेश जी को। आप कवित्री हैं, अभिनेत्री हैं। चंद्रेश जी आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद रंजय अतरिशे जी, आज की ये काव्य गोष्ठी प्रेम को समर्पित विशेष और उसी माँ को याद करते हुए मेरे भाव विशेष
2: स्वागत है।
3: माँ

0: एक मुक्तक प्रेम विशेष स्वागत। प्रेम की अविरल बहेगी धार जब प्रेम की अविरल बहेगी धार जब खिलखिलाएगा सकल संसार।
1: बहुत बढ़िया।
0: प्रेम की अविरल बहेगी धार जब खिलखिलाएगा सकल संसार जब तब किसी मन में ना होगी कामना तब किसी मन में ना होगी कामना सत्य से हो जाओगे दो चार जब सत्य से हो जाओगे दो चार जब। और एक गजल

0: बहुत बढ़िया।
1: और माँ को ही समर्पित मेरे भाव विशेष, मेरी किताब माँ फूलों में जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, मैं उसी से माँ को समर्पित आज आकाशवाणी के माध्यम से ये अपने भाव विशेष समर्पित करती हूँ। माँ मेरी महतारी है, माँ मेरी महतारी है मुझको बेहद प्यारी है, माँ मेरी महतारी है मुझको बेहद प्यारी है, देख देख के दम भरती, देख देख के दम भरती सुंदर मुख बलिहारी है,
0: बहुत बढ़िया।
1: देख देख के दम भरती सुंदर मुख बलिहारी है, क्या बताऊं उसकी बातें,
0: क्या बताऊं उसकी,
1: क्या बताऊं उसकी बातें, हर एक बात ही न्यारी है, क्या बताऊं उसकी बातें, हर एक बात ही न्यारी है, जान लेती वो कोसों से, जान लेती वो कोसों से मुझ पे विपता भारी है, और माँ की ममता छाव घनी, माँ की ममता छाव घनी तन मन मुझ पे वारी है, माँ की ममता छाव घनी तन मन मुझ पे वारी है, और दोनों आलम में चंद्रेश,
0: क्या बात है,
1: दोनों आलम में चंद्रेश माँ ही दौलत प्यारी है,
0: बहुत बढ़िया,
1: माँ ही दौलत प्यारी है,
0: क्या बात है, क्या
1: माँ मेरी महतारी है मुझको बेहद प्यारी है,
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे, प्रतिभागी कवि थे श्री रंजय अत्रेशय, श्रीमती रचना सिंह, श्री चंदन कुमार सिंह और श्रीमती चंद्रकांता सिवाल। कवि गोष्ठी का संचालन कर रही थी श्रीमती चंद्रकांता सिवाल। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आपकी परछाइयां इस फिल्म से लिया हुआ गीत। आवाज थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, और इस गीत को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। श्रोताओं, बिल्कुल सही बात इस गीत में लिखी गई है, कही गई है कि आप भी अपनी जिंदगी को अपने ही अंदाज में जिएं। दुनिया वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह की बातें बनाएंगे, इस बात में बिल्कुल भी ना उलझें। अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को अपने अंदाज के साथ जिए। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं आसमां फिल्म से लिया गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना देवोजित और महालक्ष्मी की आवाज में ये गीत। चलिए श्रोताओं, चलते हैं। राहें खुद बन जाएंगी, चलना शुरू तो कीजिए। और राहें जब मिलेंगी तो धूप भी होगी और छांव भी, यानी जो अनुभव इन रास्तों पर मिलेंगे वो अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। लेकिन अनुभव जैसे भी हों, हमें परिपक्व बनाते हैं। तो आइए चलते हैं अनुभव की इन राहों पर, क्योंकि हमें रुकना नहीं है, सिर उठा के चलना है और ऊंचे आसमान की तरह सपनों को भी ऊंचाइयां देना है। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, कई बार ऐसा होता है ना कि मन करता है कि एक बार हम अपनी जिंदगी का रीस्टार्ट बटन दबाएं और फिर एक बार जीरो से शुरुआत कर दें। चलिए फिर जीरो पर चलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चलते चलते जब हम अपनी मंजिल को पा जाते हैं, अपने उद्देश्यों को पा लेते हैं, तो फिर मन करता है उसी दुनिया में लौट जाने का जो हमें मस्ती से भर देती है, वो यारों की यारी, वो दोस्तों की दोस्ती। और श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। थोड़ी देर की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का

0: आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो, एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परम्पराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई।

0: है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्डोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होमस्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों

0: की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लुटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयारज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई हैं। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of parliament beginning tomorrow. urges all political parties to ensure

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। सामने की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। आइए सुनते हैं बेगम अख्तर की आवाज में मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब और नवाब मिर्जा मुस्तफा खां शेफता की लिखी हुई गजलें।

और खेलों में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप के फाइनल मैच का दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास कल से शुरू हो जाएगा जो अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे जिन पर बहस मुबाहसा होगा। मानसून इजलास से पहले हुकूमत ने आज पार्लियामेंट हाउस की एनेक्सी में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के सरबराह जगत प्रकाश नड्डा, पार्लियामानी उमूर के वजराय मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुर्गन भी इस मीटिंग में शरीक हुए। अपना दल की रहनुमा अनुप्रिया पटेल, जेडीयू के रहनुमा संजय झा, टीडीपी के रहनुमा लवू श्री कृष्ण देवरा यालू, कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी रहनुमा धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट महुआ माझी और दीगर 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई अपोजिशन पार्टियों ने भारत की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर मीटिंग से अलामती वॉकआउट कर दिया। एनसीपीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी है जिसने हाल ही में मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में शिरकत की थी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ बागी अरकान पार्लियामेंट ने इसमें शमूलियत अख्तियार की थी। अलबत्ते ये अपोजिशन अरकान मुजाहरे के बाद मीटिंग में शरीक हो गए। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब किरण रिजिजू ने सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं पार्लियामेंट का कामकाज खुशअसलूबी से जारी रहे और वो अहम मामलात पर तामीरी बहस मुबाहसा करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजाय रखना अंदाजी के एक बामानी बहस जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए लाजमी है। टीएमसी की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी अपोजिशन पार्टियों ने इस मीटिंग से वॉकआउट किया। उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि एनसीपीआई कोई तस्लीमशुदा पार्लियामानी पार्टी नहीं है। राज्यसभा में अपोजिशन के नायब रहनुमा प्रमोद तिवारी ने एनसीपीआई को इस मीटिंग में मदऊ किए जाने के खिलाफ इस वॉकआउट को एक अलामती बाइकॉट करार दिया। एनसीपीआई के रहनुमा सुदीप बंदोपाध्याय ने अपोजिशन पार्टियों की इस कुल पार्टी मीटिंग के दौरान उनके एहतजाज पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल पार्लियामेंट के कामकाज से मुतालिक मुशावरती कमेटी बीएसी की मीटिंग तलब की है। मीटिंग में हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान जेर गौर आने वाले कानून साजी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब ओम बिरला ने तामीरी बहस मुबाहसा, बामानी शिरकत और पार्लियामानी रवायात की आला अकदार की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास के पेश नजर नई दिल्ली जिले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाजत न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि मजकूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की दफा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर के अलावा इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या उससे ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी आयद है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ओडिशा के साहिल पर 160 किलोमीटर से ज्यादा तवील रामेश्वर पारादीप शाहराह तामीर करेगी जिस पर 8000 करोड़ रूपये से ज्यादा की लागत आएगी। ये शाहराह खुर्दा, पुरी, केन्द्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगी जिससे रियासत के साहली इलाके में सकाफती, मजहबी, सियाहती और इकतसादी मकामात के माबैन बिला रुकावट राबता फराहम होगा। वजारत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से सड़क के बुनियादी ढांचे में बेहतरी और सियाहत और इकतसादी सरगर्मियों के फरोग की वजह से यकसर तब्दीली आ जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फानी बारिश की वजह से राजौरी और पुंछ जिले के सरहदी अजला में मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक सैलाब के वाकये में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए जबकि 7 दीगर लापता हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि सबसे ज्यादा हलाकत पुंछ जिले के सोरनकोट तहसील में हुई। मुसलसल बारिश और

0: खासतौर से इस गर्मी के मौसम में जो सबसे ज्यादा परेशानी का बाइस है वो है डिहाइड्रेशन। शदीद गर्मी की वजह से बदन में जो पानी का बैलेंस है, जो वाटर बैलेंस है, वो कम हो जाता है। तो मैं अक्सर बेशतर जो भी मरीज आते हैं मेरे पास, मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि इनटेक वाटर बहुत ज्यादा होना चाहिए
1: इस मौसम में।
0: हाँ, यानी कम से कम 5 लीटर्स वाटर इन ए डे। और इसमें जो सकील गजाएं हैं जो बड़ी मुश्किल से हजम होती हैं, उनको थोड़ा दरकिनार करें।
1: भारी खाना
0: कहते हैं देसी जबान में, आपने बिल्कुल सही कहा। और जो मौसम के एतबार से चीजें आती हैं उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर ने हमको मौसम के एतबार से जो चीजें दी हैं वो हमें इस्तेमाल करनी है।
1: अच्छा, उसमें डिहाइड्रेशन की वजह क्या क्या होती है?
0: पानी न पीना ज्यादा।
1: अच्छा, पानी न पीना एक तो बड़ी वजह।
0: और बहुत ज्यादा धूप या लू में घूमना। ग्लूकोज लेते रहे, इसमें नींबू पानी लेते रहे। और जैसा मैंने अर्ज किया कि मौसम के एतबार से जो चीजें कुदरत ने हमको अता की हैं वो नहीं जरूरी है।
1: अच्छा, एक चीज और भी है कि जो आपने डिहाइड्रेशन के बारे में बताया कि पानी की कमी होना, इसको आम जबान में ही कहते हैं।
0: जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ।
1: तो इसके लिए घरेलू कोई नुस्खा भी होता है या फिर इसका ग्लूकोज या नींबू पानी इलाज है?
0: घरेलू नुस्खा बहुत शानदार, इसमें आम का पन्ना बहुत मुफीद है। अगर आप घर में तो आम का पन्ना इस्तेमाल कीजिए और चीनी और नमक का घोल इस्तेमाल करें।
1: सबसे आसान तो ये है।
0: हाँ, मगर उसमें भी एक आजकल दुश्वारी पेश आ रही है कि डायबिटिक बहुत है लोग, हर चौथे पांचवें आदमी को है, तो उसमें हम मना करते हैं चीनी न लें। और या किसी को बीपी है तो नमक को भी मना किया जाता है। तो उसमें यह है कि सादा पानी आप पीते रहे मुस्तकिल,
1: सबसे अच्छा इलाज
0: ये, सबसे बेहतर तरीका ये है। हर बार
1: चलिए, बहुत अहम बीमारी होगी डिहाइड्रेशन की, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है?
0: इनडाइजेशन होता है इसमें।
1: अच्छा।
0: हाँ, गर्मियों के मौसम में चूंकि रातें इसमें छोटी होती हैं और दिन लंबे होते हैं, और दिन में शदीद गर्मी की वजह से या लू की वजह से कई बार इनडाइजेशन हो जाता है, तो खाना हमें ठीक से हजम नहीं होता। तो उसके लिए है कि एतदाल थोड़ा सा बरतें खाने में। और मैं अपने मरीजों को बताया करता हूं कि 8:30-5:00, यानी 8 बजे नाश्ता, 1:30 बजे खाना, 5 बजे कोई मौसम का फल, और रात का खाना 8 बजे, और रात के खाने के बाद कम से कम 1/2 किलोमीटर जरूर घूम कर आए। चूंकि हमारा तर्ज जिंदगी बदल गया है बड़े शहरों में, कुछ पता नहीं, कभी 11 बजे खाना है रात में खाना, कभी 10 बजे।
1: बहुत लंबी हो गई है।
0: जो लोग सिटी का काम करते हैं या बैठे रहने का काम करते रहे, उनके लिए मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। जो सुबह की सैर है वो सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो उसको एक अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें कि यू हैव टू वॉक, वो तो आपको जरूर करना है
1: मॉर्निंग में।
0: हाँ, चूंकि 3 चीजें एक अच्छी सेहत की जामिन है, सुबह की सैर, मुतवाज़न ग़िज़ा और साउंड स्लीप।
1: तो इंडाइजेशन हो सकता है, बदहजमी हो सकती है।
0: हाँ, बिल्कुल हो सकती है बदहजमी, बिल्कुल आपने सही कहा।
1: चलिए हम बात करेंगे बदहजमी के हवाले से। ठीक है, आप कह रहे हैं मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए और पानी पीना चाहिए सब चीज, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को बदहजमी हो जाए तो एक तो फर्स्ट एड के तौर पर उसको क्या करना चाहिए?
0: किस किस्म की बदहजमी हुई है?
1: अच्छा,
0: वोमिटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं लूज मोशंस तो नहीं है, या पेट में तकलीफ तो नहीं है? उसको मद्देनजर रखते हुए हम दवाओं को तजवीज करते हैं। और घरेलू नुस्खों में जैसे इलायची का पानी बहुत मुफीद है। जी हाँ, जी हाँ, उसको थोड़ा बॉयल कीजिए।
1: सरकारी इलायची कहती
0: है। जी जी जी जी, आप वो इस्तेमाल कीजिए और कोशिश करें कि खाली पेट हो जाएं।
1: अच्छा,
0: कुछ न खाएं,
1: 1-1.5 घंटे।
0: हाँ, लिक्विड डाइट लेते रहें। लिक्विड डाइट में जैसे मैंने अर्ज किया ग्लूकोज है या शरबत है, जो मशरूम गजाएं हैं उनका इस्तेमाल करें। और अगर लूज मोशन है तो उसके लिए एक हब्बे जहीर आती है, वो इस्तेमाल कर लें। और अगर पेट में कोई तकलीफ है तो बहुत सारी हमारी जवारिश है, जैसे जवारिश कमोनी है, जवारिश शाही है, इस किस्म की दवाएं हम मरीजों को देते हैं।
1: तो ये दवाई फर्स्ट एड के तौर पर ली जा सकती है?
0: हाँ, फर्स्ट एड के तौर पर बिल्कुल रखनी चाहिए लोगों को, इस तरह की चीजें तो आजकल। और अच्छी बात यह है कि यूनानी तरीका इलाज में कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, एक जो प्लस पॉइंट है। जो हॉस्पिटल में हमारे मरीज आते हैं तो वो ज्यादातर यही सोचकर आते हैं कि इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
1: अच्छा, मौसम कोई भी हो सबसे ज्यादा मुतासिर होती है हमारी स्किन।
0: सूरज जो डायरेक्ट स्किन पर पड़ता है ना, तो वो बहुत मुजिर साबित होता है, खासतौर से गर्मी का सूरज, जो गर्मी में बहुत तपिश होती है। तो उसके लिए ऐसा करें, चेहरा छुपा लें।
1: अच्छा।
0: हाँ, जितने भी पेशेंट्स आते हैं मैं सबको ये कहता हूँ कि बेटा जब भी आप धूप में निकले ना, सन क्रीम की जरूरत ही नहीं पेश आएगी, और घर में जाके अर्क गुलाब से आप चेहरा साफ कीजिए अपना, वो ज्यादा बेहतर है।
1: गुलाब डायरेक्ट या पानी में मिला के?
0: नहीं, अर्क गुलाब ऐसे आप मसाज कीजिए, उसके बाद आप वॉश कर दीजिए, आपकी जिल्द हमेशा तरोताजा रहेगी, अच्छी रहेगी, अगर आप मशरूम गजाएं इस्तेमाल कर रहे हैं गर्मी के मौसम में तो। वो
2: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر عمران کی زبانی اور بیماریوں کا یونانی علاج. میرے ساتھ پروگرام ہیلٹپس اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام مارکیٹ منترا.
3: اب سنیے آج شام 6:30 بجے پرسارت مارکیٹ منترا کارکرم کا پنہ پرسارن.

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund related queries. But do remember, we do not address stock or company specific queries. To connect with us, you can call us on 2331 4444, 2331 0481, and 2371 7106, and of course do prefix the code 011. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor Subodh Mishra.
1: Dhanyavad Sarabjeet, aur namaskar shrotao. Karwari khabron ke sath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: थैंक यू.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: Foreign portfolio investors infuse nearly 12,000 crore rupees into Indian equities so far in July. In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week, and domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week.
1: Videshi portfolio niveshakon ne July mein ab tak bhartiya share bazar mein lagbhag 12,000 crore rupees ka nivesh किया. सराफा बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक गतिविधियों पर.
0: Listeners, before we go any further in the program, may we once again remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले खबरों पर नजर डालते हैं. सरबजीत, देखें आज क्या हाल रहा है इस हफ्ते एफपीआई का. लगातार चार महीने की बिकवाली का दबाव बनाए रखने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई ने जुलाई में लिवाली की है. इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में उन्होंने 11,897 करोड़ रुपए का निवेश किया है. सेमीकंडक्टर के वैश्विक व्यापार में कमजोरी से एफपीआई फिर से उभरते हुए बाजारों का रुख कर रहे हैं. देश के बेहतर आर्थिक संकेतकों और तिमाही आमदनी की अच्छी खबरों से विदेशी निवेशकों में उत्साह है. लेकिन अगर पिछले सप्ताह के आंकड़ों पर गौर करें तो एफपीआई ने भारतीय शेयरों से 3,260 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं. सरकार की टैक्स नीति में बदलाव के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगातार दिलचस्पी दिखाई है. जुलाई में अब तक उन्होंने एफएआर के जरिए 7,492 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 4,480 करोड़ रुपए का निवेश किया है.
0: और गुरुग्राम से कांता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. कांता जी, स्वागत है आपका. सवाल पूछे. जी,
3: मैं ये पूछ सकती हूँ मैडम.
1: जी, सवाल पूछो. जी,
3: मैं सकती हूँ कि जो ईपीएफ होता है

0: CPF में निवेश करना बैंक में कितना सुरक्षित है? बैंक जैसे पोस्ट ऑफिस में तो पैसा मरता नहीं कभी, और बैंक में का कोई पता नहीं होता, तो मैंने बैंक में CPF खोला, वो कितना सुरक्षित है?
1: PPF में पैसा कितना सुरक्षित है?
2: कांता जी, PPF क्योंकि एक गवर्नमेंट की स्कीम है और ये फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और ये काफी लंबे 15 साल के लिए आप अपना पैसा यहां डालते हैं। यहां पर भी एक तरीके की कंपाउंडिंग होती है कि आप जो डालते हैं उस पर आपको एक इंटरेस्ट मिलता है और फिर वो इंटरेस्ट जुड़ के आपके उस टोटल अमाउंट पे आपको एक तरीके का ब्याज है जो मिलता रहता है। तो इसकी सुरक्षा जितनी भी स्कीम्स एग्जिस्ट करती है उनसे काफी ऊपर है। तो आप बिल्कुल इसमें अगर निवेश कर रहे हैं तो बिना इस चिंता के आप बिल्कुल अपना निवेश जारी रख सकते हैं
1: जी। अब जब PPF की बात आती है तो कई बार लोग पूछते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से कि PPF कितना शेयर रखें, और खासकर जब पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें इसके फायदे दिखते थे, क्या बदले हुए हालात में इसका क्या सीन है, क्या रखना चाहिए?
2: एक बात तो ये है कि अगर आप पहले के समय में रख रहे थे तो क्योंकि एक लंबे टाइम के लॉक इन के साथ आता है तो वो रहेंगे ही उसमें, बट देखना इस प्रकार से चाहिए कि हमें इक्विटी और डेट में अपनी एलोकेशन कितनी रखनी है। अगर आप डेट में लंबे समय के लिए कोई एलोकेशन रखना चाह रहे हैं तो PPF एक्चुअली काफी अच्छा विकल्प हो जाता है, क्योंकि उसमें आप ये जो एक सेफ्टी की बात अभी हम कांता जी से डिस्कस कर रहे थे वो भी एक लेवल अप रहती है, और क्योंकि जितना इंटरेस्ट इसमें आज आपको मिल रहा है ये काफी अच्छा इंटरेस्ट है, वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है, जो कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में लोग चाह रहे होते हैं कि मिल जाए। और फिर इंडिया हैज लॉन्ग बीन अ फिक्स डिपॉजिट वाली एक मार्केट रही है, तो गारंटी से हमें काफी प्यार है, तो ये वो हमें ऑफर करती है। तो हम अगर डेट एलोकेशन लंबे समय के लिए रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसमें रख सकते हैं
1: जी। हमारे कॉलर हैं गाजियाबाद से अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
3: हेलो मार्केट, दिस इज अमित। सो माय क्वेश्चन इज लाइक आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एज अ सैलरी इनकम, एंड माय मदर इज आल्सो गेटिंग पेंशन, सो आई विल ट्रांसफर माय म्यूचुअल फंड्स टू माय मदर, एंड व्हेन आई एम फाइलिंग माय इनकम टैक्स रिटर्न इन अ न्यू रेजिम बोथ फॉर मायसेल्फ एंड माय मदर, so it is showing like of rupees around 10 lakhs and under the off market transaction credit in EIS and KIS statements, so I want to know whether I have to pay any tax or how the tax calculation will be done while filing this return for me and for my mother, I transferred the mutual funds।
1: मुझे लगता है स्नेहा कि ये म्यूचुअल फंड से ज्यादा इनकम टैक्स का सवाल है, और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इस पर बेहतर सलाह ले पाएंगे।
4: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम हैदराबाद। सौरभ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
4: गुड इवनिंग।
5: माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड रीबैलेंसिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क that let's say on 1st of August I have to rebalance for the yearly rebalancing. So in one of my let's say asset that is the mid cap or small cap, I have now more than my stipulated percentage. So for the next year, should I immediately sell off that thing, or I should reduce my SIP for the next year in that mid cap or small cap? Thank you.
2: So Saurav, it's great actually that you're giving a holistic view to your portfolio annually, so kudos on that. On the aspect regarding your mid and small cap have turned heavier as per your targeted allocation, what you can also do is at this point, let's say if you're looking at rebalancing and you have some debt allocation in your portfolio, maybe you can increase that a bit and eventually it should settle out, because if your funds are doing reasonably well, they have been, let's say, generating healthy returns for you, then there is no point of selling it just for the rebalancing aspect. How

0: The other way of looking at it would be increasing, let's say, your debt allocation to some extent, and yeah, that should be helpful.
1: अगले कॉलर के पास चले सरबजीत
2: जी. चेन्नई काशीनाथ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
3: गुड इवनिंग मैडम.
2: गुड इवनिंग.
3: मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पास एक स्मॉल कैप है, टाटा स्मॉल कैप, और दो फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेएम फ्लेक्सी कैप. इस तीनों फंड के बारे में क्या अच्छा है, इस पर बने रहना चाहिए? हर फंड में 2-2 हजार जा रहा है, ये क्या अच्छा है, इसकी अच्छा जानकारी चाहिए. धन्यवाद.
0: तो जो आपने पोर्टफोलियो बताया कि आप 2 स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं और 1 फ्लेक्सी कैप में, इस लिहाज से मुझे लगता है कि आपका स्मॉल कैप एलोकेशन थोड़ा ज्यादा रह सकता है, सिंस आप इक्वल अमाउंट इन तीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो ज्यादा बेहतर रहता है कि स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो का एक थोड़ा छोटा हिस्सा रहे, बहुत ज्यादा ओवर पार ना कर ले. क्योंकि होता क्या है, लंबे समय में ये देखा गया है कि बीच बीच में स्मॉल कैप जब मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप में जो फॉल होती है वो काफी ज्यादा होती है. तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ऐसे करें कि अगर आप स्मॉल कैप में जो एलोकेशन कर रहे हैं इसके साथ साथ आप एक और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर लें, ताकि जो आपका एक पोर्टफोलियो का होलिस्टिक व्यू है वो थोड़ा बैलेंस हो पाए. बस इतना इंश्योर करना कि जब वो उतार चढ़ाव हो रहा है स्मॉल कैप में, तब आप डरे नहीं, आप अपनी एसआईपीज को कंटिन्यूड रखें. क्योंकि वही लंबे समय में आपको एक ही स्ट्रैटेजी होती है जो आपको आपका रिटर्न, आपका कमाई का मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकती है. तो आप देखिए, अगर आप एक और फ्लेक्सी कैप में आपके पास सरप्लस है तो एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए.
1: जी, दिल्ली से आकाश जुड़ गए हैं. आकाश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे. आकाश से हमारा संपर्क टूट गया है. अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं सरबजीत.
2: यस, आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम फरीदाबाद. सुभाष जी, सवाल पूछे.
4: नमस्कार सर.
2: जी नमस्कार.
4: मैडम, अभी आप बता रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर अभी इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो मैं ये जानना चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ उनको इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया है क्या, जैसे डेट फंड में उनका टैक्स रिबेट कर दिया था, ऐसा ही कोई इक्विटी फंड में भी दिया है? और दूसरा ये है कि वो कौन सी स्कीम में इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर, ये कुछ पता चल सकता है?
1: जिस खबर की बात कर रहे हैं, मैं वो साफ कर दूं कि वो इक्विटी फंड नहीं है, उन्होंने भारत के शेयर बाजार में निवेश किया है, और डेट फंड में भी नहीं है, वो डेट मार्केट में है, वो भारत के पूंजी बाजार का ही हिस्सा है. तो मुझे लगता है ये जवाब काफी होगा हमारे श्रोता के लिए. अगले कॉलर के पास चले हम.
2: यस, लेट्स कनेक्ट विद आकाश फ्रॉम दिल्ली.
5: हेलो दोस्तों.
1: जी आकाश,
5: मुझे दो बातें पूछनी है. ये पूछना है कि जैसे सूचक के बारे में हम ब्रांच में जाते हैं तो वो अपने एजेंट के द्वारा हमें कुछ चीजें बताते हैं, तो वहाँ कंफ्यूजन रहता है, वो अपनी ही कंपनियों के बारे में ज्यादा हमें राय देंगे. और क्योंकि हम लोग की एफडी है, तो हम लोग एक राय ये लेना चाहूंगा एफडी के बारे में कि हम एक साल के बाद मैच्योरिटी के बाद ही लें तो ज्यादा बेनिफिट है, या हम हर महीने या 3 महीने बाद अपना से बनाए? क्योंकि वो कहते हैं कि आप मैच्योरिटी के बाद लेंगे तो आपको एक साल के बाद कंपाउंड ब्याज मिलेगा. कंपाउंड ब्याज तो हम वो समझे ना, चक्रवर्ती ब्याज या इसके ऊपर ब्याज. और साथ में एक्सपर्ट आते हैं आप लोग, कहीं आपका ऑफिस भी होता है जहाँ आप लोग आम आदमी टेक्निशियन रूम में जाना चाहता है, आपसे राय लेना चाहता है, क्योंकि आप आकाशवाणी में आते हैं तो आपका विश्वास ज्यादा बना जाता है. धन्यवाद.
0: आकाश जी, आपकी वॉइस में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, जितना मैं समझ पाई हूँ आप कहना चाह रहे हैं जब आप बैंक में म्यूचुअल फंड्स बाय करने जाते हैं तो वो आपको अपनी ही कंपनी के फंड्स सजेस्ट.
1: जी ऐसा अक्सर होता है.
0: हाँ बिल्कुल, ऐसा अक्सर होता है. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च जो हम कर सकते हैं वो करके जानी चाहिए. जब आपको आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है, जब आप इतना समझ पाते हैं कि अगर आपको 5 साल से ज्यादा के लिए करना है तो आप इक्विटी फंड्स देखना चाहेंगे, तो आप उनमें चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा जो जिसका खर्चा कम है, जिसने मार्केट के उतार चढ़ाव लंबे समय में देखे हुए हैं और उनसे आपको एक हेल्दी रिटर्न जनरेशन रही है. पर लंबे समय में, छोटे समय में नहीं, एक साल में कोई अच्छा बुरा कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट ही लॉन्ग टर्म, एक तरीके की लॉन्ग टर्म जनरेशन.

0: वेल्थ जेनरेशन के लिए है। अगर आपका गोल 3 साल से कम के लिए है तो हम डेट फंड्स देखेंगे। अगर आप पहली दफा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम हाइब्रिड फंड्स देखेंगे। इतना भी अगर हम समझ के जाते हैं तो जब कोई हमें गलत चीज बेच रहा होता है या जो हम नहीं चाहते हैं वो बेच रहा होता है, वी कैन ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चंस। जब हम सवाल करते हैं तो फिर हमें जवाब सामने वाला जिस तरीके से दे रहा होता है उसमें हम एक इन्वॉल्वमेंट रह पाती है, और क्योंकि सामने वाला ये समझता है कि वो काफी नॉलेजेबल है, वो आपको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट अगर आप खुद से कुछ फंड्स का चुनाव करके जाते हैं और आप उन्हें बोले कि आपको इन्हीं में करना है, तो मतलब मैं कहना ये चाह रही हूं कि आप अपना स्टैंड रखिए और आप फिर इन्वेस्ट करिए। और अगर बैंक के थ्रू आप नहीं कर पाते हैं तो, और आप अगर मान लीजिए डिजिटली आप काफी सोफेस्टिकेटेड हैं, तो आप AMCs के वेबसाइट पे जाकर, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाकर फंड का चुनाव कर सकते हैं जो आपको जिसमें इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो जो आपको बेच रहे हैं आप उसी में निवेश कीजिए। दूसरा जो आपने बोला कि FD 1 साल की लेनी चाहिए या ज्यादा की लेनी चाहिए, मेरी समझ में अगर आप इफ एट ऑल फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे देखती हूं कि जो आपका जितने समय का गोल है आप उतने समय के लिए वो वाले टेन्योर की FD लें। क्योंकि होता क्या है कि अगर वो मान लीजिए आपका मैच्योर होता है, वो वापस आता है आप, और उसी समय जिंदगी में कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आ जाता है जहां पे आपको लगता है अच्छा यही इस्तेमाल करके अपना वो कंज्यूम कर लेते हैं पैसे, तो मतलब जब मैं सोचती हूँ इन्वेस्टमेंट का तो मुझे लगता है कि गोल के साथ अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं तो एक बेटर वैल्यू मिल पाती है आगे जाकर, और जो इंटरमिटेंटली हम कंज्यूम कर लेते हैं उसका डर खत्म हो जाता है।
1: अगले कॉलर है दिल्ली से दिनेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
2: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से। मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ। एक तो यह है कि मित्रों ने जो एक्सपेंस रेशो होता है, जो मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, चाहे कैसा भी परफॉर्म करे फंड मैनेजर को अपने चार्जेस मिल जाते हैं। ऐसा क्या नहीं होना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो मैनेजर को बेटर चार्जेस मिले, और अगर इंडस्ट्री से एवरेज से कम परफॉर्म किया है तो वो कम चार्जेस लेकर बाकी चार्जेस NAV में ऐड कर सके। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में से किसमें इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। थैंक यू
0: जी। दिनेश जी, आपका जो पहला सवाल है ये जब भी मार्केट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती है तब बिल्कुल जो लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनके दिमाग में ये आता है। और हाल फिलहाल में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस की बात करी थी, जिसका बिल्कुल यही माध्यम था कि जब कोई फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो मतलब इन्वेस्टर को उसमें रहने का एक फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर मैनेजमेंट को भी उसका जो प्रोपोर्शन है जो एक एक्सपेंस के तौर पे मिलता है वो उसी रिलेटिवली टू द परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, तो कम ज्यादा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको मिले। बट इस पे अभी ये बस एक सर्क्यूलर है, इस पे कुछ और डेवलपमेंट नहीं हुई है। AMCs ने अभी इसको इनेबल नहीं करा है या फिर इस पे क्या थिंकिंग चल रही है ये सब, मतलब अभी टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा तभी हमें पता चलेगा। बट हाँ, ये बात जरूर है कि दिनेश जी, सुना है ये सेबी ने, रेगुलेटर ने, देखते हैं इसके आगे होता क्या है। एक बात मैं यहां ये कहना चाहूंगी कि माना वो एक्सपेंस ले लेते हैं, बट इसकी वजह से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो हम जारी रख रहे हैं उसको पॉज या स्टॉप नहीं करना चाहिए। हमारा नजरिया ये रहना चाहिए कि अगर कुछ 3 साल तक या फिर मतलब वो परफॉर्मेंस आपको उतना नहीं बेनिफिट दे रही है तो आप बिल्कुल उसमें अपनी SIPs पॉज करके एक दूसरे फंड को देखिए। बट छोटे समय में इस तरीके की थॉट से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे पॉज ना लगाइए। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि गोल्ड ETFs और सिल्वर ETFs में से किसका चुनाव करना चाहिए, तो बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा एक्सपोजर है कि आपको मेटल में एक्सपोजर लेना है, समथिंग बियॉन्ड इक्विटी, जो इक्विटी के उतार चढ़ाव के साथ आपको एक तरीके का बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गोल्ड का जितना हिस्ट्री देखी गई है वो इतना ये प्रोवाइड कर पाता है, प्लस गोल्ड ETFs ज्यादा पुराने हैं और ज्यादा वेराइटी अवेलेबल है मार्केट में उनकी, तो आप चुनाव किसी का भी कर सकते हैं। बट गोल्ड की हिस्ट्री क्योंकि ज्यादा है तो उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, जिसको आप जब आप खरीद बेच करते हैं मार्केट में, तो शायद एक बेटर निवेश वो रह सकता है, बट इंश्योर बस ये करना है कि मेटल में जब आप एक

0: इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपोजर 10% से ज्यादा ना रहे आपके पोर्टफोलियो का.
1: ऑल राइट, आवर नेक्स्ट कॉलर इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली. योगेश जी, सवाल पूछे.
2: जी नमस्कार अखिल को, मेरा सवाल ये कि आईसीआईसी का मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि उसके लिक्विड फंड में हमें जो पैसे आ रहे थे तो उसमें विड्रॉ करने पे 7 डेज के अंदर हम विड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी का चार्जेस था, जबकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में और शॉर्ट टर्म फंड में आप डालने के अगले दिन भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है सर, जबकि उसका जो मैकाली ड्यूरेशन है वो ज्यादा का है. तो ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड फंड में ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए बट उसमें 7 डेज का लॉक इन है? और दूसरा सवाल है कि भारत 20 फंड ऑफ फंड
0: जी योगेश जी, कुछ समय पहले सेबी ने ये नोट करा था कि लिक्विड फंड्स में मतलब एक एग्जिट लोड की काफी जरूरत थी क्योंकि लोग बीच में डाल के जल्दी निकाल रहे थे, और लिक्विड फंड एक ऐसा माध्यम है जहां पे जो बड़ी कंपनीज के ट्रेजरीज होते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि हर एक क्वार्टर के एंड में बहुत ज्यादा पैसा लिक्विड फंड से या तो निकलता है और एक क्वार्टर के बाद वापस आ जाता है. तो ये होता है इस वजह से कि बड़े ट्रेजरी कॉरपोरेट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपने एडवांस टैक्स पेमेंट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जब वो एक दिन पहले डालते ही निकाल लेते हैं तो एक इम्पैक्ट ऐसा हो जाता है कि उन्होंने तो पैसे निकाल लिए पर उनपे कोई चार्ज नहीं लगा कम समय की इन्वेस्टमेंट के लिए. तो चीजों को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए सेबी ने ये इंट्रोड्यूस करा था कि 7 दिन के लिए एक बहुत ही मामूली सा एग्जिट लोड लगेगा, बट जब ये बड़े अमाउंट पे लगता है तो वहां पे वो खर्चा ज्यादा लगता है. और बाकी आपने सही नोटिस करा है कि बाकी के डेट फंड में ऐसा कोई एग्जिट लोड का स्पेसिफिकली कोई ड्यूरेशन या फिर ऐसा नहीं है कि आपके पास वहां अप्लाई होता है, जनरली डेट फंड्स में नहीं होता है, लिक्विड में ये इंट्रोड्यूस करा गया था स्पेसिफिकली. तो बट इन एनी केस हम जब लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना इंश्योर कर सकते हैं कि इतने कम समय के लिए ना करें तो हमारा फायदा रहेगा.
3: जी हम देखते हैं सोने चांदी का क्या हाल रहा है. सराफा बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई, मजबूत अमरीकी डॉलर, ट्रेजरी यील्ड्स में बढ़ोतरी, और इस आशंका से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया कि अगर पश्चिम एशिया में टकराव बढ़ता है तो अमरीकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाएगा. एमसीएक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.8% की गिरावट आई और ये 1,40,906 रूपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 3% गिरकर 2,16,013 रूपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.3% की गिरावट आई और ये $4,018.80 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ. इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.4% गिरकर $56.33 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुई.
0: मैं योगेश जी को एक ये चीज भी बताना चाहूंगी, ये जब एग्जिट लोड लगाया गया था उसका एक ये भी रीजन था टू इनकरेज जो ये कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स, मैं आपको बता रही हूं कि ये ओवरनाइट फंड में लगाएं लिक्विड के बियॉन्ड, बिकॉज ओवरनाइट इन एनी केस एक दिन के पेपर में इन्वेस्ट करते हैं जिसके लिए वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं जो कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स हैं, तो ये भी एक रीजन था वहां पे.
1: ऑल राइट, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम जयपुर. जितेंद्र जी सवाल पूछे.
4: हाँ मैडम, देखिए मेरा दो सवाल है. जैसे अभी तो वैसे मार्केट डाउन है तो कोई नया फंड हाउस कोई नया फंड लेके आया है तो अब तो उसका एंट्री जो है बहुत नीचे लेवल पे रहेगा, तो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? नया फंड हाउस है और नया स्कीम है तो डाउन है मार्केट, पहला प्रश्न यही है. दूसरा प्रश्न है कि मैडम अब पिछले एक साल से एक सिस्टम निकल गया कि हम अपना यूनिट जो है गिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने अप्लाई किया और मैं ऐसा कर भी पाया, बहुत ईजी था, तो ऐसा क्या डीमैट में भी है क्या?
0: जी जितेंद्र जी, जो आपका पहला सवाल है कि नया फंड आ रहा है, मार्केट डाउन है, नीचे से स्टार्ट होगा, इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगी जब भी कोई नया फंड आता है तो सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या ये कुछ ऐसा एक्सपोजर दे रहा है जिसमें मेरे और पोर्टफोलियो में इसका एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, एज इन इसमें कुछ ऐसी यूनिक बात है टू ऑफर टू यू कि ये आप चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो फिर उससे क्या होगा कि आप कोई और वजह देखेंगे ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए. दूसरा, कुछ अगर ऐसा थीम आ रहा है जिसमें आपका जो एक बिलीफ होता है वो आपका काफी ज्यादा है, आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा एक्सपोजर हो, आपको लगता है कि ये स्टॉक ये जो थीम है वो आपको आगे

0: आपके बेनिफिट देगा, तो बिल्कुल आप फिर उसमें इन्वेस्ट करिए। ये दो रीजंस अगर आपके इसमें टिक होता है कोई, ये जो नया फंड आ रहा है उसका बॉक्स, तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बेझिझक करिए, क्योंकि आप लंबे समय के लिए करेंगे तो जो आपका एंट्री पॉइंट है वो उस तरीके से मैटर नहीं करता। एसआईपीस के थ्रू आप एम करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा लंबे समय में।
1: जी आगे कॉलर है भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
2: नमस्ते मैडम, नमस्ते माकिन मद्रा किंग। मैडम मेरा सवाल है, ये करंट सिनेरियो में जब रिटर्न सारे टेपर होते जा रहे हैं इन एक्टिव फंड एंड स्मॉल और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, तो क्या वुड यू एडवाइस फॉर करंट एसआईपी जो हम लोग शुरू कर रहे हैं जो चल रही है टू स्विच टू एन इंडेक्स फंड, और एक्टिव फंड वुड स्टिल बी ए बेटर बेट फॉर लॉन्ग टर्म 5 साल प्लस एटीएम और एसआईपी से 10,000 की या 15,000 की जो एसआईपी चल रही है, आपकी एज एन एक्सपर्ट वट वुड बी एडवाइस एन एक्टिव फंड मैनेज फंड और एन इंडेक्स फंड फॉर लॉन्ग फाइट।
0: सो शंकर, द डिबेट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड्स डज नॉट रियली स्टैंड अप ऑन द करंट मार्केट सिनेरियो। इट एक्चुअली इवॉल्व्स ऑन द फैक्ट दैट लेट्स से इफ यू आर समबडी हु इज नॉट ओके विद एक्टिव मैनेजमेंट, और लेट्स से यू डू नॉट बिलीव दैट अ फंड मैनेजर विल बी एबल टू डू जस्टिस टू यू एंड दस द फीस ऑल्सो यू वुड नॉट लाइक टू पे, देन द पैसिव फंड मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स योर डी फैक्टो चॉइस। अदर देन दैट, लेट्स से फॉर समबडी हु डज नॉट रियली हैव any experience in the market, he or she can simply start with a passive fund. So if you are already invested in either passive or active, I would say this is not really any reason to stop those and move on to different fund or a different management strategy. The issue being that, of course, in large and mid cap passives have, especially in large caps, passives have taken over, but there are a few funds who are able to beat the index as well, and if you are investing in those, then you might as well continue. Same goes for mid cap, and in small cap, passive really has a long way to, you know, beat active management, so there also active works best.
3: Let's ask our next caller from Ghaziabad. Ashu ji, sawal poochhe.
4: Yeah, very good evening. Actually, I wanted to know the prospects of Invesco Quanta Fund, and if it is good to invest for Invesco Quanta Mutual Funds in the current market situation. The second one is Mirae Large Cap and Mid Cap. What are the prospects? And I have some points in that particular fund, so should I redeem it or should I continue investing?
0: Right. So how I would say, the prospects can never be judged at this point in time. It is always in hindsight that you would get to know about it. How you can look at it is, if you're looking to build the core of your portfolio, of course Quantra fits there. And for the supplementary allocation, a mid cap or a small cap allocation fits well. All of these funds have been decent enough to continue your SIP in. In case you need you know, any other kind of exposure, let's say a small cap or multi cap can be included in the portfolio.
3: All right, listeners, let's now take a look at how the markets are expected to show up next week. The domestic markets are expected to take cues from the first quarter corporate earnings results, geopolitical developments, commodity prices, foreign investor activity, progress in monsoon, and currency trends in the upcoming week. Market participants will closely monitor key economic indicators, including core industry data, purchasing managers' index readings, and foreign exchange reserve figures. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week, with three main board IPOs scheduled for listing.
1: आज वक्त इतना ही है स्नेहा, कार्यक्रम में आने और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
5: सामने अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। सामने की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम की पहली पेशकश, आप सबकी पसंद, आप सबकी नजर।

आप सुन रहे थे बैंक मैनेजर फिल्म से ये नगमा आशा भोसले की आवाज में, जिसके मौसिकार थे मदन मोहन। हाजिर इस प्रोग्राम के अगली पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसको सुना चाहे रमेश नचानी, विनीत नचानी और मिथिल नचानी ने उदयपुर से। सुनना चाहते हैं यार मोहम्मद खान निंदवानी, मीर हसन निंदवानी, साकिब हुसैन निंदवानी टंगवानी से। फातिमा मंसूरी और फहीम मंसूरी बांदा उत्तर प्रदेश से सुनना चाहते हैं, और आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी खंडवा मध्य प्रदेश से सुनना चाहते हैं। ताजी मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से सुनना चाहते हैं। शब्बीर हुसैन, शहदाद हुसैन, मज्जू बाबा बुल्दाना से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। संदीप डावेराव, रसिका डावेराव और कौस्तुभ डावेराव अकोट से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर और इशिता साहनी। बरगाना से नाजनी तबस्सुम अफजल इब्राहिम और इफ्तिखार इब्राहिम सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं संतोष अस्कले, तेजस अस्कले और लोकेश महाराष्ट्र से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत और निखिल, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशोर छुपाकुर झारखंड से सुनना चाहते हैं, और अनुपम कुमारी, पूर्व सिंह, राकेश कुमार जमशेदपुर से सुनना चाहते हैं। पवन गौड़, तनमय पूर्वी गौड़, सुरेश आशीष गौड़ कासगंज से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और शाजी भोटके, नंदा भोटके, उत्तम जमधाड़े हिंगोली महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मनमोहन जवाहर, मधुर जवाहर, राशि रक्षी शाहजहापुर मध्य प्रदेश से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मनोज सेन, पूनम सेन और दीपक सोम्या खंडवा से। अनंत भगत, रुणा भगत, लोशना भगत मस्तानपुरा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनने चाहते हैं अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिहा रिहान सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। हर्ष रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आयजल इमाम, हसन इमाम, सैयद शमा, परवीन, भुवनेश्वर, बिसानपुर, गिरडी झारखंड से, और अनिल कुमार वर्मा, मायादेवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा कुरावली से सुनना चाहते हैं।

मैंने भी आप सुन रहे थे मौसीकार रवि का ये नगमा महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में गुमराह फिल्म से, जिसके नगमानिगार थे साहिल धनवी। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश, उससे पहले जानते हैं ये फरमाइश कहां से आई थी हमारे पास। बलरामपुर मुंबई से सुनना चाहता प्रणीता गोहानकर, सिद्धार्थ गोहानकर और टुक टुक गोहानकर ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे तलत जहानाज, फरत जहानाज, मुसरत जहानाज, सीतामढ़ी बिहार से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे मलकापुर से रमेश्वर तालेकर, वंदना तालेकर और दिव्या हर्ष तालेकर। मोहम्मद रुद्दीन बंटाल, शबीर बनट्टे, आसिफ इकबाल, कर्नाटक गुलबर्गा से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाहता मोहम्मद यासिर अंजान ने साइमन आवाज गेडी झारखंड से। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिर नासिर, साजिद शाहिद सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाहता कल्याण मल्लिका, जिला भटिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह रामगढ़िया और परमिंदर साचनूर महेंद्र सिंह ने। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, करवती सोनी सुनने के ख्वाहिशमंद है, और सुनना चाहता राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र डूडी ने हिसार से, और कांडला बंदरगाह से जगदीश जोहरी सुनने के ख्वाहिशमंद है। राशिद हुसैन अंसारी, नसीर अंसारी और नूरीन अंसारी जैन मंदिर कुरावली से सुनने के ख्वाहिशमंद है। कृष्णा गरौनी हांसी से सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू सुनने के ख्वाहिशमंद है, और सुनना चाहता मोरारन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर और मीनाक्षी तिवारी ने। पीएस नौहानकर, निर्मला नौहानकर, विशाल नौहानकर महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद है, और सुनना चाहता तेजस्वी चौहान, विजय चौहान इंदुकर, अंकिता चौहान ने महाराष्ट्र से। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश गीता दत्त की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, कांति गुप्ता और शारदा गुप्ता ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति छत्तीसगढ़ से, और सुनना चाहते हैं वासवली सिद्दीकी, मुनवर अंसारी, अलीम सिद्दीकी और अनंत और दर्शिका दर्शित चंबलाल दुबे भोपाल से सुनना चाहते हैं, और निजामाबाद तेलंगाना से अजीज मतीन और शेख चंद फारूक फुलवाले सुनना चाहते हैं। बेंगलुरु से भारत भूषण और अंजू श्रीवास्तव सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं राजू टुटेजा, खुशतुल वनीला टुटेजा और शिव सेठी कानपुरी, कानपुर राजस्थान से। योगेन्द्र नायक, गीता नायक सुनने चाहते हैं उत्तर प्रदेश से, और सुनने चाहते हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्य मल्होत्रा जगराओं बिहार से, जगराओं से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनने चाहते हैं अरुण कुमार शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे साहिब बीबी और गुलाम फिल्म से ये नगमा गीता दत्त की आवाज में। आइए अब सुनते हैं इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मुकेश की आवाज में, जिसको सुना चाह है महाराणा प्रताप हाउसिंग सोसाइटी सिडको महाराष्ट्र से सुनील सामग और अंजलि सामग ने। मोहम्मद करीम अंसारी, दरवे अंसारी, मोहम्मद अंसारी काजगढ़ से सुनना चाहते हैं। महेंद्र मोदी, ममता मोदी, ठाकुर साहब, रामगढ़ कैंट से सुनना चाहते हैं और खंडवा से विजय मोहबिया सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। लक्ष्मण राव लोखंडे और कृष्णताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। जयराजपुर राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, प्रयाग

भट्ट। सुनना चाहते हैं सुरेश गगने जा, पूनम गगने जा, दिशानी निमित्त आहू जा, जलालाबाद वैसे। भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं बाड़मेर से मास्टर मनीष बबलेश पवार, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर और खुशबू ज्योति ठाकुर। गोला से सुनना चाहते हैं रमेश कटनकर शरंदर, और सुनना चाहते हैं संजय डींगिया, नमन डींगिया, अपार डींगिया उत्तर प्रदेश से। और जब्बार मोहम्मद, अजीब खान, मंजू अशरफ सुनना चाहते हैं उदयपुर से।

साने अभी आप सुन रहे थे ये नगमा मुकेश की आवाज में फिल्म दिल ही तो है से, जिसकी तर्ज बनाई थी रोशन ने। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज में, जिसको सुना चाह रहा है संगम यार रतिया मार्ग से रणधीर कुमार और धीरज कुमार सुनने के ख्वाहिशमंद है और सुनना चाहते हैं पूजा वर्मा, दीप्ति वर्मा, प्रभा वर्मा जेल रोड से, मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना, साजिद अली सुनने के ख्वाहिशमंद है। अनामी कफ शर्मा, सोनाली शर्मा, मीरा शर्मा बिहार सुनना चाहते हैं और दालमंडी से राजू बनारसी, राजेश कुमार बनारसी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं प्रोफेसर गुरुनी दिल्ली से आजमा परवीन, अमना परवीन और जुबेदा परवीन सुनने के ख्वाहिशमंद हैं किशन सक्काल और सुनना चाहते हैं प्रमिला जमुरिया रमेश गुजरात से और चमनपुर मोरबी से जुबेदा मजहर और उस्मान अली सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। बाबुल खान मोहम्मद नियाज खान कासगंज से सुनना चाहते हैं, राजकोट से राकेश पटेल प्रमिला पटेल सुनने चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं रोहित चौहान मिश्री देवी चौहान छत्तीसगढ़ से, सहारनपुर से कैफी आजम तबस्सुम परवीन सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। रोशन जहां फुल जहां जालंधर सुनना चाहते हैं, बलोच से प्रभा और राधिका सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं सांगली दक्षिण से अल्ताफ हुजरे सफुल्ला सबात हुजरे।

अभी आप सुन रहे थे गीत गाया पत्थरों ने, फिल्म से नगमा आशा भोसले की आवाज में हाजिर इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश तरन महमूद की आवाज में, जिसको सुना चाहे चवन पार्क नर्मदा पार्क मंगलवेदा महाराष्ट्र से मास्टर लीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सिद्धार्थ स्वर्ण संधु, अनिता संधु, रितेश संधु, कुलम रोड, हरगोविंद नगर, नवाज शहर से, और सुनने जाते हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक बत्ता, पटियाला, कनेरा मोहल्ला से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं राजकोट से नूर मोहम्मद लखानी, जुबैदा लखानी और विहान लखानी, और सुनना चाहते हैं खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, सादिक खत्री और अयूब खत्री।

0: यानी अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तमिल इरशाद, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के उभरते हुए स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
2: नमस्कार श्रोताओं, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज एक नए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसरो के दशकों की उपलब्धियों के साथ अब प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स भी अंतरिक्ष क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम

0: है बदलाई थी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
1: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, स्काई रूट ने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल बन गया।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम होता क्या है और पिछले कुछ वर्षों में भारत में इसके तेजी से उभरने की प्रमुख वजह क्या है।
2: जब से इसरो ने काम चालू किया था तब से देखा था कि सभी काम जो है उसके लिए संस्था है, जो सेंटर्स है, वहां नहीं हो सकता है। कुछ तो काम जो है जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी लगती है, वो सब जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां होना चाहिए। और इसी से लेकर हमारे जो रॉकेट्स है, लॉन्च व्हीकल्स है, उसके जो बड़े जो सामान होते हैं वो सब इंडस्ट्री में ही बनते हैं। और ये जो अपने इंडस्ट्री में बनते थे तो वो भी देखा था कि बहुत सारे उसके लिए जो कंपोनेंट्स लगते हैं, सिस्टम्स लगते हैं, मैकेनिकल जो होता है, वो सब काम इंडस्ट्री में तो होता ही है, मगर छोटी छोटी इंडस्ट्री ने भी इसमें हाथ भर लगाने के लिए प्रयत्न किए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा लॉन्च व्हीकल जो है वो एक प्राइवेट इंडस्ट्री स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया और उसका कल प्रक्षेपण बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है और वो अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में जाकर सिद्ध हुआ है। तो पूरे लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए जो भी कुछ इंडस्ट्री लगती है, जो भी कुछ टेस्टिंग करना पड़ता है, वो सभी काम ये प्राइवेट इंडस्ट्री ने किया है। और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इकोसिस्टम यानी पहले से लेकर अंत तक सब जो काम है वो बाहर हो सके। और मुझे खातरी है कि ये काम इस तरीके से करने के लिए सिर्फ मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे नहीं, मगर बाकी सब इंडस्ट्री जो है इसके लिए काम करने वाली उसका भी उसमें आधार होता है। और इसको ही हम स्पेस स्टार्टअप की इकोसिस्टम कह सकते हैं।
0: जी, आपने अभी स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रमवन प्रक्षेपण का उल्लेख किया है और ये अभी भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या इस सफलता को हम मान सकते हैं कि इससे भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स को एक नई ऊर्जा मिलेगी?
2: ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है और इससे प्रेरणा लेकर और भी बहुत सारे लोग इसमें काम कर सकते हैं। मुझे खातरी है कि आजकल जो विद्यार्थी है वो भी इसमें आगे जाकर भाग ले सकते हैं। एक बहुत पहले मैंने यहाँ देखा था कि पुणे में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वहां के सब विद्यार्थियों ने मिलकर एक उपग्रह भी बनाया था। ऐसे जो उपक्रम होते हैं उससे हमें प्रेरणा मिलती है और खातरी मिलती है कि जो काम चालू किया था वो आगे भी अच्छी तरह से चालू रह सकेगा।
0: जी, और हमने देखा है जैसे पिछले कुछ समय में जो हमारी अंतरिक्ष नीति है देश की, उसमें कई तरह के सुधार आए हैं जिनसे स्टार्टअप्स के लिए ये वातावरण तैयार हुआ है और वो अच्छा काम भी करके दिखा रहे हैं। क्या जो इस तरह के सुधार हैं, जो नीतिगत सुधार हैं, वो हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े रहने में सहायक साबित होंगे?
2: इस तरीके की जो नीति है उसे हम आगे जाकर अगर जो हमारे देश के लिए नहीं लेकिन और भी देशों के लिए उपग्रह बना सकते हैं, उनके लिए रॉकेट्स बना सकते हैं, उनके उपग्रह जो वो बनाते हैं वो हम अपने यहाँ के लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके उनको अंतरिक्ष में भी भेज सकते हैं। मुझे खातरी है कि अभी जो प्रेरणा मिलेगी लोगों को आगे जाकर बहुत ही अच्छा काम कर सकेंगे।
0: डॉक्टर खाली, आज भारतीय स्पेस स्टार्टअप जो है लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट निर्माण, पृथ्वी अवलोकन, संचार, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आपको इनमें सबसे अधिक संभावनाएं किस क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं?
2: एक तो मुझे लगता है कि जो इसरो ने चालू किया था कि पहले एसएलवी तैयार किया, उसके बाद में एएसएलवी तैयार किया, पीएसएलवी तैयार किया, मगर ये सब एक एक करके बहुत बड़े बड़े लॉन्च व्हीकल हो गए। तो उसके बाद अगर जो कोई छोटा उपग्रह है उसके जो लॉन्च करना है तो उसके लिए एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बनाया है इसरो ने। और ऐसे लॉन्च व्हीकल जो है, जो छोटे लॉन्च व्हीकल है जिनका उपयोग बहुत जल्दी से हो सकता है, ऐसे लॉन्च व्हीकल हम अपने देश के लिए नहीं लेकिन बाकी सब देशों के लिए भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी बना सकते हैं। और उसमें ही मुझे लगता है कि हमें और प्रगति होगी।
0: जी, और इसके अलावा हम देखें तो अब तक जैसा भी हमारे यहाँ चल रहा था

0: अगर कुछ साल पहले तक अंतरिक्ष के सभी कार्यक्रम या उससे जुड़ा हुआ जो कुछ क्रियाकलाप था वो इसरो तक सीमित था। अभी जैसा हम बात कर रहे हैं कि अब निजी कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, सब इसमें शामिल हैं, सबके लिए रास्ते खुल गए हैं। हम अगर भविष्य की बात करें, निकट भविष्य की, अगर एक दशक की या उससे कुछ अधिक, तो इस बदलाव से जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम है, क्या उनको गति मिलेगी, उनको तेजी मिलेगी?
1: प्राइवेट इंडस्ट्री ने अभी जो करके दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है। इससे आगे जाकर वो भी कुछ सामान बना सकते हैं। उसका टेस्टिंग करना जो है उसके लिए अभी भी इसरो की मदद लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो भी कुछ टेस्टिंग करना है वो भी अगर जो कोई प्राइवेट इंडस्ट्री आगे जाकर कर सकेगी तो इसमें बहुत ही ज्यादा सहार होगा। और ऐसी टेस्टिंग के लिए जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों मिलकर जो कर सकेंगे तो और भी अच्छा होगा।
0: जी, और अक्सर कहा जाता है कि आने वाले समय में स्पेस डेटा एक नई अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा, एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। तो अगर हम कुछ क्षेत्रों पर गौर करें, जैसे कृषि क्षेत्र है या डिजास्टर मैनेजमेंट है या शहरों की योजना बनाने, शहरी नियोजन है और राष्ट्रीय सुरक्षा है, इनमें ये जो चार क्षेत्र हैं इनमें स्पेस डेटा से कैसे हमें सहायता मिल सकती है?
1: डिजास्टर मैनेजमेंट की हम जो बात करें तो जब भी चाहे तब अगर जो उपग्रह को जो लॉन्च करना होगा इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री का ये छोटा उपग्रह बहुत ही अच्छा रहेगा और इसमें बहुत आगे जाकर बहुत ही काम कर सकते हैं। अगर जो शहरी व्यवस्था है उसकी जो व्यवस्थापना करता है तो उसके लिए भी बहुत सारे उपग्रह जो मिल सके तो ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।
0: और बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे यहाँ कृषि भी, तो क्या खेतीबाड़ी में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है?
1: हो सकता है। जो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स है, ऐसे सैटेलाइट्स जो हम बना सकेंगे और भी ज्यादा, तो उसका उपयोग हम अच्छी तरह से कर सकेंगे। क्योंकि हर रोज अगर जो कोई हमें जो इमेज मिल सके कोई भी खेती क्षेत्र की, तो उससे हमें ज्यादा जानकारी मिल सकती है और वो जानकारी जो है वो सब अपने जो एग्रीकल्चरिस्ट है उन तक जो पहुंच सके तो बहुत अच्छा होता है। तो ये पहुंचने के लिए जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जरूरत है वो भी अच्छी तरह से आगे जाकर बना सकते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री, और उसका उपयोग करना जो है वो भी वो कर सकते हैं।
0: जी, और डॉक्टर काले, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है जो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां रही हैं, भू राजनीतिक कई जगह तनाव रहे हैं, कई जगह सैनिक कार्रवाई चल रही है पूरी दुनिया में, ऐसे में सैटेलाइट्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी, इसकी भूमिका पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे?
1: ऐसे जो सैटेलाइट्स है जो अभी इसके लिए काम में ला सकते हैं, तो ये सैटेलाइट जो है वो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे सैटेलाइट्स, छोटे जो सैटेलाइट्स है, बड़े भी सैटेलाइट्स है, ऐसे हम बना सकते हैं और प्राइवेट इंडस्ट्री का जो सहभाग आगे लेकर जो कर सके तो वो ये बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि सिर्फ सैटेलाइट्स बड़े बनाने से ये काम नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत ही सारे और भी तरीके के उपग्रह की जरूरत होती है और ये उपग्रह लॉन्च भी करना जल्दी से होता है, तो इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री जो है उसका बहुत ही सहभाग होगा।
0: जी, और भारत अभी वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य लेकर आगे की ओर अग्रसर है भी, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में स्टार्टअप्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी और हमारे सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं?
1: इसके लिए जो सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि सबको भी पता है कि भारत ये कर सकता है, लेकिन उसको जो जल्दी से कुछ करना होगा तो हम कर सकेंगे कि नहीं, इस पर ये लोगों का विश्वास नहीं है, तो वो विश्वास प्राप्त करना बहुत ही जरूरी होगा। जो भी कुछ काम कर सकते हैं वो अच्छा करना है, टाइम पे करना है, और जो उसके लिए जो कुछ फंडिंग लगेगा वो भी हम मिला सकते हैं, अगर इसके लिए अच्छी तरह से ये काम करना होगा और जो टाइम सर करना होगा।
0: जी, हम जानते हैं कि स्पेस सेक्टर में नवाचार यानी इनोवेशन के लिए सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि निवेश की भी जरूरत होती है, अनुसंधान भी चाहिए और उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग भी जरूरी है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत को अभी और क्या कदम उठाने चाहिए?
1: एक तो मैंने भी इतने सालों से देखा है कि रिसर्च के लिए जो फंडिंग लगता है वो फंडिंग कम क्यों हो रहा है जो अपने यहाँ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तक जाकर पहुंचना चाहिए। अगर जो वहां तक जो पहुंच सके अच्छी तरह से तो ये इनोवेशन का काम और भी अच्छी तरह से आगे चल सकेगा।
0: जी,
1: इसके लिए जो भी कुछ रिसर्च फंडिंग है इसरो के है, दूसरे डिपार्टमेंट

0: स्कूल की भी है, डिफेंस की भी है, तो उन्हें अपने यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है उनके यहाँ जाकर अच्छी तरह से काम, यूनिवर्सिटी में जो हो सके तो उसके लिए विद्यार्थी भी मिल सकते हैं, काम करने के लिए लोग भी मिल सकते हैं, और ये लोगों को जो प्रेरणा मिले तो वो आगे जाकर ये जो स्पेस इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत ही हाथ लगा सकते हैं
1: जी। और दुनिया में हम लगातार देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में गतिविधियां तो काफी बढ़ गई हैं, कई देश इसमें बहुत सक्रिय हैं, इसके साथ साथ अंतरिक्ष में भी नई चुनौतियां दिख रही हैं। स्पेस में जैसे कचरा बढ़ गया है, साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियां आ रही हैं, और रेगुलेशंस से जुड़े हुए भी कई चैलेंजेस हैं। तो हम भारतीय स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मुद्दे कितने महत्वपूर्ण होंगे आने वाले दिनों में?
0: उनके लिए एक तो आगे जाकर जो देखना है कि हमें जो दूसरे के देशों के लिए हम कुछ बना सकते हैं तो वो अच्छी तरह से बनाना है, ये तो सही है, मगर उनके रूल्स और रेगुलेशंस को इसका भी पूरा पालन होना चाहिए। कैसे हम मानते हैं कि अपने देश के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसका तो पालन भी करेंगे, लेकिन वहां के जो रूल्स रेगुलेशन है उनका अच्छी तरह से समझ पहुंचना चाहिए। और इसके लिए अगर जो यूनिवर्सिटीज जो है वहां जो ऐसे कुछ प्रोग्राम हो कि कौन से देश में कौन से तरीके रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंटरनेशनल स्टडी जिसे कह सकते हैं, उसका उपयोग करके हमारे स्टार्टअप्स और भी ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप भारत के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम की कैसी तस्वीर देखते हैं? क्या भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक स्पेस इनोवेशन हब के रूप में उभर सकता है?
0: बन सकता है, मैंने भी जैसे कहा, तो ये इसके लिए जो भी कुछ करना है काम उसके लिए रिसर्च लेबोरेटरीज चाहिए और जगह चाहिए, और ये जगह जो है वो एक आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज तक जो पहुंच सके तो ये अच्छी तरह से काम आगे हो सकता है।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने अभी सुना, भारत का उभरता स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। डॉक्टर प्रमोद काने जी, इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के उभरते हुए स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए सुनते हैं जाफर हुसैन बदायूनी कव्वाल और साथियों की आवाज में कव्वालियां।

जी अभी आप सुन रहे थे इंस्ट्रूमेंटल मौसिकी के प्रोग्राम के तहत श्री कृष्ण शर्मा का गिटार पर बजाया हुआ राग चारुकेशी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम आखिरे शब। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं फिल्मी नगमे। हमें इस प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

सभी अभी आप सुन रहे थे मस्त अलंदर फिल्म से ये नगमा। फिल्म आशा भोसले और तलत महमूद की आवाज में, जिसकी तर्जुमानी थी हंसराज पहल ने। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश केएल सेगल की आवाज में।

सर, अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में ये नगमा फिल्म ताब से, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जय किशन नेसी के साथ। आखिर शब प्रोग्राम अब खत्म होता है, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप हमारी नशिया समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए। आइए अब सुनते हैं खबरें। ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल हबीब से खबरें सुनिए। अमरीकी फौज ने उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान की पासदारान इनकलाबी फौज पर फजाई हमले किए हैं। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल, जो आज से शुरू हो रहा है, कुल पार्टी मीटिंग का इनकार किया। उसने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो इजलास की कारकर्दगी की खुशुसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल तीन मुल्कों मालदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। और भारत ने लिथुआनिया के शहर विल्न्यूस में मुनाकिदा 37वीं बैन अल्अक्वामी बायोलॉजी ओलंपियाड IBO 2026 में सोने का एक तमगा जबकि चांदी के तीन तमगे जीत लिए हैं। अब खबरें तफसील से। अमरीकी फौज ने कल ईरान पर फजाई हमले किए, जिनमें ईरान की नीम फौजी दस्ते सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा कि यह कार्रवाई उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के जवाब में की गई है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान की सामरिक निगरानी, फजाई दिफाई तनसीबात, बहरी सलाहियतों और मिजाइल व ड्रोन मराकज को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा कि पहली मरतबा उसकी कार्रवाई का खसूसी निशाना IRGC थी, जो ईरान के मजहबी निजाम में एक ताकतवर इदारा है और मुल्क के बैलिस्टिक मिजाइल प्रोग्राम पर कंट्रोल लगती है। ईरान ने अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान की तफसीलात जारी नहीं की हैं। अमरीकी फौजी मुहिम अब 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है। दोनों ममालिक अब नाए हुरमुस पर कंट्रोल के लिए एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो जाएगा, जो अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जिन पर बहस व मुबाहिसा होगा। मानसून इजलास से पहले हुकूमत ने कल पार्लियामेंट हाउस की NXC में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के सरबराह जगत प्रकाश नड्डा, पार्लियामानी उमूर के वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी इस मीटिंग में शरीक हुए। अपना दल के रहनुमा अनुप्रिया पटेल, JDU के रहनुमा संजय झा, TDP के रहनुमा लव श्री कृष्ण देवारालू, कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी रहनुमा धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट महुआ माझी और दीगर 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, अपोजिशन पार्टियों ने भारत की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर मीटिंग की मीटिंग से अलामती वॉकआउट कर दिया। NCPI एक रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसने हाल ही में मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाब

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। ये विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूचबिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री ने एक सरकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया

0: कोयला जब्त किया है। सीआईएसएफ ने कहा कि यह गहन कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई है और एक व्यक्ति के मरने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सेना और वायुसेना को बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उन्होंने अपने 4 मंत्रिमंडल सहयोगियों को ऊपरी असम का दौरा करने और हाल ही में आई बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 3 जिलों में बचाव और राहत कार्यों का जायजा लेने का निर्देश दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2036 का मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में जारी है। अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार खिताब जीता है। अर्जेंटीना के लिए जहां मेसी सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं, तो दूसरी ओर 19 वर्षीय लामिन यामल स्पेन के आक्रामक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जेकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इससे पहले भारतीय टीम ने
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering the protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to the media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Talking to media, TMC MP Mahua Mohitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. President Draupadi Murmu embarked on a 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania yesterday. The visit to the 3 European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the 3 countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people exchanges. The government is implementing the National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem, NAMAST, as read as Namaste, as a flagship initiative to ensure the safety, dignity and social security of sanitation workers while promoting mechanized sanitation across the country. Jointly implemented by the Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of Housing and Urban Affairs, The scheme aims to eliminate hazardous manual cleaning of sewers and septic tanks through mechanized cleaning, skill development and welfare.

खूबसूरत गीत और सत्य पर आधारित। जी हाँ, जब हम नहीं होंगे तो हम क्या होंगे, ये इस गीत में बयां था। और कौन हमारे चाहने वाले होंगे। खैर, अगली गीत की ओर बढ़ते हैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, जीवन मृत्यु फिल्म से आ रहा है ये गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। बोल आनंद बख्शी के हैं।

सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी गीत। आइए चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज की तरफ।

मुकेश की आवाज में फिल्म पूरब और पश्चिम से आप सुन रहे थे ये गीत। कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से पिरोया था। अगले गीत की तरफ रुख करते हैं और आवाज मोहम्मद रफी की, बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था। आइए सुनते हैं फिल्म धरती से ये गीत।

अभी आपने सुना चौधरी का चांद, फिल्म का टाइटल ट्रैक मोहम्मद रफी की आवाज थी, बोल थे शकील बदायूं के और संगीत दिया था रवि ने।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की ही स्वर में सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है आराधना, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत बद्ध किया था एस डी बर्मन ने।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: सुने। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। ये विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मैट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर जिले के अमगुरी राजस्व सर्कल में बाढ़ से संबंधित एक मौत की सूचना मिली है, जिससे राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब तक 5 हो गई है। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। इस बीच शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बदलते हालात को देखते हुए असम सरकार ने भारतीय सेना

وقت جیسے ٹھہر گیا ہے، یہی ہر طرف ایک

0: इसी गीत के साथ गीत बहार कार्यक्रम नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक यहीं अब समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के विश्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। यह विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का भी उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ हेमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा और कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप 2026 का फुटबॉल का बहुचर्चित फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच चल रहा है। 90 मिनट के खेल के बाद दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। अब जीत के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जैकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित गुयाना में 133 यात्रियों और चालक दल को ले जा रही एक सरकारी

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे गीत और गजल का कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। कलाकार हैं वाणी जयराम और राजकुमार भारती।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनूरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 4:19:35। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। इसके अंतर्गत लीजिए सुनिए चरण्या लक्ष्मी कुमारन की ये

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने चरण्या लक्ष्मी कुमारन की प्रस्तुति सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप जानेंगे पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन के बारे में। पांच बजकर 20 मिनट पर आप आनंद ले सकते हैं देशभक्ति गीत का, जबकि 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप दिनकर शर्मा के बजाय हारमोनियम पर राग नट भैरव का आनंद ले सकते हैं।

सुबह 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, जबकि 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना।

जिन सखी ने तब ताया हम तिन के सत बनहा हर मिलने

आनंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरे नाल सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज सिद्ध मन मचिया बताया राग तन भरवार पर शब्द गा

जाणी संत भजन पए सरसे पूरे गुरते जाणी संत पुनीत कहते पवित्र सतगुर है आपर पूरे हनुमंत नाल चरण लागे भजे अलग दूरे बोलो जी वाहे गुरु एका ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवें प्रथम भगवती समरकाय गुरु नानक लई त्याय

فتحن گرد کی تاج پنت کی جیتا شری صاحب جی سہائے کال سے جی کا

ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: Thank you.

ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਨਮਸਤ